0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की तिथि 30, तदनुसार 21 जुलाई 2026 ईस्वी। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन, आलेख एवं वाचन कुसुमाकर दुबे का।
1: आजकल मौसम का मिजाज तेजी से बदलता जा रहा है। शीतकाल अभूतपूर्व हिमपात के लिए चर्चित रहा करता है, तो ग्रीष्मकाल में हम गर्मी की अतिशयता से पीड़ित रहते हैं। आधुनिकता की अंधी दौड़ कहें या फिर उपभोग करने की बढ़ती भूख, हम सामान्य जीवन व्यवहार से दूर होकर प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। इसी का परिणाम तरह तरह से हमारे सामने आ रहा है। आज से 3 शताब्दी पहले यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, उसका स्वरूप धीरे धीरे बिगड़ता ही गया है। हम स्वार्थी बने हैं, इसीलिए हम अपने आचरण के दूरगामी परिणामों से अनजान हैं, उदासीन भी हैं। कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर हमें चेतावनी दी है कि हम प्रकृति का शोषण छोड़ें, लेकिन हमारे आचरण में उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आबादी के दबाव में जंगल कट रहे हैं, अतिवृष्टि या फिर सूखे के फलस्वरूप आपदाएं आ रही हैं, हम निरंतर त्रासदी झेल रहे हैं। इसके बावजूद इनसे मुक्ति मिलने के उपायों की उपेक्षा करते हैं। विश्व भर में समय समय पर सम्मेलन आयोजित होते हैं, लेकिन आचरण का संयम न हो तो इन सम्मेलनों का हर्ष क्या होगा, हम सब समझ सकते हैं। रियो सम्मेलन में विचारवान लोगों ने यह कहा था कि अगर पृथ्वी को विनाश से बचाना है तो हमें भारतीय जीवन पद्धति का अनुसरण करना होगा। ये भारतीय जीवन पद्धति है क्या? क्या हम भारत में रहकर भी इसे ठीक से समझते हैं? ये वो है कि प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करें, उपभोग में संयम स्थापित करें। ईशोपनिषद के पहले श्लोक में ईश्वर के द्वारा प्रदत्त साधनों के त्याग पूर्वक भोग की बात कही गई है, वही भारतीय जीवन पद्धति है। प्रकृति का दोहन तो किया जा सकता है, शोषण नहीं। एक गाय के 4 स्तनों में से 2 या 3 से दूध दुहा जाता है और शेष उसके बछड़े के लिए छोड़ दिया जाता है। बस वही अंतर दोहन और शोषण में है, और हम भारतीय अपनी पुरानी पद्धति को भूल गए हैं। हम शोषण के प्रति आग्रही होते जा रहे हैं, इसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। गर्मी इतनी पड़ती है कि हम प्यास बुझाने के लिए इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, पानी की कमी से जूझते रहते हैं। भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति पर्यावरण और प्रकृति के अनुकूल थी, उससे विमुख करने के उपायों को ही आज विकास मान लिया गया है। हम आज स्वयं आचरण करना नहीं चाहते,

0: हम जिसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, प्रकोप कहते हैं, वह हमारे अपने आचरण की देन है, ये हमें समझना होगा। और इसका समाधान भी हमारे आचरण में ही नहीं थे। इसके लिए आवश्यक है कि उपभोग के अधिकार के बजाय कर्तव्य पालन के बोध का संज्ञान हम बढ़ाएं। भोगवाद की पाश्चात्य सोच है। इसके अतिरेक के दुष्परिणामों को देखते हुए प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करना आज की जरूरत है। आज हम शहर बढ़ाने की होड़ में लगे हुए हैं, जबकि जरूरत है गांव बढ़ाने की। आज पिछले 10 वर्ष का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि शहरों के आसपास मकानों के जंगल तेजी से बढ़े हैं। दूर दूर तक जिस जमीन को पहले कोई पूछता नहीं था, कल्पना नहीं कर सकते थे कि वहां भी कोई मकान खड़ा होगा, आज मोहल्ले नजर आते हैं। वहां सीवर की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, कई तरह की समस्याएं हैं, फिर भी शहर के करीब रहना है तो लोग मकान पर मकान, मोहल्ले पर मोहल्ले बसाते जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा, हमें ये जरूर सोचना होगा। वही जो हमारे सामने आता है उस पर मनन करना होगा। भारतीय जीवन पद्धति को अपनाकर प्रकृति के साथ दोस्ती बढ़ानी होगी, तभी इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। आइए इस दिशा में सोचें, विचार करें।
1: चिंतन, अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
2: स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन, आजुक कृषि चर्चा आप शंकर कुमार चौधरी से सुनल जाए। हमरा लोकन माछ के पोस कर चिक्कन आमदनी कर सकैत छी, मुदा एकरा वैज्ञानिक विधि से पोसब तखने लाभ हैत। कारण माछ के बाजार में मांग सदत बनल रहैत अछि। माछ के हमरा लोकन के मिश्रित विधि से पोसबाक चाही, अर्थात मिश्रित पद्धति से पोसबाक चाही, जकरा मिश्रित मत्स्य पालन कहैत छी। ई आधुनिक बेरक मांग अछि, एहिसँ कतेको प्रकारक लाभ होइत अछि। स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि, मिश्रित मत्स्य पालनमे तेज वृद्धि दरवला ओ प्रतिस्पर्धा रहित भोजन करैवला पैघ कार्प प्रजातिक माछके पोसल जाइत अछि। देशी कार्प माछमे आबैत अछि कतरा, रोहु, ओ मृगल जकरा नैनी सेहो कहैत छी, ओ विदेशी कार्प माछमे अबैत अछि सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ओ ग्रास कार्प। एकर सभक पृथक पृथक विशेषता होइत अछि, जकर विस्तार से आब चर्चा कऽ रहल छी। देशी प्रजाति कार्प मे कतरा माछ ई पानि के सतह पर रहै वाला आ एकरा अहि ठाम खयबाक आदत होइत अछि। आहार में मुख्यतः ई जंतु प्लावक आहार लैत अछि। एकरा देशी माछ में सबसे तेजी से बढ़े वाला माछ मानल गेल अछि। ई एक वर्ष में लगभग 2 किलोग्राम वजन प्राप्त कऽ लैत अछि। रोहु माछ पानि के मध्य सतह पर रहै वाला आ एतहि एकरा आहार लेबाक आदत होइत अछि। आहार में मुख्यतः ही काई आ सरल गलल छोट छोट गाछक पत्ती आ अन्य जैविक पदार्थ के लैत अछि। ई नीक स्वाद आ तेज बढ़े वाला प्रजातिक लेल ख्याति प्राप्त पौने अछि। एक वर्ष में 1.5 किलोग्राम धरि एकर वजन बढ़ैत अछि। मृगल या नैनी ई पानि के निचला सतह पर रहै वाला माछ होइत अछि आ ई ओतहि आहार ग्रहण करैत अछि। ई आहार में स्वभाव से सर्वभक्षी होइत अछि। ओ पोखरिक निचला सतह पर पाओल जाय वाला सरल गलल गाछक अवशेष ओ अन्य जैविक पदार्थ के छोट छोट टुकड़ा के खाइत अछि आ एक वर्ष में प्रायः ई 1 किलोग्राम वजन प्राप्त करैत अछि। विदेशी प्रजातिक कार्प माछ में सिल्वर कार्प अबैत अछि। ई पानि के सतह पर रहै वाला आ ओतहि आहार लेबाक एकरा आदत होइत अछि। आहार में मुख्यतः वनस्पति प्लावक

0: अपना सूक्ष्म शैवाल के सेवन करैत अछि। एक वर्ष में लगभग ई 2 किलोग्राम वजन प्राप्त करैत अछि। ग्रास कार्प माछ एकर आहार लेबाक आदत पानि के भीतर आ किनार में घूमि घूमि कऽ होइत अछि। आहार में मुख्यतः ही जलीय घास आ अन्य वनस्पति के सेवन करैत अछि। एक वर्ष में प्रायः लगभग 3 किलोग्राम से 5 किलोग्राम ई वजन प्राप्त करैत अछि। कॉमन कार्प माछ ई पोखर के निचला सतह पर रहे वाला ओ ओतै आहार ले वाला माछ होइत अछि। आहार में स्वभाव से ई सर्वभक्षी ओ पानि के निचला सतह पर कीड़ा घोंघा वनस्पति ओ अन्यान सरल गरल टुकड़ा के ग्रहण करैत अछि। एक वर्ष में प्रायः लगभग 2 किलोग्राम वजन ई प्राप्त करैत अछि। अहिक संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न भेल। चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, ये आकाशवाणी दरभंगा है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावोका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ

0: उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा, विषय लकवा रोग और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनीष कुमार धीरज।
3: स्वास्थ्य चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे लकवा यानी पैरालिसिस के बारे में। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनीष कुमार धीरज। लकवा का क्या कारण है, किन कारणों से लकवा हो सकते हैं?
4: देखिए, लकवे के अनेकानेक कारण हैं, किंतु मुख्य रूप से आम तौर पर यह समझना जरूरी है कि यह सामान्य जन में किसी को भी हो सकता है।

0: किंतु कुछ परिस्थितियों में जैसे कि उच्च रक्तचाप, ब्लड शुगर या अथवा डायबिटीज, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया अर्थात चर्बी की मात्रा का शरीर में अधिक होना, धूम्रपान या तंबाकू की लत एवं अत्यधिक शराब का सेवन या किसी भी प्रकार के नशे की लत, विशेष रूप से भांग या कोकेन का सेवन, यह लकवे की संभावना को कई कई गुना जो है सो बढ़ा देता है। अतः इनका परित्याग करना चाहिए। और कुछ कारण अनुवांशिक भी होते हैं। यदि परिवार में अन्य किसी व्यक्ति को परह में पहले लकवा हो चुका है तो उनकी संतान को यह होने की संभावना सामान्य से अधिक होती है।
1: और जिनमें हाइपरटेंशन है यानी उच्च रक्तचाप है,
0: जिनमें उच्च रक्तचाप है उनमें सबसे प्रमुख कारण उचित निदान न लेना और अपनी दवा की डोज को मिस कर जाना, यह सबसे सर्व प्रमुख कारण है लकवे का।
1: अच्छा, रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड में अगर चोट लग जाए उस वजह से भी कई बार लकवा देखा जाता है।
0: रीढ़ की हड्डी में यदि चोट लग जाती है, कई बार हमारे सुषुम्ना नाड़ी में या स्पाइनल कॉर्ड में खून का जमाव हो जाता है अथवा चोट लग जाती है, इस कारण से भी लकवा होता है। और इस स्थिति में यदि सर्वाइकल रीजन में अर्थात गर्दन के रीजन में ये चोट लगी हो तो हाथ और पैर दोनों का लकवा होता है। और यदि सर्वाइकल रीजन से नीचे अर्थात कंधे या कमर के रीजन में चोट लगी हो तो दोनों पैरों का लकवा होता है। और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में सिर्फ एक हाथ अथवा सिर्फ एक पैर का भी लकवा हो सकता है।
1: लकवा यानी उस अंग का शिथिल पड़ जाना, सुन्न पड़ जाना, उसमें किसी भी तरह की हरकत नहीं होती है।
0: लकवा एक आम अवधारणा के तहत यदि किसी अंग में ताकत की कमी हो रही हो तो उसको मानते हैं लोग, किंतु मेडिकल परिभाषा में हम लोग किसी भी अंग का सुन्न पड़ जाना, उसमें ताकत क्षीण हो जाना, इन सभी स्थितियों को हम लोग लकवे की श्रेणी में रखते हैं।
1: क्या कुछ लक्षण है जिससे ये पता चल सके कि ये जो मरीज है वो लकवे का मरीज है?
0: बिल्कुल है, जैसे कि आपको मुस्कुराने में दिक्कत हो रही हो, हाथ उठाने में दिक्कत हो रही हो, चलने फिरने में संतुलन आपका गड़बड़ा रहा हो, तो आप एक सामान्य जन के नाते समझिए कि शायद कहीं आप लकवे के शिकार हो रहे हैं। ये प्रारंभिक लक्षण है।
1: बोलने में कभी कभी लड़खड़ाहट,
0: बोलने में लड़खड़ाहट, पानी पीने में दिक्कत, आप उचित उपचार समय पर लेने से आप बड़ी बीमारी से बच सकते हैं।
1: एक समय था जब एक जनधारणा थी कि लकवा का कोई निदान नहीं है, दैवी प्रकोप है, लेकिन आज मेडिकल साइंस का क्या कहना है?
0: आज के मेडिकल साइंस का कहना है कि लकवे शुरू होने के 5.5 घंटे के भीतर यदि आप किसी एडवांस्ड मेडिकल सेंटर में पहुंच जाते हैं और सीटी स्कैन में हम लोग इसको सिद्ध कर देते हैं तो कुछ दवाएं, कुछ इंजेक्शन हैं जिसको दे करके खून की नली में आई हुई ब्लॉकेट को हम लोग घुला सकते हैं और होने वाली क्षति को 80-90% या उससे भी ज़्यादा कम किया जा सकता है। और यदि उससे विलंब से भी आप पहुंचते हैं, लकवा हो भी चुका है, तो भी उचित उपचार द्वारा 5-6 महीने में आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। आप पूर्ण रूप से सामान्य ना भी हो पाएँ किंतु 70-80% सामान्य स्थिति में आप जरूर पहुँच जाते हैं।
1: ऐसे कौन से परहेज हम रखें जिससे लकवा से हम बचे रह सकते हैं?
0: सबसे पहले अपनी जीवन शैली में नियमित व्यायाम को शामिल करें। 30 मिनट प्रतिदिन, कम से कम 5 दिन सप्ताह में धूम्रपान ना करें, मानसिक चिंता तनाव से बचें और अपनी जीवन शैली को प्रकृति के पास रखें। अधिक चर्बी तेल मसाले का प्रयोग खान पान में ना करें। उच्च रक्तचाप या डायबिटीज़ यदि है तो उसका उचित उपचार कराएं तो आप लकवे से बच सकते हैं।
1: लकवा रोग के बारे में डॉक्टर मनीष कुमार धीरज जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे मनीष कुमार धीरज से संजय कुमार की बातचीत, विषय था लकवा रोग। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।

स्वर्ग से प्यारी मेरी माँ। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम वंदना में अभी आपने देश गान सुना। आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में ये भजन।

0: पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे राम भजन। इसी के साथ भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम वंदना अब यही समाप्त होता है। सुनिए रामचरित मानस गान, मुख्य स्वर लक्ष्मी शंकर और रामकृष्ण चंदेश्वरी की।
1: एपिसोड 35 3-5।

और इधर शिवजी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने पांचों वाण छोड़े, जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिवजी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया।

लक्ष्मी शंकर और रामकृष्ण चंदेश्वरी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

नेट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। दिन के 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे।

आज का कार्यक्रम अरुणा आप सुनेंगे 10:30 पर। 11 बजे हम आपको सुनवाएंगे उपशास्त्रीय संगीत। फिल्म संगीत का पुनः प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे दिन के 12 बजे। इस समय आप सुनेंगे कुछ नए फिल्मी गाने।

फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे 12:30 पर, 1:10 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत। फिल्म संगीत का आनंद आप एक बार फिर से ले सकेंगे हमारे इस सभा में 1:15 और 2:30 पर।

रोजगार सूचना आप सुनते हैं दिन के 2:10 पर। अपराह्न 3 बजे हम आपको सुनवाएंगे बज्जी का लोकगीत। हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत जिसमें आप सुनेंगे नए फिल्मी गाने 5:40 पर। विद्यापति गीत का प्रसारण समय होगा शाम 6:10। मैथिली संवाद जिसका प्रसारण होगा हमारे पटना केंद्र से आप सुन सकेंगे 6:25 पर। 6:30 पर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण होगा। खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7 बजे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 7:30 पर हमारे पटना केंद्र से। 7:47 पर आप सुन सकेंगे जिले की हलचल हमारे पटना केंद्र से। बिहार विधान मंडल समीक्षा शाम 7:50 पर आप सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से। रात्रि 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे संसद समीक्षा अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण समय होगा रात्रि 8:15। विविधा सर्वभाषा आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। देववाणी 9:45 पर। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं समय हो चला है समाचारों का, पहले संस्कृत में फिर हिंदी में हमारे दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 6:55 और 36 सेकंड हुए हैं।

दुनिया की असेंबली को संबोधित भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपसी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई।

0: बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपसी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। जब उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में विशेष जांच दल की जांच के बारे में जानकारी देगी तो सर्वोच्च न्यायालय इस महीने की 27 तारीख को याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश का रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। औषधि महानियंत्रक ने टेकोडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन की अनुमति दी है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ष पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: सबसे पहले आजुक सुविचार।
1: जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा।
0: निश्चित तौर पर कयाम जो स्वामी विवेकानंद के जो शब्दक बुनल जाल थी, को कतौ ने कतौ हमारे प्रेरणा स्रोत थी। शब्द के मर्म बुझ कर ओकर उपयोग अपना जीवन में करबाक चाही। और सुविचार के बाद हम लोग सीधे रुख करे छी आजुक दिनक इतिहास पर, जे आजुक दिन की खास महत्व रखत हमारा राष्ट्र में, हमारा समाज में, ताऊ ई जानकारी साझा कर रहल छथि कयाम।
1: बात करें आज के दिन क्या कुछ खास है इतिहास में। 2007 में भारत के इतिहास में यह दिन ऐतिहासिक रहा, क्योंकि प्रतिभा पाटिल ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। आज ही के दिन 1883 में कोलकाता के स्टार थिएटर की शुरुआत हुई थी, जिसमें भारत का पहला सार्वजनिक थिएटर माना जाता है। आज ही के दिन 1988 में भारत के पहले स्वदेशी निर्मित बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट 1C का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। साथ ही साथ आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार आनंद बख्शी का जन्म 1930 में हुआ।
0: तो इछल आजुक दिनक इतिहास जो श्रोता लोकन से हमारे लोकन जानकारी साझा कलूँ। और कयाम आजुक नमस्कार मिथिला के अंक में हमारे लोकन श्रोता से बातचीत जो करब, तो सबसे पहले श्रोता लोकन से ये बतबियन जो हमारे लोकन जो आई बातचीत करब, ताई में दूटा विषय पर हमारे लोकन बातचीत करब। एक संक्रांति के हिसाब से आस्था संस्कृति और सावन आई पर चर्चा करब, और दोसर चर्चा हमरा लोकन करब जे आई काल्हि जेना जेना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से लोक शहरी क्षेत्र तक निक निक सड़क बन रहल है, रास्ता बन रहल है, रास्ता के विस्तार भ रहल है, तो तनाहिते जे छै से एक्सीडेंट दुर्घटना सेहो बढ़ रहल है। तो दुर्घटना से बचवा के जिम्मेवारी सेहो हमरे लोकन के छै। तो ए दूटा विषय पर हमरा लोकन बातचीत जरूर करब, मुदा सबसे पहले हमरा लोकन अखन ई महेश वाणी यानी कि मैथिली गीत के आनंद लैत छी। ओकरा बाद फिर चर्चा परिचर्चा करब और कार्यक्रम में आगा डेग बढ़बैत रहब, मुदा ताहि से पहले ई आजुक नमस्कार मिथिला के अंक में महेश वाणी के रूप में ई मैथिली गीत हमरा लोकन सुनैत छी।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार श्रोता लोकन, आज नमस्कार मिथिला कांक में हम रंजीत और हमारे संग आई आकाशवाणी दरभंगा के शुरू उपस्थित कहिया महू के हमारा नमस्कार।
1: जी हाँ बिल्कुल, आपको भी और तमाम श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और जना के श्रोता लोकन के बुझल छन कि कार्यक्रमक शुरुआत हम करे छी सुविचार सँ।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
3: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का।
4: देश हो रहा है आयुष्मान।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: छोटे से अंतराल के बाद फिर से हाजिर हैं नमस्कार मिथिला में। नमस्कार मिथिला में आज आपके रेडियो पर हैं कयाम नैयर और रंजीत कुमार झा। हम सारी चीज़ों को समेट कर लेकर आते हैं और आकाशवाणी दरभंगा से कोशिश करते हैं कि हमारे श्रोताओं को ये कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा लगे, और किन विषयों पर किन चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं ये रंजीत जी ने पहले ही बताया, और समय के साथ यूं ही चलते रहना चाहिए। अब वक्त हो चुका है आकाशवाणी दरभंगा से हालचाल का, और हालचाल प्रस्तुत करेंगे रंजीत कुमार झा।
3: धन्यवाद कयाम, नमस्कार। राज्य सरकार शिक्षक के तबादला के लौका बड़का नीति में बदलाव कलक है। दिव्यांग शिक्षक के अय में बड़ पैग राहत दिल गए, जाहि में तीन गो अलग अलग कैटेगरी में तबादला के वरीयता दिल जाए, अथवे ने अय में सर्वोच्च वरीयता वाला के कैटेगरी में उच्च रखल जाए और अय वर्ग में सबसे गंभीर वाला शिक्षक के रखल जाए। शिक्षा विभाग तबादला में 14 वर्ग के 4 गो कैटेगरी बनलक है। एकरा लेल 5, 10, 15 और 20 अंक तय कैल गए और अय तय अंक के मुताबिक अब शिक्षक के स्थानांतरण एक स्कूल से दूसर स्कूल में भ सकैत छन। राज्य के अध्ययनरत विद्यार्थी युवक के महिला और बालिका के खिलाफ होवे वाला अपराध के प्रति संवेदनशील बनाओल जाए, एकरा लक बिहार पुलिस मुख्यालय राज्य के 21 जुलाई से 10 अगस्त तक ऑपरेशन विधि पालक युवक जागरूकता अभियान चलावे के घोषणा केलक।

एहि अभियान के अंतर्गत पुलिस राज्य के हर एक जिला के स्कूल, कोचिंग और हॉस्टल सहित अन्य शिक्षण संस्थान में पहुँच कर महिला और बालिका पर छींटाकशी, अपद्र टिप्पणी, छेड़छाड़, बलात्कार या ओकर पीछा किया जाना अपराध सँ संबंधित दंडात्मक और कानूनी प्रावधान के जानकारी देत। 10 अगस्त तक अभियान चलाओल जायत। बिहार में निजी विश्वविद्यालय के अस्थायी संचालन के मंजूरी दे दिल गेल है। UGC मानक के अनुरूप एक शैक्षणिक सत्र तक संचालन के व्यवस्था कैल जाए। हालांकि एहि अवधि में शर्त पूरा नहीं हो पर अनुमति स्वतः समाप्त कर दिल जाए। विधानमंडल के मानसून सत्र के पहल दिन विधानसभा में बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 के प्रति वितरित सेहो कैल गेल। एहि संशोधन के जरिए बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 में बदलाव करैत निजी विश्वविद्यालय के अवबंधित प्रोविजनल संचालन के स्पष्ट कानूनी प्रावधान कैल गेल। विधानमंडल के मानसून सत्र के पहल दिन सदन में राज्य सरकार के द्वारा 87,383 करोड़ रुपया के अनुपूरक बजट पेश कैल गेल। एकरा संगहि सदन में एहि राशि के खर्च करबा के लेल इजाजत सेहो मांगल गेल। सरकार के पास जखन वित्तीय वर्ष में लेल गेल योजना के पूर्ण करबा के लेल राशि के कमी होइत अछि तो सदन में अनुपूरक बजट के जरिए अतिरिक्त राशि के मांग करैत अछि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत अनुपूरक बजट के प्रावधान कयल गेल। राज्य के 11वीं और 12वीं कक्षा में छात्र सब के सड़क सुरक्षा पाठ पुस्तक के माध्यम से पढ़ाओल जाए। परिवहन विभाग एकरा लेल सामग्री तैयार कर रहल अछि। एकर मुद्रण के कार्य तेजी से सेहो कयल जा रहल अछि। वर्ष 2027 में ई पाठ्यक्रम में शामिल कयल जाए। परिवहन विभाग पहले से कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चा के सड़क सुरक्षा शिक्षा प्रदान कर रहल अछि। एहिमे पैदल यात्री के प्राथमिकता देवा के लेल ट्रैफिक सिग्नल और पालन ओवर स्पीडिंग, गलत लेन और नशा क के वाहन नहीं चलेनाय, मोबाइल फोन इस्तेमाल क के वाहन नहीं चलेनाय और सड़क के संकेत के सख्ती से पालन कर जैसन महत्वपूर्ण विषय शामिल कयल गेल। दरभंगा के जिला अधिकारी कौशल कुमार के अध्यक्षता में सोम दिन जन सुनवाई कार्यक्रम कैल गेल। जिला के विभिन्न प्रखंड से आयल 30 गो से बेसी आम जनता के समस्या के जिला अधिकारी के समक्ष राखल गेल। ओ सुनकर समाधान के लिए संबंधित अधिकारी के दिशा निर्देश दिलन। कतेको आवेदन पर विस्तृत रूप से सुनवाई कैल गेल। प्राप्त आवेदन में मुख्य रूप से भूमि विवाद, अतिक्रमण मुक्त, अनुकंपा, विवाह प्रमाण पत्र, आवास योजना, अनुग्रह अनुदान से संबंधित आदि जनहित विषय सौ मामला शामिल छल। मौका पर सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार से हो उपस्थित छला है। SSP जगुनाथ रेड्डी जल्ला रेड्डी सोम को अपन कार्यालय में लोक के शिकायत सुनकर संबंधित पुलिस अधिकारी के आवश्यक निर्देश दिलन। ओ कुल 31 गो फरियादी के समस्या सुनलन। SSP अधिकारी के प्रत्येक शिकायत के समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिन के अंदर करवा के निर्देश दिलन है। ओ पिछला जन सुनवाई से प्राप्त शिकायत के प्रगति के समीक्षा कर समयबद्ध के पालन करवा के हिदायत से हो दिलन है। ओ सौ थाना अध्यक्ष के निर्देश दिलन है कि ज्यादा से ज्यादा जनहित के मामला के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई कैल जाए, नहीं तो उनका ऊपर कानूनी कार्रवाई कैल जतन। जिलाधिकारी कौशल कुमार के अध्यक्षता में पंचायत सरकार भवन निर्माण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व कार्य, फॉर्मर रजिस्ट्रेशन, राशन कार्ड निर्माण सहित विभिन्न विकासमक एवं जनकल्याणकारी योजना के प्रगति के समीक्षा के लकर सोम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एगो बैसार आयोजित कयल गेल। जिला अधिकारी सब संबंधित अधिकारी के निर्देश देलन है कि सब पेंशनधारी के लाइफ सर्टिफिकेट के आधार शीडिंग समयबद्ध ढंग से पूरा केनाई सुनिश्चित कयल जाए। कबीर अंत्योष्टि योजना के अंतर्गत लाभुक के प्रदान कयल गेल सहायता राशि के प्रविष्टि संबंधित पोर्ट पर अपलोड करवा के निर्देश देलन है। ओ बतौलन कि जिला के 24 गो स्थान पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य लंबित है। जिला अधिकारी सब CO और पंचायत राज पदाधिकारी के निर्देश देलन है कि लंबित निर्माण कार्य के विभिन्न प्रखंड में जल्दी से जल्दी संपन्न कराएल जाए। दरभंगा जिला में नियमित टीकाकरण के और प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाव के उद्देश्य से सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार के अध्यक्षता में RSE कार्यक्रम के अंतर्गत सोम को प्रशिक्षण शिविर लगाओल गेल। ई प्रशिक्षण TVDC भवन स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में

0: गेल। अय इसमें स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी सेहो शामिल छला है। DIO डॉक्टर अमरिंदर मिश्रा बतौलन कि अतः जे आदमी प्रशिक्षण के लिए एला है वो ऑनलाइन माध्यम से सब टीकाकरण से जुड़ल स्वास्थ्य कर्मी के प्रशिक्षण देल जायत। केवटी प्रखंड के फुलकाही गांव में सोम को विशेष स्वास्थ्य शिविर के आयोजन कैल गेल, जाहि में 128 आदमी के HIV जांच के परामर्श देल गेल। जांच के दौरान 3 आदमी के उच्च जोखिम श्रेणी में पाओल गेल छल। स्वास्थ्य टीम तत्काल प्राथमिक प्रबंधन करत हुनका आवश्यक दवाई उपलब्ध करा देलन है। संगे तीनों के केवटी CHC बजाओल गेल और शिविर में ICTC डॉक्टर संजय कुमार, ANMA प्रीति कुमारी, लैब टेक्नीशियन स्टाफ अरविंद कुमार से हो मौजूद छला है। ई आल चालकन अपने लोकन आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: शवाहर नाले सभागार में DDC स्वप्नलील के अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वयन समिति के बैसार सोमवार को भेल, जाहि में विभिन्न विभाग के संबंधित लंबित मामला, जन शिकायत, विकासमत योजना और 21 जुलाई तक हो वाला सहयोग शिविर के तैयारी की समीक्षा कैल गेल। DDC के निर्देश दिल गेल है कि आवेदन के समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण रूप से निष्पादन कैल जाए। समाहरणालय सभागार में TB भारत मुक्त अभियान के अंतर्गत जिला अधिकारी कौशल कुमार के अध्यक्षता में जिला स्तरीय पोषण किट के वितरण कार्यक्रम आयोजित कैल गेल। चिन्हित TB के मरीज के बीच पोषण किट के वितरण कैल गेल। जिला अधिकारी कहलन कि TB उन्मूलन दिशा में जिला व्यापक स्तर पर कार्य कर रहा है। TB मरीज के बेहतर उपचार और पोषण के लिए जिला के चिन्हित मरीज के फूड बास्केट उपलब्ध कराओल गेल, जाहि में उपचार के संगे संगे आवश्यक पोषण के वस्तु सेहो प्राप्त छल। बतावे चली कि रोड क्रॉस सोसाइटी 100 फूड बास्केट उपलब्ध कराएल गेल छल, जेकर वितरण कैल गेल, जाहि में मरीज के लिए पौष्टिक आहार में चावल, दाल, आटा, तेल, सोयाबीन, हॉर्लिक्स, गुड़, बिस्किट, चत्तू आदि सामग्री शामिल छल। दरभंगा के शैक्षणिक हब बनाबे के लिए कतेको पहल कैल जा रहल अछि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केंद्र के पुनर्जीवित कैल जाए, एकरा लेल दुनू विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा देबा के लेल पहल सेहो कैल जा रहल अछि। एकर शीघ्र सकारात्मक परिणाम देखबा में भेट सकैत अछि। ई बात स्थानीय सांसद सह लोकसभा के भाजपा सचेतक तथा LNMU के सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, बिहार सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय के सचिव राजीव रोशन सँ पटना स्थित हुनक कार्यालय में भेंट कऽ कर चर्चा के बात कहलनि हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कृषि पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में नामांकन के लिए 14 अगस्त तक आवेदन कऽ सकैत छी। कुल 15 सीट पर नामांकन के लिए विश्वविद्यालय डॉक्टर कुमार राज्यवर्धन के समन्वयन बनाओल गेलन हैं। समन्वयक बतौलन कि कृषि पत्रकारिता के छात्र के मांग TV चैनल एवं अखबार के अलावा कृषि विश्वविद्यालय में सेहो होइत अछि। बिहार पुलिस के अवर सेवा आयोग के तत्वावधान में बिहार पुलिस रेडियो वितेंतु में सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक पद पर नियुक्ति के लेल प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 22 जुलाई को शहर के 18 परीक्षा केंद्र पर लेल जायत। परीक्षा पूर्वाहन 11 से अपराहन के 1 तक आयोजित कैल जायत। परीक्षा के सफल संचालन के लक परीक्षा गृह में सोमवार का केंद्राधीक्षक और स्टैटिक दंडाधिकारी के ब्रीफिंग सेहो कैल गेल। बैसार के अध्यक्षता अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन शमील अख्तर के अध्यक्षता में कैल गेल। अनुमंडलीय मुख्यालय बेनीपुर बाजार में 2 स्टेट हाईवे के क्रॉसिंग पॉइंट पर फ्लाई ओवर बनाबे के स्वीकृति के लेल पथ निर्माण विभाग 3 पूर्व रिपोर्ट पठा देल गेल है। राज्य पथ 65 और 88 पर ओवर ब्रिज बनबा के रास्ता साफ भ गेल है।

0: पुल निर्माण में करीब 65 करोड़ रुपया खर्च आयत। एहि वर्ष लोगों के 80% योजना से आप बेनीपुर के जनता के बलका लाभ भेटत। अही के संगे आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि संपन्न होते। नमस्कार।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: हालचाल के बाद अब प्रस्तुत है लोकल अपडेट्स। लोकल अपडेट्स में क्या कुछ खास है। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट व मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर है 6202777740 पर आप शिकायत कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर है 7763818777 पर आप संपर्क कर सकते हैं। दरभंगा से ट्रेनों की बात करें तो सुबह 6:30 पर दरभंगा से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, सुबह 8:15 पर दरभंगा से नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:30 पर दरभंगा से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7:00 दरभंगा से नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमानों की बात करें तो सुबह 9:30 पर दरभंगा से मुंबई के लिए, सुबह 11:30 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 12:25 पर दरभंगा से कोलकाता के लिए, दोपहर 12:50 पर दरभंगा से कोलकाता के लिए, दरभंगा से दिल्ली के लिए माफ़ करें, दोपहर 1:35 पर दरभंगा से मुंबई के लिए। ये विमान रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को है। दोपहर 3:00 दरभंगा से हैदराबाद के लिए और शाम 4:35 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए।
0: सब जानकारी कहिया अपने यातायात संबंधी जानकारी छल तो मैं बताबे छे जे गाड़ी के परिचालन के समय सीमा तक कहिया हम बताइए देलन है, लेकिन शहर में जे वन वे सिस्टम के व्यवस्था लागू है वो आइयो लागू है, कतौ कोनो फेरबदल नहीं कैल गेल है। और जो कोनो भी VIP मूवमेंट के कारण ओकर ओइमे फेरबदल कैल जाए तो ओकर जानकारी अपने लोकन के आकाशवाणी दरभंगा परिवार के द्वारा जरूर देल जाए और विस्तृत जानकारी यातायात संबंधी कहिया हम अपने लोकन के दिए देलन है। कहिया हम अब जना कि हमारे शुरुआती दौर में बात केने छलूँ हैं जे सड़क सुरक्षा और ओकर जिम्मेदारी।
3: जी हाँ, बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि यातायात संबंधी ध्यान रखना है, ट्रैफिक का ध्यान रखना है, और जो विमान है, जो ट्रेन है, जो मतलब हम रोज़मर्रा की लाइफ में जो भी चीज़ हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए सड़क सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है।
0: देखियो, सबसे पैघ बात उठे छे सड़क के सुरक्षा तो सरकार कहिए रहल छे, सड़क पर दुर्घटना नहीं हुए अई बात के लेल जतेक सरकार चिंतित है उतबे आम जनता सेहो चिंतित है। लेकिन हमरा बाजे में कतौ कोनो कोताही नहीं है, हम एक बात आम जनता के लेल कह रहल छी, हमहूँ शामिल छी। जो आई बात उठे जे भारतवर्ष में नीक नीक आदमी कते लोग छथि, संवैधानिक जीवन कते लोग जीवै छथि, वैदिक जीवन कते लोग जीवै छथि, तो ओहि श्रेणी में लगभग हम सब गोटे ठाड़ भऽ जाएब। लेकिन जखन ओकरा धरातल पर उतारे के बेर अबै छै तऽ ओहिमे सँ 90% आदमी पचा हटि जाइ छै। अहाँ देखियौ, हम किताबी बात नहि करब, किताबमे बहुत बात लिखल छै, सब गोटे पढ़ि कऽ बुझै छथिन। आइ जे सड़क पर जखन हम अहाँ चलै छी तऽ कहियाम हम अहाँ गौर करैत हेबै जे सड़क पर चढ़बाक लेल जे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा कानून बनाओल गेल छै, नियम बनाओल गेल छै, दहिना बायाँ स्पीड लिमिट छै शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, स्टेट हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर, सब हाईवे पर सब रंग के गति निर्धारित सब वाहन चालक के लिए कैल गेल छे, अलग अलग लेन बना देल गेल छे जे अगर अहाँ अतेक स्पीड में चलब तो अई लेन में चलू, अतेक स्पीड में चलब तो अई लेन में चलू। पथ परिवहन निगम के जे नियम छे जे गाड़ी चलाबो के लिए हमरा पास लाइसेंस होबाक चाही, गाड़ी के फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होबाक चाही, इंश्योरेंस होबाक चाही, हेलमेट होबाक चाही, अई सब यानी कि हमर कहबाक अभिप्राय ये जे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा जे कानून बनाओल गेल छै ओहि कानून के सड़क पर जे हम गाड़ी चलबो जाय छी तो कते गोटे पालन करै छी। और जखन दुर्घटना भऽ जाइ छै तऽ हमरा लोकनि दोष ककरा पर मोड़ै छै तऽ सरकार पर या फेर जाहि गाड़ी सँ जे गाड़ी टकरेलै।

0: दोसर बार गाड़ी वाला एक दोसर पर कहे अहाँ के गलती है, तो अहाँ के गलती है, हमरा सो गलती भेल, ई गलती हम कखनो नहीं स्वीकार करवा के लेल तैयार होइ छिए। और बात कथे तो दुर्घटना भ जाइए, गाड़ी के नुकसान होइए, शरीर के नुकसान होइए, और ओहि पर से लड़ाई झगड़ा सेहो भ जाइए। किएक तो हम बुझै छिए जे पथ परिवहन निगम के द्वारा किछु कानून बनाओल गेल छै जकरा हमरा पालन करबाक अछि, लेकिन हम पालन नहि करऽ चाहै छी। हमरा बायाँ से दाहिना से नहीं कटक चाहिए लेकिन हॉर्न नहीं देवे हम कटि जेबे, हमरा मुड़ के हाथ नहीं देवे लेकिन गाड़ी के स्टेरिंग हम बायाँ घुमा देवे। अच्छा आओ सबसे पैघ बात हम बताबी, आइ काल्हि के एक ट्रेंड हम देख रहल छी शहरी क्षेत्र से लऽ कर ग्रामीण क्षेत्र तक में, 18 वर्ष बालक के पूरा नहीं भेल छन, हुनकर आयु 18 नहीं भेल छन, हुनका सरकार के द्वारा MVI मोटर व्हीकल के कानून के अंतर्गत हुनका लाइसेंस नहीं छियन, मुदा वो गाड़ी चलौता 80 की स्पीड में हुर्र। ई जे स्थिति भ गेल है, अइ स्थिति में हसरा दुर्घटना पर कखनो रोक नहीं लगा सकै छी। ओकरा लेल जरूरी है जे सड़क पर चलवा के जे कानून छै, पहले ओहि कानून के विषय में हमरा पूर्णतया जानकारी होबाक चाही, ओकरा बाद ओहि जानकारी के मुताबिक हमरा अपन गाड़ी के चलाबक चाही, ड्राइव करबाक चाही, तखने हम ओहि दुर्घटना सँ बचाव कऽ सकै छी।
1: जी हाँ बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जब तक सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून है उस कानूनों को हम अपने आप में अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं तब तक किसी भी योजना किसी भी मिशन को हम सफलतापूर्वक ज़मीन पर नहीं उतार सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम जो मशवरा जो सलाह दूसरों को देते हैं वो सबसे पहले हम खुद में लागू करें, ये ज़रूरी है। और संविधान या जो हमारा देश कहता है उस हिसाब से हम चलें, और हम जब चलेंगे तो जाहिर है दूसरा हमें देखकर इस बात को मानेगा, आज हो कल हो कभी कभी ना कभी तो मानेगा ज़रूर। तो ज़रूरी है कि सरकार के द्वारा जो भी नियमों को लागू किया गया है उसमें हम तभी कम कर सकते हैं जिसमें हम सरकार के साथ कदम में कदम मिलाकर चलें। सड़क सुरक्षा किसी एक व्यक्ति या केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। सड़क पर थोड़ी सी सावधानी और नियमों का पालन कई जिंदगियों और परिवारों को खुशी से बचा सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, हेलमेट और सीट बेल्ट दुर्घटना के समय जीवन रक्षक साबित होती है, यातायात नियमों का पालन करना, लाल बत्ती और हमेशा लाल बत्ती पर रुक जाना, गति सीमा यानी स्पीड कम जैसा रंजीत जी ने पहले भी कहा इसका ध्यान रखना ज़रूरी है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, नशे की हालत में गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और बहुत सारी दुर्घटनाएं जो हो रही है आए दिन वो इसी कारणवश हो रही है, या तो ओवरलोड, आप एक बाइक पर 3-4 लड़कों को अक्सर खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में चीज जो अक्सर हो रहा है, रोज आप ऐसा गौर करेंगे तो कोई ऐसा दिन नहीं है जो हमारे आसपास में बाइक दुर्घटना नहीं हो रहा हो, उसकी वजह यही है ओवर स्पीड और ट्रिपल लोडिंग, ये बिल्कुल कम करने की ज़रूरत है। नव सीखू बच्चे जो होते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनकी उम्र नहीं पूरी हुई है, इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो खुद हम अपने जीवन में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, जो हमारे भाग्य में लिखा है किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हम खुद बनते हैं।
0: देखिए कयाम भाग्य के हम अपना कर्म के बदौलत बदल सकै छी। हाँ ठीक छै, होइ हैं वही जो राम रचि राखा, जहाँ पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करी सब कोई, और सब ठीक बात छै, किताबी बात छै। अब अखन बड़ा सुंदर अहाँ बात कहलहुँ, छोटका छोटका बच्चा ट्रिपलिंग चलै छथि, हम पूछऽ चाहै छियनि ओहि अभिभावकसँ, लहरिया कट ओहि अभिभावकसँ हम पूछऽ चाहै छियनि कि ओहि माता पिता के पता नहि छनि जे हमर बच्चा अखन नाबालिग अइ, एकरा लाइसेंस नहि छै, एकरा अखन हम गाड़ी नहि दिए चलबै लेल, और वही बच्चा के जखन पुलिस प्रशासन के द्वारा चेकिंग में कतौ पकड़ लेल जाय छै तो अभिभावक परेशान भ कऽ एक सौ ठमन जे छै से अपन माथा लगबै छै जे हमर बच्चा अब कोना छूटत। ई जे स्थिति छै अइ स्थिति पर रोक लगेनाइ बड़ पैघ जरूरी छै, और ई जरूरी छै जे हरेक माता पिता के चीज के ध्यान देबऽ पड़तनि जे हमर बच्चा अखन बालिग नहि भेलै, ओ अखन सड़क पर गाड़ी चलबक अधिकार ओकरा नहि प्राप्त छै, तो ओकरा हम गाड़ी नहि देबै। आब तऽ हम देखै छी जे लोक छोटका छोटका प्राथमिक विद्यालयमे आओर मध्य विद्यालयमे बच्चा सब गाड़ीसँ इसकुल अटेंड कऽ रहल छथि, जी ओहि माता पिताके ई सन्देश छियनि जे एहि चीजके ज्ञान अहाँ बच्चाके दियौन जे अहाँ अखन एकर अधिकृत नहि भेलहुँ हैं। हमरा भारतमे सब चीजके अधिकारके एकटा सीमा बान्हल गेल छै संवैधानिक तौर पर, ओहि नियम कानूनके अन्तर्गत देश चलै छै, कानून चलै छै, ओकरा हमरा सबके पालन केनाइ निश्चित अइ, ताहि तऽ हम भारतके नागरिक छी, आइ हमरा भारतमे संविधान छै, आइए संविधान दिवस हम मनेबै, सब गोटे शपथ

जे संविधान कहत से हम करब, लेकिन मंच पर शपथ खा के उतरबे नीचा में आबिके संविधान तोड़बे। ई जे सिस्टम बनि गेले या लोक के मानसिकता जे बदल गेले या ओई मानसिक। अब अच्छा एकटा बात अहाँ कहू, कहियम थोड़े समय लेब। आज दरभंगे शहर और मिथिलांचल के दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर बेगूसराय बरौनी झंझारपुर के हम बात करै छी, आए दिन अखबार में न्यूज में दूरदर्शन में रेडियो में जाम एकटा सबसे पैघ समस्या छै। कोनो शहर आई जाम से वंचित नहीं छथि, लेकिन ओ जाम में जतेक लोक फंसे छथि आई हम ओहि सब गोटे से पूछा चाहे छे जो जाम के सबसे वस्तुतः और मूल स्तंभ कारण की छे। ओकर कारण छे अनियंत्रित गाड़ी के चलेनाई, कानून विधि व्यवस्था के तोड़ देनाई। एक समय तीन तीन टा चार चार टा लाइन लगा दी छे, एक गाड़ी के पछा एक गाड़ी एक टा लाइन में नहीं छी। अगर एक टा गाड़ी लहरिया सराय से दरभंगा तक लाइन लग जाए तैयो गाड़ी घसकत रहते रुकते ही नहीं, लेकिन चार चार गो लाइन लग जाए छे, दोनों तरफ जाम भ गेल। तो जाम के समस्या उसे उत्पन्न होते छे। आप ओहिठमन की होइ छै तऽ ट्रैफिक पुलिस परेशान। आप छोट छोट धियापुता जे स्कूल से छुट्टी होकर अपना घर जेबाक लेल निकलल अछि ओकर अभिभावक परेशान, किनको ऑफिस छुटि रहल छनि, किनको ट्रेन छुटि रहल छनि, किनको हवाई जहाज छुटि रहल छनि, कोनो मरीज एम्बुलेंस में बंद छै, एम्बुलेंस कोकिया रहल छै, साइरन बजा रहल छै, लेकिन ओहि जाम में एम्बुलेंस के केओ रास्ता देबाक लेल तैयार नहि छै। किएक तऽ ओहिठमन हम सब गोटे कानून के दोषी भऽ जाइ छी, हम सब गोटे ओहिठमन कानून तोड़ने छियै, चारि लाइन लगा कऽ दुनू कटा रोड बाधित केने छियै, नहि एम्बुलेंस जा सकै छै, नहि बच्चा जा सकै छै, नहि मरीज जा सकै छै। तऽ ई मानसिकता हमरा लोकनिके बदलबाक चाही। आओर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा जे दिशा निर्देश जारी कयल गेल छै वाहन संचालन के लेल, ओहि नीति और नियम के हिसाब सँ संचालन हमरा लोकनिके करबाक चाही। आओर आगाँ हमरा लोकनि चर्चा करब, मुदा ताहि सँ पहिले एकटा फिल्म संगीत के आनंद लै छी, ओकरा बाद फेर कार्यक्रम में हमरा लोकनि चर्चा करब। आओर श्रोता लोकनि सुनै छी कनी सुंदर सन फिल्म संगीत।

0: उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये गाना बिल्कुल पसंद आया होगा। और सावन का महीना है और सावन के महीने के जितने सारे गानों की बात कर लें, सावन के बारे में बातचीत कर लें, उतना सारा कम है। भारतीय संस्कृति और लोक जीवन में सावन का महीना आस्था, प्रकृति और उमंग का अनुपम संगम है। झूम कर बरसते बादल, बादलों भीगी हरियाली, महादेव की गुस्ती भक्त के बीच यह मास भारतीय जनमास को आध्यात्मक और उल्लास से भर देता है। श्रोताओं, अगर हम बात इस महीने की करें तो ये पूरा माह भगवान शिव की समर्पित होता है। कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं।
1: अब तो हम देखो जे पूरे साल के जे महीना सावन थे कि सृजन के महीना मानल जाते हैं। अनादिदेव देवादिदेव महादेव की महीना समर्पित मानल जाते हैं। अ लक तैं लक एक सृजन के महीना से कहल जाते हैं। जहाँ देखते हेब जे सावन महीना में सुखैलो गाछ में हरियर पात निकल जाए छे, तैं एक सृजन के महीना कहल जाए छे। और ई महीना अहाँ के धर्म, संस्कृति, प्रकृति, आचरण सब चीज के प्रकृति के अर्पण करवा के सिखाबे छे। ई महीना में लोग के नव गाछ वृक्ष सेहो लगाबे छे। तकर कारण छे जे बारिश के महीना रहे छे, जमीन में ज्यादा नमी रहे छे और गाछ वृक्ष के पोषण बेसी भेटे छे, तकर ताहि लक लोग एकर काज करे छे।

आस्था के प्रति यहाँ देखे थे भाई जे मर्दे नहीं पुरुखे नहीं जनाना से हो प्रत्येक सोमवार का व्रत रखे थे अपन जाहि निमित्ते रखे थे हर आस्था के बात छे। और सावन महीना में अहाँ देखे थे भाई जे प्रायः अमूमन लोग शिवालय देवालय तक जेबा के प्रयास करी छे थे। तो जतबे तन्मन्यता के संगे लोग शिवालय देवालय के और अग्रसर होइत छथि ओतबे तरफ से प्रकृति के बचाव के सेहो मुहिम एहि महीना में छेड़ल जा सकैत अछि। अहाँ देखते हैं जे लोग एहि महीना में तीर्थाटन के तरफ सेहो आकर्षित होइत छथि विभिन्न शिवालय विभिन्न देवालय के तरफ लोग यात्रा करै छथि और ओहि यात्रा के दौरान अपन ओ विधि विधान के संगे जाइ छथि। और ई हमरा लोकन के परंपरा संस्कृति बनि गेलै एकटा जकरा कि निर्वहन सदियों सँ हमरा लोकन करैत आबि रहल छी। लेकिन आब ओहि में समय आबि गेल अछि किछु बदलाव करबा के। संस्कृति नहीं बदलै छै परंपरा जरूर बदल जाय छै मुदा एहिठमन हमर कहबा के अभिप्राय न संस्कृति बदलक अछि न परंपरा बदलक अछि ओहि में किछु जोड़बाक अछि। हरियर महीना सावन मानल जाय छलै अगर हम मिथिला के क्षेत्र के बात करी चाहे भारतीय परंपरा के बात करी कहिया हम तो एहि महीना में हमर माता बहिन सब हरियर चूड़ी हरियर साड़ी हरियर रंग सँ बेसी उन्मुक्तता भऽ जाइ छलनि। तकर कारण छलै जे सावन महीना हरियरका के प्रतीक छलैया हरेक खेत में धान के लहलहाइत हरियरका खेत हरियर गाछ वृक्ष सब किछु नजर आबै छलैया। लेकिन भौतिकतावादी जीवन जीवा के लेल जाहि तरह हमरा लोकनि गाछ वृक्ष के कटनाई शुरू केलहुँ और आज के स्थिति में जे गाछ वृक्ष कटिकर जे स्थिति ग्लोबल वार्मिंग के कारण जे उत्तेपन भऽ गेल है ताई में कतौ न कतौ सावन महीना पर से हो खतरा मंडरा रहल है। ओ बारिश के हल्का फुहारा है देखे थे जे तीन चार दिन से मेघ जे छै से चारू कात से कारी कारी बादल लगौने रहे छै जे आज नहीं मानते आज एकदम जमकर बारिश हेतै। लोग सब जल्दी जल्दी अपन काज निपटा लै छै जे बारिश भऽ रहल छै बारिश हेबे करतै मुदा मेघ जे छै से खाली ट्रेलर देखाबैया सिनेमा नहीं देखाबैया। एकर की कारण छै अइ सावन महीना में चारू कता लोग के पानि नजर अबै छलनि है ओ बड़का बड़का मेंढक बेंग के आवाज लोग सुनै छला है चिड़िया चह चहाई छलै रास्ता पर आब तक ढलैया सड़क भऽ गेल छै कि हम पहले रास्ता पेरा में कच्ची सड़क में थाले थाल नजर अबै छलै महीना में लोग के लोग बच कर चलै छला जे कीचड़ नहीं कहीं पड़ जाए। और ओहि सावन महीना में सुखार के स्थिति उत्पन्न भेल है एकर कारण की थिक ई हमरा लोकन के बड़ा चिंतनीय विषय थिक। एकर सबसँ जरूरी और सरल उपाय थी जे हमरा लोकनि सावन महीना रहै सिर्फ गीत के माध्यम सँ संगीत के माध्यम सँ किस्सा कहानी के माध्यम सँ और कृषि के दूटा कवि होइ छलखिन हैं डाक और भड्डर हुनका कृषि कवि के संज्ञा देल जाइ छलनि हैं वो कृषि के बारे में कृतित्व लिखै छला है अपन कर्तव्य के दर्शाबै छला है। आइ तक कृषि कवि के नाम हमरा लोकनि नहीं सुनै छियनि लेकिन ओहि समय में डाक और भड्डर के किछु शब्द हमरा लोकनि पढ़ने छी तो ओ बरकरार रहे ताई के लेल जरूरी है हमरा लोकनि के जे ज्यादा से ज्यादा गाछ वृक्ष हमरा लोकनि एहि प्रकृति के बचाव के लेल लगाबी। इस सावन के महीना रहे लोग बुझे जे हाँ सावन आबि गेले जेठ अपना तपती धूप के लेल चिन्हल जाय छले सावन हरियाली के चिन्हल जाय छले अखाड़ वर्षा के लेल चिन्हल जाय छले। लेकिन ई जे लोकोक्ति और उक्ति छै ई कतौ न कतौ आइ झिमिल होइत रहै छै एकरा रोकबा के प्रयास हमरा लोकन के करबाक चाही और उम्मीद और अपील एकरा हम कहि जाइन आकाशवाणी दरभंगा परिवार के तरफ सँ सब श्रोता के लेल जे एकरा अमल में लाबी और ज्यादा सँ ज्यादा गाछ वृक्ष हमरा लोकन लगाबी देखाबो के लेल नहि प्रकृति के बचाबो के लेल फोटो खिचाबो के लेल नहि प्रकृति के बचाबो के लेल। तो कार्यक्रम में आगाह हमारे बातचीत से करब मुदा चलत चलत एकटा और समसामयिक फिल्म संगीत के हमारे आनंद ले सुनै छी सुंदरसन फिल्म संगीत।

0: करते हैं श्रोताओं को ये कार्यक्रम बिल्कुल पसंद आया होगा, और घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि आप सबसे इजाज़त लेने का समय आ चुका है। कल फिर मुलाकात होगी।
1: हाँ, कहीं आप निश्चित तौर पर और श्रोता लोग हमारे चले चले आकाशवाणी दरभंगा परिवार के तरफ से पुनः एक बार फिर अपील करबे सावन महीना के यादगार बनाब के लिए अपने लोग शिवालय में देवालय में जाकर महादेव देवाधिदेव महादेव के जला अर्पण करबे करब, लेकिन संगे एक टा का गाछ वृक्ष जरूर लगाएब। अही शब्दक संग आजुक नमस्कार मिथिला के अंक सोन वालों के लिए विदा। नमस्कार,
0: नमस्कार मिथिला।

0: कार्यक्रम नमस्कार मिथिला अभी आपने सुना आकाशवाणी दरभंगा से।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता भक्ति और आस्था के साथ प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबय वाला काल्हि लेल।
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
3: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जँ नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
6: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।
1: खाली है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा क्या? टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगे। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय

0: लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में

0: हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन निकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेश

0: कृषि सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमरीकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमरीकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी।

0: विश्व सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। LPG के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और PV सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with a North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state. US launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation, and PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton tournament beginning today. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest serving elected Prime Minister of India. President Draupadi Murmu will hold talks with her North Macedonian counterpart Gordana Siljanovska Davkova in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Hristiyan Miskosti and Speaker of the Assembly, Afrin Gashi, and address the Parliament. She will also address the India-North Macedonia Business Forum.

0: On to the world of sports, ace Indian shuttler PV Sindhu is all set to lead India at the China Open 2026 badminton tournament beginning today at Changzhou. We have a report.
1: Sindhu will face compatriot Unnati Hooda in her opening round of 32 clash of women's singles today. Devika Sehag will also compete in the women's singles draw. Moreover, Lakshya Sen, Ayush Shetty and HS Pranoy are the three Indian entries in the men's singles draw, while MR Arjun and Hariharan Amsakarunan are India's sole representatives in the men's doubles draw. Meanwhile, Olympian Tanisha Krasto and Dhruv Kapila, along with Rohan Kapoor and Ruthvika Shivani Gadde, will represent India in the mixed doubles. On to hockey, the Indian sub-junior men's and women's teams made a winning start to their respective campaigns at the FIH Youth Hockey 5S Asian Championship 2026 in Muscat, Oman yesterday. The Indian women's team was the first to start its campaign on the tournament's opening day against Kazakhstan and won 8-3. The Indian men's team, on the other hand, also impressed in its tournament opener as they defeated Bangladesh 7-3 in their opening match. Chirag Jha, Sports Desk.
0: And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
2: Thank you, Abhishek. Prime Minister urges Parliament to embrace dialogue over disruption, leads the Statesman. Monsoon session off to a stormy start amid opposition protests, reports the Hindu. The Pioneer, in its editorial piece, FIFA World Cup, Spain rules the world again, says football once again demonstrated its unrivaled global appeal, uniting nations, cultures and generations in a way few events can. Cops block protesters march to Parliament, Nadda meets CJP representatives, says the Times of India. Andy Burnham takes over as Prime Minister, unveils 10-year plan for reset of United Kingdom, informs the Asian Age. And finally, India approves first vaccine against dengue, reports the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with the North Macedonian counterpart in Skopje today. Four Indians killed and one critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state. U.S. launches first strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation. And PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open badminton tournament beginning today. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: अधिसूचना के अनुसार जिस गांव की आबादी सबसे अधिक होगी उसी के नाम पर ग्राम पंचायत का नाम रखा जाएगा और पंचायत मुख्यालय भी वही होगा। हालांकि यदि किसी पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की आबादी 50% से अधिक है तो मुख्यालय उस गांव में बनाया जाएगा जहां इन वर्गों की आबादी का अनुपात सर्वाधिक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में जिला पदाधिकारी प्रत्येक प्रखंड में ग्राम पंचायत क्षेत्रों की घोषणा करेंगे। पंचायत क्षेत्र की सीमाएं प्राकृतिक सीमाओं के साथ साथ सड़क, रेलवे लाइन और अन्य सार्वजनिक स्थलों को आधार बनाकर निर्धारित की जाएंगी। सामान्यतया किसी राजस्व गांव का विभाजन नहीं किया जाएगा। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
4: एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगझू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है, जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मीटिंग से खिताब करेंगे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंटी इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। एनडीए इत्तेहाद में शामिल पार्टियां इस मीटिंग के दौरान सबसे तवील अरसे तक अपने ओहदे पर फाइज रहने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने पर जनाब मोदी की इज्जत अफजाई के लिए मुबारकबाद से मुतालिक एक तहरीक मंजूर करेंगी।

0: पूर्वी बंगाल में बीजेपी हुकूमत बामाना और सबको साथ लेकर चलने वाली तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है और समाजी बहबूद की पेंशन में 50% के इजाफे का फैसला हुकूमत के इसी विजन का मजहर है। इंतखाबी कमीशन आज कोलकाता में एक बैन अलाक्वामी कॉन्फ्रेंस का इनकाद कर रहा है जिसका मकसद डाक के जरिए वोट डालने के अमल को मजीद जामे महफूज और आसान बनाना है। इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद जमहूरियत और इंतखाबी बंदोबस्त से मुतालिक बैन अलाक्वामी इदारे IIIDEM और बैन अलाक्वामी IDEA मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस कॉन्फ्रेंस में मगरबी बंगाल के तमाम 24 इंतखाबी जिलों के चुनाव अफसरान शिरकत करेंगे। इसके अलावा भारत और कई दिगर मुल्कों से इंतखाबी मुंतजमीन, पॉलिसी साज, माहरीन तालीम और इंतखाबी उमूर के माहरीन भी शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में डाक के जरिए वोट डालने के अमल और खसूसी पोलिंग के निजाम को मजीद जामे, आसान और महफूज बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मगरबी बंगाल की आला चुनाव ऑफिसर नीलम मीना इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। कॉन्फ्रेंस में डाक के जरिए वोट डालने का अमल इंतखाबी अमल की शफाफियत और दयानतदारी को बरकरार रखने, चुनाव में धोखाधड़ी की रोकथाम, ऑडिट के निजाम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर मबनी खसूसी पोलिंग के निजाम और दूर दराज इलाकों से वोट डालने के निजाम के मुस्तकबिल पर खसूसी इजलास मुनक़िद होंगे। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: सिक्किम में नामची जिले में समरदुंग के मुकाम पर NHPC के छठे मरहले के तीस्ता पनबिजली प्रोजेक्ट की जेर तामीर सुरंग के अंदर फंसे हुए अफराद को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव कार्रवाई जारी है। नामची जिले के SSP ने बताया है कि इमदादी टीमों ने अब तक 8 लाशें बाहर निकाली हैं। ऐसा शुभा है कि सुरंग के अंदर कम से कम 25 अफराद फंसे हुए हैं। ऐसा ख्याल है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से ये सुरंग ढह गई थी। मुख्तलिफ एजेंसियां बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: जनूबी सिक्किम में समरदुंग में कल NHPC प्रोजेक्ट के मकाम पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। NDRF, SDRF और दीगर एजेंसियों को फौरी तौर पर बचाव मिशन पर लगाया गया। गैस के रिसाव की वजह से शुरू में इमदादी टीमें वहां नहीं पहुंच सकी। अलबत्ता इमदादी टीमों ने तालमेल के साथ कोशिश करते हुए 8 लाशें बाहर निकाल ली हैं। इमदादी टीमें वहां फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। इनमें कारकुन, NHPC के अहलकार और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के मुलाजमीन शामिल है। गंगटोक से मानस प्रतिम शर्मा के रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में मॉनसून सरगर्म है और कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने आज रियासत के 5 जिलों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वजह से कई राबता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कुछ इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में रुकावट पड़ गई है। बहाली का काम जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिले में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। एहतियाती इकदाम के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर में सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। इंतजामिया ने लोगों और सयाहों पर जोर दिया है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के बाद हिस्सों में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, शिमाली मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मशरकी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। नई दिल्ली इलाके में कल एक एहतजाज के पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने के बाद 118 से ज्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के उहदों पर फायज सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन बेकाबू हो गए और उन्होंने जारहाना और पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार कर लिया। कई बार की तंबीह और कानूनी हिदायत के बावजूद उन्होंने मुंतशिर होने से इनकार किया और इलाके में आए

This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्री परिषद ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को कुंडा एक्ट के तहत लाने का फैसला किया। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का गठन और परिसीमन राजस्व ग्रामों के आधार पर किया जाएगा, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा में बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक समेत अन्य राज्य के विधेयक पेश किए जाएंगे। और राज्य सरकार ने शिक्षकों की तबादला नीति में दिव्यांग शिक्षकों को उनकी दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर वरीयता देने का प्रावधान किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्री परिषद ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के तहत लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में इसके लिए अधिनियम में संशोधन के प्रारूप को मंजूरी दी गई। संशोधन लागू होने के बाद पेपर लीक के आरोपितों तथा सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा, गाली गलौज और अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। संशोधित अधिनियम के प्रभावी होने पर ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 6 महीने से 1 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान होगा। वहीं मंत्री परिषद ने राज्य में शोध, तकनीकी नवाचार और रोजगार परक उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला और असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय तथा भागलपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी AI और कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बैठक में अग्निवीरों को वनरक्षी की नियुक्ति में न्यूनतम 20% आरक्षण देने के लिए बिहार अवर वन सेवा संशोधन नियमावली 2026 को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य के मॉडल स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विशेष यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए प्रति छात्र 6,000 रूपये देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के गठन और परिसीमन को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। पंचायती राज विभाग के अनुसार राज्य की सभी ग्राम पंचायतों का गठन और परिसीमन राजस्व ग्रामों के आधार पर नए सिरे से किया जाएगा। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: अधिसूचना के अनुसार जिस गांव की आबादी सबसे अधिक होगी उसी के नाम पर ग्राम पंचायत का नाम रखा जाएगा और पंचायत मुख्यालय भी वही होगा। हालांकि यदि किसी पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की आबादी 50% से अधिक है तो मुख्यालय उस गांव में बनाया जाएगा जहां इन वर्गों की आबादी का अनुपात सर्वाधिक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में जिला पदाधिकारी प्रत्येक प्रखंड में ग्राम पंचायत क्षेत्रों की घोषणा करेंगे। पंचायत क्षेत्र की सीमाएं प्राकृतिक सीमाओं के साथ साथ सड़क, रेलवे लाइन और

0: अन्य सार्वजनिक स्थलों को आधार बनाकर निर्धारित की जाएंगी। सामान्यतया किसी राजस्व गांव का विभाजन नहीं किया जाएगा। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा में कई राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदन में बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नियम और प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भी कई अन्य विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। विधान परिषद में आज गैर सरकारी संकल्पों से संबंधित कार्य निपटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान एनडीए विधायकों से सदन की कार्यवाही के दौरान पूरे समय उपस्थित रहने और विपक्ष के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब देने की अपील की है। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में उन्होंने विधायकों से सरकार की योजनाओं और विधायी कार्यों को अच्छी तरह समझने तथा जनता के बीच प्रभावी ढंग से रखने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री ने विधायकों से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे देने की अपील की। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के अंतर्गत चयनित 2446 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार ने शिक्षकों की तबादला नीति में दिव्यांग शिक्षकों को उनकी दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर 3 श्रेणियों में रखते हुए वरीयता देने का प्रावधान किया है। नई व्यवस्था के अनुसार 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले शिक्षकों को सर्वोच्च वरीयता में 20 अंक मिलेंगे। 60 से 79% दिव्यांगता वाले शिक्षकों को 15 अंक, जबकि 40 से 59% दिव्यांगता वाले शिक्षकों को 10 अंक दिए जाएंगे। इस श्रेणी में दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित और श्रवण बाधित शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने तबादला नीति में कुल 14 वर्गों की 4 वरीयता श्रेणी निर्धारित की है। राज्य सरकार ने उर्वरकों की कालाबाजारी के आरोप में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 265 दुकानों के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। साथ ही 44 उर्वरक दुकानदारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार उर्वरकों की जमाखोरी और निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री के मामलों में 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि सभी जिलों में किसानों की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यू डेंगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की है। कंपनी के अनुसार यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष आयु के लोगों के लिए स्वीकृत है और इसे डेंगू संक्रमण के पूर्व इतिहास की जांच के बिना लगाया जा सकता है। इसे यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ब्राजील, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना सहित 40 से अधिक देशों में मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम तथा युवाओं में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से ऑपरेशन विधि पालक युवक अभियान शुरू किया जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाया जा रहा यह अभियान 10 अगस्त तक चलेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: यार
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और लखीसराय समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, गया, नवादा, गोपालगंज, सीवान और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर जिले में 4 जबकि सीवान जिले में 2 लोगों की मौत की खबर है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते राज्य से गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के टुमरिया घाट में खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। बागमती नदी रून्नीसैदपुर में लाल निशान से 30 सेंटीमीटर जबकि बेनीबाद में 100 सेंटीमीटर ऊपर बनी हुई है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया में खतरे के निशान से 73 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर नदियों के बढ़ते जलस्तर से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, खगड़िया और सुपौल समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी फैलने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सुपौल जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर कोसी बराज टूटने की चल रही खबरों का खंडन किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोसी बराज पूरी तरह सुरक्षित है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हुए सही सूचना के लिए आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने की अपील की गई है। प्रशासन ने कहा कि भ्रामक खबर प्रसारित कर लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न करने के मामले में संबंधित फेसबुक अकाउंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने पटना जिले के सम्यागढ़ थानाध्यक्ष सौरभ कुमार को 27,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार थानाध्यक्ष जेसीबी संचालन की अनुमति देने के बदले शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के मीठनसराय माधोपुर गांव में ब्रह्म पूजा के दौरान पीपल के पेड़ की एक मोटी डाल गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों को SKMCH में भर्ती कराया गया है। वहीं जिले के मीठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग मोहल्ले में अपराधियों ने एक दंपति की हत्या कर दी। दानापुर व्यवहार न्यायालय ने एक बच्चे की हत्या के मामले में उसके नाना दुखित यादव को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पटना जिले के मसौटी स्थित भगवानगंज में हथियारबंद डकैतों ने एक सर्राफा कारोबारी और उसके परिवार को बंधक बनाकर लगभग 45 लाख रुपए मूल्य के आभूषण लूट लिए। पुलिस ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक भालू की मौत हो गई। घटना के बाद वाल्मीकिनगर बघा रेलखंड पर लगभग 2 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। पटना जिला आसूचना इकाई और कदमकुआं थाना पुलिस ने 25,000 रूपये के इनामी अपराधी अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वह 6 सालों से फरार चल रहा था। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल विधानसभा में पेश होगा, सीएम की अध्यक्षता में बनेगी परिषद। दैनिक जागरण ने लिखा है, विधानसभा में 87,383 करोड़ की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश। प्रभात खबर की सुर्खी है, सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर लगी मुहर, सोशल मीडिया पर गाली गलौज और पेपर लीक के आरोपों पर लगेगा गुंडा एक्ट। दैनिक भास्कर लिखता है, शिक्षकों का ट्रांसफर अब अंकों से होगा, बीमार और दिव्यांगों को प्राथमिकता,

एपीआई सिस्टम से बनेगी मेरिट। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, जोरदार हंगामे के बीच संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत। आज अखबार ने लिखा है दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन, 70 हिरासत में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्री परिषद ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को गुंडा एक्ट के तहत लाने का फैसला किया। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का गठन और परिसीमन राजस्व ग्रामों के आधार पर किया जाएगा, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा में बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक समेत अन्य राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। और राज्य सरकार ने शिक्षकों की तबादला नीति में दिव्यांग शिक्षकों को उनकी दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर वरीयता देने का प्रावधान किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से

0: में राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे और राज्य सरकार ने शिक्षकों की तबादला नीति में दिव्यांग शिक्षकों को उनकी दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर वरीयता देने का प्रावधान किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: गन्ने की खेती अब सिर्फ फसल नहीं, बनेगी आपकी नई पहचान और बेहतर कमाई का आधार।
2: बिहार सरकार की गन्ना उद्योग विभाग की बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत अब गुड़ उत्पादन इकाई की स्थापना पर मिलेगा पूंजीगत लागत का 50% तक अनुदान।
3: क्षमता के अनुसार 6 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का लाभ उठाइए।
2: आज ही कीन केयर पोर्टल ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि है 25 जुलाई 2026। गन्ना उद्योग विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी।
4: यार वोट देना तो है लेकिन मतदान केंद्र कहाँ है?
5: मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं कैसे पता चलेगा?
6: और मुझे मतदान से जुड़ी जानकारी चाहिए।
5: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
4: 1950?
5: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता, हर सवाल का जवाब एक नंबर पर।
7: मतलब जानकारी भी मार्गदर्शन भी?
5: बिल्कुल, 182 बाकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
6: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
5: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कोई मतदाता ना छूटे।
8: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
9: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
10: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
9: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
4: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
5: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
6: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथी, सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
5: सोमवार से शनिवार दोपहर

0: जा सकता है। अतः आप भी साहब, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है?
1: आपने दुरुस्त फरमाया कैसर जैदी साहब कि बच्चे मुल्क और कौम का सरमाया होते हैं और बच्चों की जहनी तरबियत और उनकी किरदार साजी में अदब का नहायत अहम रोल होता है। बच्चे सभी को प्यारे होते हैं। सभी वालदैन, सरपरस्त और असातिज़ा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके तालिबे इल्म अच्छे से अच्छा करें। इल्म और जहानत, अखलाक, किरदार, तमाम तरह के जो हवाले हैं उनमें उनके बच्चे अच्छा कर सकें, ये उनकी ख्वाहिश होती है। जो बच्चे वालदैन से, असातिज़ा से ज़्यादा नज़दीक होते हैं उनमें अखलाकी तरबियत और अदबी निज़ाम का भी रोल होता है। ये सभी हजरात हमारे कदर के मुस्तहक हैं, यानी वो वालदैन, वो सरपरस्त और वो असातिज़ा जो बच्चों के हवाले से इजाफी जिम्मेदारी महसूस करते हैं।
2: जी सही है।
1: और इजाफी जिम्मेदारी ही में अदब का रोल भी है, लिहाजा अदब की अहमियत से किसी को इनकार नहीं हो सकता, ये मेरी राय है।
0: कहानियाँ कहना और सुनना इंसान का जबली तकाजा है। माहरीन नफ्सियात का कौल है कि बच्चों के अंदर ये तकाजा ज्यादा कवि होता है। जब बच्चे हर्फ आशना हो जाते हैं तो सबसे पहले वो कहानियाँ पढ़ना या दिलचस्प नज़मों का मुताला ही पसंद करते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब बच्चा पालने में होता है या जब माँ लोरी सुनाती है तो बच्चा उसे सुनना पसंद करता है, क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई कहानी पिन्हा होती है या उसमें एक नगमगी पाई जाती है। शाहिद जमील साहब, आपका क्या ख्याल है?
2: कैसर जादी साहब ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया और गुफ्तगू के आगाज़ में अदब अतफाल के हवाले से जो बच्चों की जो शायरी होती है उसमें लोरी का जिक्र किया। लोरी बहुत ही अहम सिनफ शायरी है बच्चों के हवाले से। लोरियाँ पुराने ज़माने में लिखी जाती थीं, गाई जाती थीं, माँ गाती थी बच्चों के लिए। देखिए, जो सबसे पुरानी लोरी हमारे अदब अतफाल में पाई जाती है और जो बड़ी मशहूर है, बड़ी मकबूल है, और बाज़ शुरा या बाज़ महक़िक़ीन या नाक़दीन का ख्याल है कि इसका कोई मुसन्निफ़ नहीं है या ये सीना बे सीना लिए लोरी चली आती रही है, तो वो है चन्ना मामा दूर के आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट। ये बड़ी मशहूर लोरी है और इसे लोरियों की अगर हर्फ अव्वल इसको माने तो गलत ना होगा। अफसर मेरठी ने एक बड़ी लोरी लिखी अपने ज़माने में, वो लोरी है सोजा के तारे सोजा, सोजा दिल के सहारे सोजा, सोजा राज दुलारे सोजा, सोजा चांद हमारे सोजा, सोजा सोजा प्यारे सोजा। ये भी बड़ी मशहूर लोरी
1: सही फरमा।
2: लोरी निगारों में, लोरी निगार का लफ्ज पता नहीं कैसा है लेकिन बहरहाल लोरी निगारों में कैफ अहमद सिद्दीकी आते हैं, आरिफ बदायूनी आते हैं और आपको इबरत गोरखपुरी आते हैं, महबूब राही का भी नाम है। इवन के जो जदीद तरीन शोरा में जो आते हैं सलाहुद्दीन परवेज, उन्होंने भी लोरियां लिखी हैं,
1: मजमुए अच्छा
2: है, मजमुए भी आए हैं। और इनसे पहले अगर सीनियर शोरा का नाम लें तो सीनियर शोरा का नाम में तो वामिक जौनपुरी का भी नाम आता है, कलकत्ते के अलकमा शिबली साहब का भी नाम आता है, फिर उन्हीं के जमाने में खिजर बरनी हुआ करते थे, इन सारे हजरात ने लोरियां लिखी हैं। अब देखिए, एक लोरी मेरे जहन में है कैफ अहमद सिद्दीकी की, सपनों की नगरी में बुलाए तुझको निंदिया रानी, सपनों की नगरी में बुलाए तुझको निंदिया रानी, चांद देश में जाकर तुझको करनी है मेहमानी, सारी रात तुझे होना है परियों का मेहमान, सोजा मेरे दिल के टुकड़े सोजा मेरी जान। बहुत खूबसूरत लोरी है। तो फी जमाना लोरियां कम लिखी गई हैं लेकिन बहरहाल लोरी की अपनी बहुत अहमियत है। इवन के महक्किक जो है बच्चों के अदीब अदब के डॉक्टर खुशहाल जैदी, जिनकी किताब 1989 के आसपास आई थी, उन्होंने भी लोरियों के हवाले से एक चैप्टर कायम किया है, लोरी निगारों का जिक्र किया है, अहम लोरियां उसमें शामिल की। तो ये लोरियों का मामला है।
1: जी
0: अदब अतफाल के जरिए ही हम बच्चों के अंदर मुताले का शौक पैदा कर सकते हैं। इससे कहानियों और नज़मों के मुताले से बच्चों के अंदर ज़बानदानी का शौक तो पैदा होता ही है, साथ ही साथ वो आसानी से नए नए अल्फाज भी सीख लेते हैं जो आगे उनके लिए मुफीद और कारामत साबित होते हैं। अतः आप भी साहब, आज के बच्चे ऐसे माहौल व माशरे में परवरिश पा रहे हैं जहाँ माएँ या नानी दादी बच्चों को लोरी या किस्से कहानियां नहीं सुना रहे हैं, इसके क्या वजह?

0: भी कहानियां अक्सर बोरिंग, रिवायती और गैर तखलीकी होती है। ये माजरा भी जो बच्चों को अदब से दूर कर देती है।
1: बेशक
0: आखिर में इस मुबहस का जो आखिरी नुक्ता है वो देखें, आपके तकनीकी और बसरी पहलुओं की कमी है।
1: बेशक
0: यानी मौजूदा दौर के बच्चों को रंगीन बातस्वीर और इंटरैक्टिव मवाद की तलब है और वो नहीं मिलती है, जबकि उर्दू अदब अतफाल के अक्सर पहलू कमजोर होते हैं। अंग्रेजी में आपको पिक्चर बुक्स मिलेंगे, है ना, ग्राफिक नॉवेल्स मिलेंगे और ई बुक्स आम है, उर्दू में तो कहीं नहीं है। तो ऐसे में अगर हम इन कमियों को पूरा करने की अगर कोशिश करें तो कोई वजह नहीं कि हमारे अदब अतफाल की तरक्की की रफ्तार जो है वो सुस्त रोना रह जाए, आगे बढ़ना जाए।
2: अताब जी साहब
1: जी,
2: बच्चों की अदबी किताबें आज सिर्फ लाइब्रेरियों में ही सिमट कर रह गई हैं या फिर नायाब होती जा रही हैं, आखिर इसके क्या वजूहात हैं?
1: देखिए, सिर्फ बच्चों की किताबें ही लाइब्रेरी में सिमट गई हैं ऐसा नहीं है, बड़ों की किताबें भी लाइब्रेरी
0: सिमट
1: हो गई हैं।
0: और बड़ों की भी सिमट
1: जी जी, और वो भी उस अंदाज में नहीं पढ़ी जा रही।
0: मेरा ख्याल है कि पूरी लाइब्रेरी सिमट रही है।
1: जी हाँ, तो बच्चों का क्या रोना, बच्चों का तो रोना शुरू से है, और बच्चों की अहमियत इसलिए भी है कि वो एक बुनियाद है, वो एक पौधा है। आज हम जिस हदब के हवाले से बच्चों की तरबियत करेंगे, बच्चे उसी हवाले से आगे जाएंगे। बच्चों को हम लोग मेमार मुस्तकबिल तो कहते हैं कि मुस्तकबिल का मेमार है, लेकिन मुस्तकबिल का मेमार तभी है जब हम हाल की बुनियाद मजबूत रखेंगे। आपने फरमाया कि किताबों के हवाले से, तो बच्चों की जो किताबें छपती हैं या हम आप छापते हैं, जो आम अदीब छापते हैं, तो वो उस मेयार उस नहज की नहीं होती है जैसा कि शाहिद जमील साहब ने फरमाया कि जो उसका अंदाज़े पेशकश होता है
2: जी,
1: जो उसकी तकनीकी खसूसियत होती है, वो उस मेयार की नहीं होती है कि बच्चे लपकें
2: जी
1: किताब की तरफ, रसालों की तरफ।
0: हालांकि हाथ लपकता नहीं है
1: जी जी,
0: ध्यान उनका उधर जाता नहीं है।
1: बिल्कुल, फिर भी कुछ अदारे ने कोशिश की है, लेकिन वो बहुत महदूद हैं, और महदूद चीज़ें जो होती हैं वो महदूद ही तबके तक जाती हैं। आम जो तलबा है, आम बच्चे हैं, हमें उनको नज़र में रखने चाहिए कि उनकी तादाद ज़्यादा है, उनके तकाजे भी ज़्यादा हैं, तो हमारी भी जो है ज़रूरत ज़्यादा समझी जानी चाहिए थी। एक दूसरा मसला यह है कि बच्चे का रिसाला जो है
2: जी
1: और अदब जो है वो बहुत कम पढ़ा जाता है, ये भी एक शिकायत है। खुद बच्चे जो बच्चों के लिए हम लिखते हैं वो बड़े पढ़ते हैं कुछ, बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं,
0: ये एक अलमिया है।
1: जी हाँ जी हाँ, तो हमारे घर में
0: बच्चों को रागिब करने की सूरत निकलनी चाहिए कि
1: बच्चों के रसाले जो हैं
2: जी,
1: जो बच्चों की किताबें हैं वो बच्चों की पसंद बने, कैसे बने
2: जी,
1: इस पे गौर करने की जरूरत है।
2: बेशक
0: सही है,
1: जो माहिरीन अतफाल है, माहिरीन अदब है, उनको चाहिए था कि संजीदगी से बाज़ाब्ता इसी एक पहलू पर अगर बैठे गुफ्तगू करें कि भाई बच्चों का अदब बच्चों तक कैसे पहुंचे, एक बात, दूसरी बात कि बच्चों की पसंद कैसे बने।
0: दुरुस्त है,
1: ये दो बातें जो हैं बहुत अहम हैं, जो हमारी तवज्जो का तालिब हैं। तो जब तक हम लोग इस पर गौर नहीं करेंगे, मुताले का शौक पैदा नहीं करेंगे, तो अदब अतफाल की इफादियत कहाँ से सामने आएगी
2: जी।
1: इफादियत किसी भी अदब की तभी है जब वो पढ़ा जाए।
0: बच्चों का अदब जो तैयार करने वाले को इस पर ध्यान देना है।
1: हाँ, जो निसाब साजों के बारे में बात हुई वो बात हुई, तो बच्चों में अदब के मुताले का शौक पैदा करने के लिए हम लोग इब्तदा में रसाले या किताबें लेकर खुद उनके नजदीक जाएं, वो नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़कर सुनाएं, आप दिलचस्प अंदाज में सुनाएं, आप खुद दिलचस्पी ले रहे हैं, बच्चों को महसूस हो
2: जी,
1: आप गौर करेंगे, आप मोबाइल देखते हैं तो बच्चे भी मोबाइल देखते हैं।
2: बेशक
1: आप अगर किताब पढ़ने का शौक पालिए,
0: वो हमारी पढ़ते रहिए,
1: तो वो नकल करेंगे, वो भी किताब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो उनमें शायद दिलचस्प नज़मों, कहानियों और लतीफ़ों को आप खुशगवार वक्त में पढ़कर सुनाएं। सुनते सुनते
2: जी,
1: आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ दिनों में उनमें भी कैफियत पैदा होगी,
0: जो तजस्सुस जागता है,
1: तजस्सुस पैदा होगा और उसकी इफादियत आएगी कि भाई इसमें ऐसी कहानियां होती हैं, ऐसी नज़में रहती हैं,
0: हमारा रोल तो है।
1: तो फिर जैसे ही रसाला आएगा तो हम लोग जैसे बचपन में लपकते थे रसालों की तरफ और मांग मांग कर पढ़ते थे
2: जी,
1: किराए पर किताबें लेते थे,
0: पोस्टमैन से छीन लेते थे, लाओ मुझे दे दो।
1: तो अब वो माहौल नहीं है, लेकिन उस माहौल की तरफ कैसे जा सके आज के दौर में, आज के माहौल में वो माहौल कैसे पैदा हो, इस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है।
2: एक वो भी दौर था जब बुलंद मर्तबा व अदबा बच्चों के लिए लिखना अपने लिए बासे फख्र समझता था
1: जी।
2: वक्त की नज़ाकत को पेश नज़र रखते हुए हम चंद नामों पे ही इक्तफा करना चाहते हैं, मसलन अमीर खुसरू, कुली कुतुब शाह, मीर तकी मीर, इंशा अल्लाह खां इंशा, नज़ीर अकबर आबादी, मीर अमन दहलवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद ख़ान।

0: शिबली नोमानी, अल्ताफ हुसैन हाली, इस्माइल मिरठी, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, अकबर इलाहाबादी, हफीज जालंधरी, शफीउद्दीन नैयर, इम्तियाज अली ताज, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तिलोक चंद महरूम, कृष्णचंदर, अब्दुल गफूर शहबाज, इसमत चौगताई, सुहैल अजीम आबादी, प्रोफेसर शकीलुर रहमान वगैरह वगैरह। मगर गुज़श्ता चंद बरसों से उर्दू के मशाहिर कलम बच्चों के लिए तख्लीकात कलम बंद करना कसर शान समझते हैं। इस सिलसिले में शाहिद जमील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बड़ा अच्छा सवाल उठाया आपने। कसर शान समझते हैं हमारे जो मशाहिर हैं, हमने जो थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया कि कैसे खिलौना का सालनामा आता था,
0: तो
1: कैसे बड़े बड़े भारी भरकम लिखने वाले उसके अंदर मौजूद होते थे, कितना अच्छा मालूम होता था। लेकिन आज वो सूरत हाल नहीं है। फिर वही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि रसाले कम निकल रहे हैं और मुदीरान की जो अहमियत है वो मुदीरान की यहाँ अहमियत बढ़ जाती है। मुदीरान दिलचस्पी नहीं लेते हैं कि चीजें बड़े लोगों से मंगाएं, उनकी चीजें शामिल करें। आप दिल्ली के दो तीन निकलने वाले खूबसूरत रसालों को देख लीजिए, बमुश्किल एक बड़ा उसमें लिखारी नजर आएगा। मुजफ्फर हनफी वगैरह जब बाकायदे हयात थे तो कभी कभी लिख देते थे, लेकिन बाकी लोग बिल्कुल नहीं लिखते। ये लोग रसाला मंगाते ही नहीं, बुलाते ही नहीं कि भाई आप जो है आए और मेरे यहाँ लिखें, कोई दावत नहीं देते उनको। तो ये मसला है, मुदीरान का बड़ा जबरदस्त रोल है यहाँ। और हमारे जो लिखने वाले हैं उनका मामला भी टेढ़ा है। अदब अतफाल को वो संजीदा नहीं समझते हैं। इन्हें बहुत से अदीब अतफाल ऐसे हैं जो अदब अतफाल को कमतर या मामूली दर्जे की चीज समझते हैं। उनका ख्याल होता है कि ये शोभा शायद फनी या फिक्री चैलेंज पेश नहीं कर सकता। उसके बाद महदूद माली फवायद का ही मामला है, यानी अदब अतफाल के पढ़ने वाले महदूद हैं, किताबें भी कम बिकती हैं, इसलिए उदबा को फायदा भी कम मिलता। ये चीज इनके पेशे नजर होती है, भाई मैं बड़ों के पर्चे में लिखूंगा तो वहां से अच्छा पैसा आएगा, यहाँ से कम पैसा आएगा, ये मामला तो है। अच्छा, बच्चों की जो नफ्सियात का फहम है वो भी दरकार होना है, यानी बच्चों के लिए असरखेज कहानियां लिखने के लिए इनकी नफ्सियात जिस दिलचस्पियों और जुबान के दर्जे को समझना जरूरी है, जो हर अदीब के बस की बात नहीं। बाज अदीब खुद को इस काबिल नहीं समझते या चैलेंज को कबूल करना नहीं चाहते कि मैं बच्चों के लिए क्या लिखूं, क्या नहीं लिखूं, भाई बच्चों के लिए मैं क्या लिखूं। उसके बाद एक और मामला है, अदबी हलकों में पजीराई की कमी। अदबी हलके और अवार्ड्स अमूमन बड़ों के अदब को ही तरजीह देते हैं, चुनांचे बच्चों के अदब में लिखने वालों को वो मकाम या शोहरत नहीं मिलती जो दीगर असनाफ में मिल सकती। अच्छा, वक्त और तरजीहात का भी मामला है। सीनियर अदीब अक्सर नॉवल, अफसाना, शायरी या तनकीद जैसे शोबों में मसरूफ होते हैं, इनके पास बच्चों के लिए वक्त निकालना तरजीहात में शामिल नहीं होता। ये सारे मसाइल हैं। एक नुक्ता और भी है, कई बार इशाती इदारे बच्चों के अदब के लिए बेमियारी एडिटिंग, बसरी तरतीब या पेशकश पर खास तवज्जो नहीं देते, जिससे बड़े अदीबों को अपनी तख्लीकात के साथ इंसाफ होता नजर नहीं आता। अब मुदीर अगर नया है, अफसाना निगार की या मशहूर कहानीकार की चीज कहीं कहीं लगा दी, तो दोबारा वो आपके पर्चे में क्यों लिखेगा? ये मसला भी है। मैंने शुरू में कहा मुदीरान का भी जबरदस्त रोल है बच्चों के अदब को फरोग देने के लिए।
0: बिल्कुल, शाहिद जमील साहब
1: जी,
0: आपने बिल्कुल सही फरमाया। आज मैं ये देख रहा हूँ कि किसी अदीब का कोई अफसाना या कोई तख्लीक किसी रसाले में बड़ों के लिए शाये होता है, और उसी रसाले में अगर उसी कलमकार की कोई तख्लीक बच्चों के लिए शाये होती है तो उसे कम मुआवजा दिया जाता है,
1: जबकि बच्चों के लिखने में ज्यादा मेहनत,
0: ज्यादा मेहनत,
1: ज्यादा मेहनत,
0: लेकिन पता नहीं,
1: ज्यादा दिमाग लगता है, ज्यादा तवज्जो लगती है।
0: किस निगाह से
2: ऐसा है ना, मेरे ख्याल से
0: जी जी
1: यकीनन
2: के जो लोग इन्होंने बताया, मुआवजा कहिए या हौसला अफजाई कहिए या पजराई कहिए, ये सब कम होती है। इसकी वजह यह है कि वो लोग खुद अदब अतफाल तख्लीक करते नहीं है कि उनको मेहनत का अंदाजा हो, उनकी जिम्मेदारी का एहसास हो और वो एतराफ की रविश सामने आए,
0: जिससे हौसला शिकनी भी तो होती है।
2: जब तक आपको दर्द नहीं होगा तब तक आप दर्दमंद नहीं होंगे,
0: बेशक।
2: तो इसलिए ये दर्द होना चाहिए,
0: बेशक।
2: और बच्चे तो ऐसी चीज है, गुस्ताखी माफ हो तो अर्ज करूँ, कि शायद ही दुनिया का कोई शख्स हो
0: जी
2: जिसको बच्चों से मोहब्बत ना हो, जो बच्चों की बेहतरी के लिए ना सोचता हो। और अजीब हैरत की बात है कि अदब में वो लोग बच्चों के अदब पे ना सोचें, यानी बच्चों के लिए ना सोचें।
1: ये अजीब नुक्ता है।
2: तो बच्चों से संजीदा वाबस्तगी का सबूत है कि आप रिसालों में लिखते हैं, बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं, लेकिन अलमिया ये है शाहिद साहब और कैसर साहब
1: जी
2: के 10 साल की उर्दू मतबूआत की एक फ्रिज तैयार होती है।
1: अच्छा,
2: और उसमें एक भी किताब बच्चों की नहीं है।
1: बहुत अफसोस है,
2: ये सूरत हाल है। अच्छा, उसके अलावे आप गौर करेंगे
0: जी
2: कि तारीख अदब उर्दू की बहुत

0: सी किताबें आपकी नजरों में होंगी,
1: कई किताबें
0: उसमें गजल का बाब है, कसीदे का बाब है, कहानी का बाब है, अफसाना है, सब कुछ है,
1: अदब
0: अतफाल का बाब शायद ही नजर
1: आएगा।
0: तो ये सब सूरत हाल गैर संजीदगी की अलामत है और ये बहुत अफसोसनाक है और इसकी तलाफी हम अदीबों को करनी है।
2: एक वो भी जमाना था जब मुल्क के तकरीबन हर गोशे से कोई ना कोई बच्चों का नहायत ही खूबसूरत दीदा जैब और मियारी रसाला शाया हुआ करता था। मसलन खिलौना, फुलवारी, प्याम तालीम, ऊंचा, नौनहाल, नूर, जुगनू, कलियां, हिलाल और ख़ुद अपने सूबह बिहार से भी कई रसायल निकले, मसलन मुसर्रत, खुशबू, शहद, अतफाल अदब। मगर अफसोस के फिल वक्त सूबह बिहार और बिहार के अलावा दीगर कई सूबों से बच्चों के लिए कोई भी माहनामा शाया नहीं हो रहा है। आखिर इसके क्या वजूहात हैं शाहिद जमील साहब?
1: इसकी वजूहात में जो सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक खौफनाक बात है वो ये है कि जो बड़े हमारे बड़े हैं वो इसकी जानिब मुतवज्जे नहीं है। मैंने तो अपनी गुफ्तगू में ये बात कही, बड़े मुतवज्जे नहीं हैं और इदारे जो हैं वो भी मुतवज्जे नहीं हैं। आप खुद देख लें, हमारे बिहार से एक दो रिसाले निकलते हैं लेकिन वो बच्चों के रिसाला नहीं, हमारी एकेडमी बच्चों का रिसाला शाया नहीं करती। तो इस पर तवज्जो दिलाने की जरूरत है। इस पर तो बहुत देर से हम लोग ये बात कर रहे हैं, यही है कि लोग संजीदा नहीं है, न लिखने वाले संजीदा हैं, न तवज्जो दिलाने वाले संजीदा हैं, न अरबाब हलवक्त संजीदा हैं, वालदैन भी संजीदा नहीं है। पुराने जमाने में जब पर्चे निकलते तमाम स्कूलों में जाते थे, स्कूल भी संजीदा नहीं है। कभी कोई स्कूल वाला कहता नहीं कि साहब आप लोग बच्चों का रिसाला क्यों नहीं निकालते। मैं 1970 में मेट्रिकुलेशन में था, मेरे प्रिंसिपल जो थे वो मुसर्रत मंगाते थे। तो एक दफा का जिक्र मुसर्रत आया या नहीं आया, मैं खुद प्रिंसिपल के चैम्बर में दाखिल हो गया और मैंने पूछा कि सर वो मुसर्रत पर्चा आया कि नहीं। तुमने मुसर्रत पर्चा तो नहीं आया, तुम पढ़ते हो? मैंने कहा मुझे शौक है पढ़ने का। तो बहुत खुश हुए वो। तो स्कूल के असातिज़ा भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते। तो कोई एक वजह नहीं है, कई वजूहात हैं।
0: और इजाजत हो तो कि बच्चों के रिसाले कम छपने लगे हैं या नहीं छपते हैं तो सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं है ये भी मामला, बड़ों के रिसाले पर भी गौर करें अगर आप तो अच्छे अच्छे रिसाले जिस तरह पहले छपते थे, बहुत मेहनत से छपते थे और उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, किताबत होती थी, प्रूफ रीडिंग होती थी, तो हरूफ उड़ भी जाते थे, दोबारा लिखे जाते थे, फिर भी रिसाले छपते थे।
1: यानी इतनी सुरात नहीं थी छपाई में।
0: जी जी,
1: रिसाले छपते थे।
0: तो उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि मुदीर की गैर संजीदगी या कलमकारों का, ये तो है ही। असल में यह है क्या कि पढ़ने का चलन कम हो गया है हमारे यहाँ, कारी की तादाद घट रही है, दिनों दिन घट रही है। जो भी रसाले छपते हैं पढ़े कम जाते हैं। अब जैसे देखिए कि महाराष्ट्र में कई रसाले छपते हैं उर्दू के, उर्दू की कई किताबें छपती हैं, बड़ी तादाद में वहाँ फरोख्त होती हैं, रसाले भी बिकते हैं।
1: मालेगांव
0: में जो चंद साल पहले मेला लगा था,
2: अच्छा अच्छा,
0: तो लाखों की किताबें छपी थी।
1: क्या बात है,
0: ज़ौक की कमी हो रही है हमारे यहाँ। रिसालों की कमी नहीं, रिसालों की कमी ज़ौक से ना पूरी होती है।
2: जी, जी।
0: तो इसलिए एक ये है। दूसरे ये है, वहीं एक पर्चा है
2: जी,
0: शायद उर्दू का पहला हफ्तावार है,
1: खैर अंदेश
0: जो मालेगांव से निकलता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: और 22 साल
1: वो अभी भी निकलता है,
0: अभी भी निकलता है। ख्याल अंसारी उसके मुदीर,
1: ख्याल अंसारी मालेगांव वाले,
0: वो खुद भी अदब अतफाल से दिलचस्पी रखते हैं,
1: खुद शायर हैं वो बच्चों के।
0: तो जो एडिटर बच्चों के अदब से दिलचस्पी अमलन रखेगा तो उसके रिसाले में वो खुशूसियत सामने आएगी।
2: मालेगांव से गुलशन अतफाल भी शाया हो रहा है, बहुत पाबंदी से शाया हो
1: रहा है। अच्छा,
0: हमें लगता है रिसाले की कमी का एहसास हुआ है मीडिया को, उर्दू मीडिया को भी। यही वजह है कि तकरीबन तमाम अखबार हफ्ते में एक दिन बच्चों का सफर निकालते हैं, खुद जुबान व अदब भी जो है बच्चों का गोशा पाबंदी से शाया करते हैं। ये सब सिर्फ इख्तलाफी की सूरत है, छोटी
2: पूरी।
0: तो इस जानिब गौर करने की जरूरत है हमारे जिम्मेदारों को, हमारे अदीबों को, हमारे मुदीरों को और हमारे अदारों को।
2: बेशक कभी बच्चों के लिए बेशुमार दिलचस्प मेहमाती और जासूसी नॉवेल भी शाया हुआ करते थे जो तकरीबन हर घर के बच्चे खूब दिलचस्पी और दिल जमाई से पढ़ा करते थे। मसलन कृष्णचंद्र का नावल उल्टा दरख्त, प्रोफेसर शकीलुर रहमान का नावल नीली खोपड़ी, जफर प्यामी का नावल सितारों के कैदी, सिराज अनवर का नावल खौफनाक जजीरा,
1: काली दुनिया नीली दुनिया
2: वगैरह वगैरह। मगर अब बच्चों के लिए नावल भी नहीं लिखे जा रहे हैं भाई, ये भी एक अजीब सी बात है। सिलसिले तो में लोग क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, नहीं लिखे जा रहे हैं तो इसकी वजह ये नहीं है जो आम तौर पर मामला है, बड़ों के भी जो अदब है वो भी कितने लिखे जा रहे हैं। और बच्चों के जो नावल लिखे जा रहे, फिर मैं ही महाराष्ट्र का जिक्र करूंगा मैं कि वहाँ अच्छी तरह आदमी

0: मोहब्बत इसको कहते हैं। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी एवं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था खयाम ने। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जुर्माना से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने। इस गीत को सुनने से पहले एक छोटा सा संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

मुकेश एवं सुमन कल्याणपुर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगम में। आइए अब सुनते हैं फिल्म कनकन में भगवान का ये गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है भरत व्यास ने और संगीत शिवराम का।

0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: संदेश से पहले आप सुन रहे थे सखी रॉबिन फिल्म का गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था योगेश ने और संगीत दिया था रॉबिन बनर्जी ने। आइए आप सुनते हैं मंजिल फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर के।

फिल्म मंजिल के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम बज्जी का कार्यक्रम अंगना।

अंगना सुने वाला सब श्रोता के हम विजेता सिन्हा प्रणाम करत हती। अपने सबके बज्जिका के साप्ताहिक कार्यक्रम अंगना में स्वागत है। आए हम फिर से अपने समक्ष उपस्थित हती। देखो, स्वास्थ्य और स्वच्छता में बड़ा गहरा संबंध है। स्वास्थ्य के सीधा संबंध स्वच्छता से है। कहल भी जाइए, स्वच्छता में ईश्वर के वास होइत है। तो अपना सबके स्वच्छता के महत्व के समझे परत, स्वच्छता के ख्याल रखे के परत, तभी अपना सब स्वस्थ रह सके थती। तो अगर अपना सबके जीवन में स्वस्थ रहे के है, तो अपना सबके स्वच्छता के महत्व के समझे परत। देखो, स्वास्थ्य और स्वच्छता में बड़ा गहरा संबंध है। स्वास्थ्य के सीधा संबंध स्वच्छता से है। अगर जीवन में स्वस्थ रहे के है, तो अपना सबके स्वच्छता के महत्व के समझे पड़त। स्वच्छता

चाही। अपना सब जे भोजन करत हती वो शुद्ध है कि नहीं, वो स्वच्छता के साथ बनायल गेल है कि नहीं, भोजन ढक के रखल है कि नहीं, जे थाली में भोजन करत हती वो थाली साफ है कि नहीं, भोजन करे से पहले हाथ धोत हती कि नहीं, ये सब तरह के छोट छोट बात पर ध्यान देवे के चाही, तभी हम सब स्वस्थ रह सकत हती। देखो अपना सब जेना घर के साफ सफाई पर ध्यान देवे थती, अपन शरीर के सफाई पर ध्यान देवे थती, वैसे ही अपना सबके घर के साफ सफाई के साथ साथ आसपास के माहौल पर भी ध्यान देवे के पड़त। काहे कि ऐसन कित्ते लोग हतीन जे अपन घर के सफाई तक कर लेवे थतीन आ कूड़ा कचरा के अपन घर के द्वार पर छोड़ दे थतीन या सड़क पर कचरा लगा के छोड़ दे थतीन। आ एना करे से हवा चले पर उहे कचरा उड़ उड़ के सड़क गंदा करे के साथ साथ घर में वापस प्रवेश कर जायत है, या कित्ते लोग जब कूड़ा यहाँ वहाँ फेंक दे थतीन तो उ सड़े लगैया आ वैसे बदबू भी फैले लगैया, आ उ बदबू जब सांस द्वारा हमरा सबके शरीर में प्रवेश करैया तो हमर सबके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ैया आ हम सब अस्वस्थ हो जायत हती। तो कहे के मतलब है कि घर के सफाई के साथ साथ सड़क के सफाई पर भी ध्यान देवे के चाही, कूड़ा कचरा के ऐसन जगह पर फेंके के चाही जहाँ केकरो आना जाना नहीं हो। देखो यदि हम सब अपन आसपास के सफाई पर ध्यान देवे थती तो अपना सबके बीच एगो स्वस्थ समाज के निर्माण होत, जकरा अंतर्गत हर कोई स्वस्थ जीवन जियत। तो स्वच्छता के अपन जीवन के हिस्सा बनाई आ स्वस्थ रहे के लेल जे

0: कूड़ा कचरा के ऐसन जगह पर फेंके के चाही जहाँ केकरो आना जाना नहीं हो। देखो, यदि हम सब अपन आसपास के सफाई पर ध्यान देवे थती तो अपना सबके बीच एगो स्वस्थ समाज के निर्माण होत, जकरा अंतर्गत हर कोई स्वस्थ जीवन जियत। तो स्वच्छता के अपन जीवन के हिस्सा बनाई आ स्वस्थ रहे के लेल जे
1: बाहर में गंदगी फैला दे छी, बाहर में फैलल गंदगी पर बिल्कुल ध्यान न दे छी। अगर कोनो ध्यान देवो कैलक तो दोसर गंदा फैलावे में कनको परहेज नहीं करिय। साफ सुथरा रखना सबके काम है। कोई एक आदमी के साफ कैला से सफाई पर ध्यान देला से ये संभव नहीं है। जब तक सब कोई मिल के आस पड़ोस गली मोहल्ला के सफाई पर ध्यान नहीं देत तब तक गंदगी फैलते रहत। गंदगी से कई बीमारी हो ही। स्वच्छ वातावरण में मनुष्य स्वच्छ रहिए, मन भी स्वच्छ रहिए, काम करे में मन लगिए। ऐला हम सब मिल के अपन घर के साथ साथ आस पड़ोस के जगह के भी साफ सुथरा रखी। वैसे पहले के तुलना में आए लोग ए पर ध्यान दे रहल है, स्वच्छता के महत्व समझ रहल है।
0: अखनी अपने स्वच्छता के महत्व के संबंध में एगो छात्रा के विचार सुनित रही। अब आओ कार्यक्रम में आगे बढ़े थती आप बात करे थती हमर संस्कृति हमर पहचान के विषय में। देखो, लोक संस्कृति आ त्योहार दुनू एक दूसर के पूरक है। हमर सबके हर छोट छोट त्योहार के हमर सबके लोक संस्कृति से जुड़ाव है। जेना अपना सबके यहाँ जुड़शीतल मनाल जाइया, एकर पीछे पर्यावरण के सुरक्षा केना कैल जाए ई धारणा छुपल है। जेना होली, बैसाखी, मकर संक्रांति ई सब फसल के कटाई से जुड़ल होइत है, जे प्रकृति के साथ लोक समुदाय के सीधे जुड़ाव के दर्शावित है। देखो, हमारे सबके लोक संस्कृति सामाजिक समरसता के भी दर्शावित है। त्योहार के अवसर पर पूरा समुदाय एकजुट होइत है, जैसे आपसी भाईचारा, सामाजिक जुड़ाव आ एकता के भावना मजबूत होइया आ इहे हमर पहचान बनैया। देखो, हमर देश के संस्कृति विविधता और एकता के अनोखा संगम है, जे हमर पहचान के गहराई से गढ़ित है। अपन देश के संस्कृति केवल रीति रिवाज, भाषा आ वेशभूषा तक सीमित नहीं है, बल्कि ई हमर विचार, व्यवहार आ जीवन मूल्य में रचल बसल भी है। अपन सबके संस्कृति के आधार बहुत ही पुरान परंपरा है, जे समय के साथ बदलित तो है पर अपन पहचान के धूमिल नहीं होई देत है। अपना सबके छोट छोट त्योहार में मिले वाला खुशी, पूजा पाठ में श्रद्धा, लोकगीत लोक नृत्य से मिले वाला आनंद अपन सबके सामूहिक चेतना के प्रकट करैया। यहाँ हिंदी सहित कितने तरह के भाषा आ बोली अपन सबके अभिव्यक्ति के धरोहर है। देखो, हमर संस्कृति हमर सबसे बड़का पहचान है, काहे कि ई हमरा हमर इतिहास से जोड़ित है, हमर वर्तमान के दिशा देत है आ भविष्य के लिए क्षमता प्रदान करित है। एकरा समझना, एकरा अपनाना आ आगे बढ़ाना हमर सबके कर्तव्य है। देखो, जब हम अपन संस्कृति के सम्मान करित जीवन जिये थती तब हमर पहचान मजबूत होइया आ समाज अधिक सुसंगठित, संवेदनशील आ प्रगतिशील बनैया। अपना सबके लोक संस्कृति में मेहमान के ईश्वर के दर्जा देल जायत है। अतिथि देव भव के भावना अपना के हम दोसर के प्रति सम्मान आ सहयोग के व्यवहार प्रकट करित हती। हमर सबके कला आ साहित्य में रचित महाकाव्य, नाटक, चित्रकला आ शिल्प हमर कल्पना शक्ति के व्यक्त करैया। आई हमर सबके लोक कला मिथिला पेंटिंग कितने प्रसिद्ध है। इस चित्रकारी में हमर सबके संस्कृति, हमर सबके विचार झलकित है, जे हमर सबके पहचान बनित है। त कहे के मतलब है कि हमर देश के जे भी लोक कला है, जे भी लोक संस्कृति है, हमरा सबके ओकर सम्मान करे के चाही, ओकरा से हमेशा जुड़ल रहे के चाही, काहे कि इहे हमर पहचान है। अब आओ कार्यक्रम में आगे बढ़े थती आ रेणु सिन्हा के खिस्सा सुने थती। शीर्षक है राधा भौजी।
2: श्रोता भाई बहन, आई हम अपने के अंगना में उपस्थित थती एगो कहानी लेकर। हमर कहानी के शीर्षक

है राधा भौजी। गोपाल बाबू के लड़का कृष्ण कुमार बड़ा होनहार और सहज स्वभाव के हतन, पढ़े लिखे में बड़ा तेज हतन। गांव के स्कूल से ही कृष्ण कुमार पढ़लन, बाकी प्रथम श्रेणी से ही पास करत रहलन ह। कृष्ण कुमार के बाबूजी और माई प्रेम से किशन कहत रहथिन, यही से गांव भर में सब कोई हुनका किशन कह के पुकारे लागल। किशन पढ़ लिख के इंजीनियर बन गेलन और बोकारो शहर में लोहा के कारखाना में नौकरी भी करे लगलन। शहर में नौकरी करत रहत किशन बाकी समय निकाल के गांव अपन माई बाबूजी से भेंट करे आ जात रहत। एक बेर किशन जब शहर से गांव अयलन तब ममुहर जाय के लेल कहलन वो अपना माई से, तो हुनकर माई कहलथिन जा मामा मामी से भेंट क लीह आ बूढ़ नानी हव भेंट कल जाके, केकरो जिंदगी के कोनो ठिकाना न है, उ तब पाकल आम है कखनी चूजते कोनो भरोसा न है, यही से जाकर भेंट करिए आब। किशन खुशी खुशी अपन ममुहर के गांव जाय के लेल जतरा कैलन आ पहुँच गेलन अपन ममुहर गांव। किशन जब गांव में पहुँचलन आ रास्ता से जात रहत त गांव के खेत खरिहान के सुंदर दृश्य देख के मन बड़ा खुश भेलन। कहाँ शहर आ कहाँ ही गांव, लगत है जैसे प्रकृति चारों तरफ अपन सुंदर दृश्य में बसत हतन। लाल लाल लीची के फल आ हरियर हरियर सुंदर सुंदर आम आ कटहल के गाछी देखते सबके मन खुश कर देवे। उ गांव में एगो आम के गाछी इतना सुंदर फरल रहे कि हर आदमी उ गाछी के देख के लोभा जात रहे। किशन भी उ गाछी के देखते आगे बढ़ल जात रहत कि इतने में चार पांच लड़की के झुंड उ गाछी में घूमत देखाइत दिलन। उ लड़की के झुंड में एगो लड़की इतना सुंदर रहे कि किशन उ लड़की के देखलन त देखते रह गेलन कुछ देर तक। रास्ता भर ये सोचत रहलन कि किनकर लड़की है पता लगावे के चाही। किशन जब अपना नानानी के यहाँ पहुँचलन तब मामा मामी और नानी सबसे बहुत प्रेम से मिललन और सबके गोर लगलन आ स्नेहगर आशीर्वाद पैलन। एक दिन जब किशन अपना नानी के पास बैठल रहत त गांव के सुंदर दृश्य के आ आम और लीची के गाछी के शोभा के बखान करे लगलन और नानी से कहलन गे नानी तू जनैत हते आम के गाछी में चार पांच गो लड़की सब घूमत रहे जे में बड़की बड़की सुंदर आँख वाली सबसे सुंदर एगो लड़की रहे, उ लड़की कौन है? त किशन के नानी कहलथिन रे किशन केकरा बारे में तू कहत हत, उ त जमींदार रामजी बाबू के लड़की है राधा, ओकरे बारे में इ गांव में सबसे सुंदर हुनके लड़की है। किशन बड़ा खुश होके नानी के गोर दबावे लगलन आ नानी से कहलन गे नानी तू बात चलाब हम उहे लड़की से शादी करब। त नानी कहलथिन बबुआ तू कहाँ इंजीनियर आ उ लड़की भले ही सुंदर त है बाकी पढ़ल लिखल न है, कैसहूँ पढ़े लिखे के जानत है और गांव के स्कूल से सातवां आठवां पास है। त किशन कहलन गे नानी कम पढ़ल लिखल है त की भेलै हम हुनका पढ़ा लेब, जितना पढ़तन उतना हम पढ़ा देब। त नानी कहलथिन ठीक है तू कहत हत त बात चलबत हती। त ए तरह से नानी के आ मामा के रामजी बाबू से बातचीत कैला पर शादी के दिन भी तय हो गेल। इतना सुंदर आ सहज स्वभाव वाला लड़का आ नौकरी है त इंजीनियर, भला कौन बेटी वाला न चाहते अपना बेटी से शादी करे के। रामजी बाबू खुशी खुशी तैयार हो गेलन अपन लड़की से शादी करेला। बाकी एक बेर किशन के माई बाबूजी एकर विरोध कैलन कि कम पढ़ल लिखल लड़की से तू ब्याह न कर, तब भी किशन न मानलन आ कहलन कि बाबूजी कोई बात न है शादी के बाद हम राधा के पढ़ा लेम। इस तरह से एक दिन किशन राधा से शादी करके ब्याह के बंधन में बंध गेलन। किशन हमर भैया के बचपन के दोस्त हतन, उ जब जब गांव अबैत जात हतन त कुछ देर के लेल ही सही हमरा यहाँ जरूर एतन। शादी करके जब उ राधा भौजी के संग जात रहत शहर त हमरा यहाँ भी अयलन और कहलन कि सीमा देख अपना भौजी के हम शादी कर ले ली है। भौजी यानी राधा भौजी जे देखे से देखते रह जाए, इतना सुंदर जे लागे कि भगवान हुनका के फुर्सत के समय में बनौले होतन। बाकी अति सुंदरता के बाद हुनका में देहाती अल्हड़पन बेसी रहे, न रहन सहन के ढंग रहे और न केकरो से कैसे बातचीत करे के चाही एकरो तरीका न रहे। हम ये बात किशन भैया से कहती बाकी ओसे पहले उहे हमरा के कहलन कि ये सीमा तू जे कहबे से हम बुझत हती

0: तू अपना भौजी के कुछ रहन सहन के ढंग आ बोले चाले के यानी केकरो से कैसे बातचीत करे के चाही तनी सिखा द। हम कहली हो भैया ए लेल तोहरा कम से कम एक सप्ताह रुके के पड़तब। अच्छा ठीक है हम रुकब, किशन भैया कहलन। एगो बात रहे राधा भौजी में, हुनकर स्वभाव बहुत ही मिलनसार रहे, तनिको न बुझायल कि हमर अपन भौजी न हतन। बहुत अच्छा सील स्वभाव आ कोई चीज सीखे के प्रवृत्ति भी रहे। कोई भी रहन सहन के ढंग आ बातचीत करे के सिखाई त जल्दी सीख लत, न त केकरा आप कहूँ कि केकरा तुम कहूँ, एकरो ढंग न रहे हुनका में। खैर एक सप्ताह ऐसा ही ननद भौजाई के हंसी ठिठोली में समय बीत गेल और किशन भैया राधा भौजी के लेके शहर चल गेलन। शहर गेला पर किशन भैया राधा भौजी के लेल घर ही में मास्टर बोला के पढ़ावे लगलन और अपनो समय निकाल के हुनका के पढ़ावे लगलन। समय बीतत गेल, राधा भौजी मैट्रिक पास क गेलन और ओकरा बाद बीए भी पास क गेलन। राधा भौजी इतना लगन आ मेहनत से पढ़ाई कैलिन कि हरदम प्रथम श्रेणी से ही पास कैलिन। बीए पास कैला के बाद किशन भैया भौजी के लेके गांव जात रहत त एक दिन के लेल हमरो यहाँ आयलन। जब राधा भौजी हमरा दरवाजा पर गाड़ी से उतरत रहत त जब हम उनका देखली त देखते रह गेली। हुनका में ऊ परिवर्तन हो गेल रहे कि लागते न रहे कि उहे राधा भौजी हथिन। भगवान सुंदरता तो देले ही रहथिन और पढ़ला लिखला आ शहर में रहला के कारण खूब स्मार्ट लगत रहथिन। हमरा मुंह से निकलिए गेल कि वाह भैया तू तो भौजी के खूब स्मार्ट बना दिल। तो तनिको न लगत हथुन कि उहे राधा भौजी हथुन। बोले चाले में भी खूब फरहर हो गेलिन, सबसे बातचीत करत त तरीका से बात करत। इहे बीच में हुनका दूगो बच्चा भी हो गेल रहे, एगो लड़का आ एगो लड़की। हम कहली भौजी से जब एगो लड़का हो गेल त दोसर बच्चा न हो देती, ई त लड़की हो गेल। त राधा भौजी कहलिन हे बबनी बिना लड़की के अंगना घर तनिको न शोभैया, ए लेल जितना लड़का जरूरी है उतना ही लड़की भी जरूरी है। हम त राधा भौजी के लड़की के प्रति सुविचार सुन के बहुत खुश भेली। ओकरा बाद किशन भैया आ राधा भौजी एक दिन रह के हमरा यहाँ गांव चल गेलन अपना माई बाबूजी से मिले। ओकरा बाद किशन भैया राधा भौजी के साथे अपना ससुराल भी गेलन, वहाँ भी सबसे भेंट कैलन। ममहर में भी मामा मामी या नानी से भेंट कैलन। सब कोई राधा बेटी या किशन भैया के सुखी संपन्न देख के बहुत खुश भेल। कुछ दिन गांव में रहला के बाद उ लोग शहर लौट गेलन। वहाँ गेला के बाद राधा भौजी बीएड के पढ़ाई कैलिन और सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर काम भी करे लगलिन। साथे साथे टोला मोहल्ला में जाके लड़की या महिला सबके पढ़े लिखे के लेल जागरूक करे के काम भी करे लगलन। यहाँ तक कि जे लड़की या महिला में हस्तकला के हुनर रहे जैसे पापड़ चिप्स अदौड़ी बड़ी अचार मुरब्बा बनावे के ओकरो में जागरूकता लावे के कोशिश कैलन। जे लड़की में सिलाई कटाई बुनाई आ कढ़ाई के हुनर रहे ओकरो सबके प्रेरित कैलिन कि तू सब अपना हुनर के प्रचार प्रसार कर आ लघु उद्योग खोले के चाहबू तो सरकार भी तोरा सबके मदद करी। यही तरह से काम के व्यस्तता और बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई के कारण किशन भैया राधा भौजी के गांव अयला कुछ दिन बीत गेल। तो राधा भौजी के बाबूजी एक दिन गेलन शहर बेटी से भेंट करे। बाकी राधा भौजी तो स्कूल में पढ़वित रहथिन, हुनकर बाबूजी स्कूल में ही चल गेलन आ बेटी के पढ़वित देख के बहुत खुश भेलन। जब राधा भौजी के पता चललन कि हुनकर बाबूजी आयल हथिन तो वो बाहर आकर बाबूजी के गोर लगलथिन। बाबूजी हुनका सस्नेह हृदय से आशीर्वाद देलथिन आ कहलथिन बेटी तोहरा ऐसन बुद्धि सब बेटी के भगवान संसार में देथुन। कुछ दिन बेटी के पास रह के हुनकर बाबूजी गांव लौट गेलथिन। गांव में राधा भौजी के बाबूजी अपना बेटी या दामाद के खूब प्रशंसा करे लगलन। अब गांव गांव में चाहे वो राधा भौजी के नैहर के गांव हो चाहे किशन भैया के ममहर हो और चाहे हुनकर अपन गांव घर हो, सब जगह हर अंगना घर में हिनकर सबके चर्चा प्रशंसा पूर्वक होए लागल। इस तरह से नवयुवक आ नवयुवती सबके लेल किशन भैया आ राधा भौजी प्रेरणा के स्रोत बन गेलन।
1: अखनी अपने रेणु सिन्हा से खिस्सा सुनित रही, शीर्षक रहे राधा भौजी। अब बात अपन धरोहर के। आय बात अपन धरोहर में हम बात करे थती बिहार राज्य के सहरसा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तारा स्थान के। माँ तारा मंदिर सहरसा के एगो

वो प्रसिद्ध गांव महिषी में कोशी नदी के निकट स्थित है। इस क्षेत्र प्राचीन मिथिला भूमि में परैया, जे माँ के शक्ति, तांत्रिक परंपरा आ वैश्विक संस्कृति से गहराई से जुड़ल है। इस मंदिर के निर्माण सन 1735 में दरभंगा के रानी पद्मावती द्वारा कैल गेल रहे। यह स्थल पर्यटन विभाग के मानचित्र पर भी है। महिषी के माँ तारा मंदिर मिथिला क्षेत्र के सबसे प्राचीन शक्ति पीठ में से एक है। यह स्थान उत्तर भारत में देवी पूजा के सबसे शक्तिशाली केंद्र में से एक है। देखो, वैसे तो सहरसा से 16 किलोमीटर दूर इस शक्ति स्थल पर सालों भर श्रद्धालु के तांता लगल रहैया, लेकिन नवरात्रि के दिन में आ हर मंगलवार के यहाँ श्रद्धालु के भारी भीड़ होइया। ये स्थान के विषय में बहुत तरह के खिस्सा जानल जाइया, जैमे से एगो खिस्सा ये भी प्रसिद्ध है कि महामाया सती के मृत शरीर के लेके शिव बेचैन होके ब्रह्मांड में घूमित रहतीन। ऐसे होए वाला प्रलय की आशंका होए लगल, तब भगवान विष्णु द्वारा महामाया के मृत शरीर के अपन सुदर्शन से 52 भाग में विभक्त कर देले रहतीन। एना में माता सती के शरीर के जे हिस्सा धरती पर जहाँ गिरल उ स्थान शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गेल। महिषी उग्रतारा स्थान के संबंध में ऐसा मान्यता है कि यहाँ सती के बायां नेत्र भाग गिरल रहे। यह स्थान के एगो ये भी मान्यता है कि ऋषि वशिष्ठ द्वारा यहाँ उग्र तप कैल गेल रहे आ उग्र तप के बदौलत भगवती के प्रसन्न कैल गेल रहे। माता के प्रथम साधक के इस कठिन साधना के कारण भगवती प्रसन्न हो गेल रहतीन आ वहाँ प्रकट भेल रहतीन। यहाँ एगो ये भी बात प्रसिद्ध है कि माता अपन भक्त के उग्र से उग्र व्याधि के नष्ट करे वाली है, जकरा कारण भक्त द्वारा इनका उग्र तारा के नाम देल गेल रहे। महिषी में भगवती अपन तीनों स्वरूप उग्र तारा, नील सरस्वती आ एक जटा रूप में विद्यमान है। ऐसा मान्यता है कि बिना उग्र तारा के आदेश के तंत्र सिद्धि पूरा नहीं हुई है। यह कारण है कि तंत्र साधना करे वाला लोग यहाँ अवश्य आवे थतीन। यह स्थान पर देवी के पूजा आम दिन में वैदिक विधि से होइया, लेकिन नवरात्रि के समय में यह पूजा तंत्र विधि से कैल जाइया। नवरात्रि में माँ के आरती दुन्नू समय होइया। देखो, यहाँ के लोग के ये भी मानना है कि यहाँ के मंदिर में माँ उग्र तारा के प्रतिमा के कितने स्वरूप में देखेला मिलित है। यहाँ के भक्त के कहना है कि भोर के समय में ये प्रतिमा अलसायल जैसन लगित है, तब दोपहर में रौद्र रूप में आ शाम के समय में सौम्य स्वरूप में दिखाई देवित है। माता के इन तीनों स्वरूप के दर्शन भक्त के लिए सुखद आ फलदायी होइया। माँ तारा के महिमा अपन देशे में नहीं बल्कि विदेश में भी फैलल है। महिषी के उग्र तारा स्थान में आके जे भी मनोकामना मांगल जाइया, माँ उग्र तारा ओकरा अवश्य पूरा करे थतीन। जेकर मुराद पूरा होइया उ भक्त माँ के चरण में चढ़ावा भी चढ़ावित है। देखो, वैसे त महिषी के माँ तारा के संबंध में इस तरह के बहुते रोचक खिस्सा प्रसिद्ध है जेकरा हम जान सके थती, पर आए बात अपन धरोहर में बस इतनी। अब आओ कार्यक्रम में आगे बढ़े थती आ अरुण कुमार अकेला के गायल इ देवी गीत सुने थती।

अखनी अपने अरुण कुमार अकेला के गायल ई देवी गीत सुनित रही। अब समय हो रहल है शब्द सरिता के। आय शब्द सरिता में बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। आय शब्द सरिता में सबसे पहले एगो शब्द आयल है उपास, जकर मायने होइय उपवास। जेना लोग कहत हथिन पूजा पाठ में उपास कैला से, मतलब उपवास कैला से ईश्वर प्रसन्न होइत हथिन, त उपास के मायने भेल उपवास। एनाहिते एगो और शब्द आयल है भुइया, एकर मायने होइय जमीन। जेना लोग कहत हथिन ज्यादातर छोट बच्चा के आदत होइय कि हुनकर जिद पूरा नहीं होइ पर उ भुइया में लोटाए लगत है, मतलब जमीन पर लोटाए लगत है, तब भुइया के मायने भेल जमीन। बड़ैत मतलब जलता हुआ। जेना लोग कहत हथिन बड़ैत दिया के, मतलब जलत दिया के मुँह से नहीं फूक मारे के चाही, ओकरा हाथ से बुझावे के चाही, तब बड़ैत के मायने भेल जलता हुआ। त ई रहे बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। बज्जिका कार्यक्रम अंगना अब संपन्न होइया। बज्जिका कार्यक्रम अंगना अपने के कैसन लगैया, अपने अपन विचार अपन सुझाव एगो चिट्ठी आ हमर ईमेल के माध्यम से हमरा भेज सकत हती। हमर पता है बज्जिका कार्यक्रम अंगना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। ईमेल के पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो अब प्रस्तुत करता मितेश कुमार मिश्रा के संग हमरा यानी विजेता सिन्हा के दू अनुमति एक बेर फिर से अपने सबके प्रणाम करे थती।

आप सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए उपशास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार हैं शोभा गोटू, आइए सुनते हैं इनका गायन।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत शोभा गुर्टू का गायन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश।

0: भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
1: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
1: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
1: जी हाँ श्रोताओं, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं।
0: जी
1: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
0: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं।
1: जी
0: तो बिमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
1: अजीत जी आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
0: जॉन बील मेला?
1: जी
0: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो।
1: जी
0: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
1: अजीत जी ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी।
0: जी पूछिए पूछिए।
1: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीददारी का माध्यम क्या होता है?
0: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
1: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे? क्या लेन देन होता ही नहीं था? बताइए बताइए।
0: विमलेश जी लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
1: अजीत जी वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। ये बहुत प्राचीन तरीका था।
0: जी बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं? कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर?
1: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
0: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है।
1: जी
0: विमलेश जी जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
1: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
0: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
1: जी
0: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
1: श्रोताओं, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
0: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
1: जी फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
0: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
1: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
0: तो श्रोताओं ये थी जानकारी अनूठे जॉन बील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जॉन बील मेला कहाँ

0: और कब मनाया जाता है?
1: 8800-4400-559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
0: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।

0: आज वल्लरी बहुत उत्साहित है, क्यों? आइए जानते हैं।
1: यमन भैया, यमन भैया, कहाँ हो भैया?
2: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: भैया, खुश होने की बात तो है ही, पता है पापा का ईमेल आया है।
2: अच्छा, क्या लिखा है?
1: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है, कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
3: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है, टिकट भी भेज दिए हैं।
0: वल्लरी, यमन और उनकी माता जी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
2: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
3: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी, कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
0: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
3: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
0: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
4: नमस्ते पापा।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बेटा आप लोग?
4: ठीक है।
0: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
4: बड़ा मजा आया।
0: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आजा आजा आजा। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
3: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
0: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चौतान जी घर पर हैं क्या?
5: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते
4: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी, है ना?
0: बिल्कुल ठीक पहचाना।
5: आइए, स्वागत है आप सबका।
0: धन्यवाद।
5: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा।
0: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
1: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था, बड़ी सुंदर जगह है।
5: थैंक यू।
2: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
5: ओहो। वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
0: जी,
5: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।

0: बिल्कुल ठीक कहा।
1: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
0: अरे
1: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखकेन का पर्व जो है।
0: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
2: अच्छा तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
0: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
3: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
1: बेटा ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
0: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
2: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
1: थैंक यू।
0: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
1: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
0: अच्छा
2: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
1: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
0: जल उत्सव क्यों?
1: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
0: अच्छा।
1: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
0: हाँ।
1: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
0: जी।
3: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
1: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
2: तो हम भी चले?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
2: चलो चलो चलो।
4: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
5: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
6: हैप्पी सांकेन।
4: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
2: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
5: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
1: अरे।
4: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
1: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
2: अच्छा।
1: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
2: जी अंकल।
1: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
7: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
1: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
7: हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
5: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश, तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग। सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।

0: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
1: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Buddy Langlingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
4: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
3: कुसुमलता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
3: नमस्कार.
5: उमंग उमंग उमंग उमंग.
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग. ये प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा. मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर. साथ ही साथ आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर. सुनते रहिए हमारे सभी कार्यक्रमों को. फिलहाल हम चलते हैं फिल्मी गीतों की तरफ. आनंद लीजिए नई फिल्मों के गाने का. ये गीत है फिल्म आजाद से. अरिजीत सिंह और अमित त्रिवेदी की आवाजें हैं. स्वानंद किरकिरे का लिखा ये गीत है, अमित त्रिवेदी का संगीत.

0: फिल्म संकेत। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से। ये आखिरी गीत आपने सुना फिल्म वनवास का। आवाजें थी सोनू निगम, सुखविंदर सिंह, मिथुन, मोहम्मद दानिश और साथियों की। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे रविवार 19 जुलाई को प्रसारित हेलो जिंदगी का संपादित अंश।
1: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का। 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का।
3: देश हो रहा है आयुष्मान।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: मुतमईन होके मरने का सामान कर, जिंदगी ऐ खुदा मुझ पर आसान कर। मौत तो आएगी बेतलब आएगी, जिंदगी है तो जीने का अरमान कर। इसमें कोई दो मत नहीं कि जिंदगी में खुशहाली हम सभी चाहते हैं, खुशहाल रहने की चाहत हर किसी की होती है, लेकिन एक तल्ख सच्चाई ये भी है कि जिंदगी हमारे लिए हमेशा खुशियां लेकर ही नहीं आती। उम्र के किसी न किसी पड़ाव पर गम की कुछ परछाइयां भी हमारे साथ साथ चलती हैं। इन परछाइयों में कभी न कभी किसी न किसी बीमारी की कोई न कोई तकलीफ भी शुमार अवश्य होती है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो सामान्य इलाज और थोड़े से परहेज से ठीक हो जाती है, मगर कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनमें समय रहते उचित जांच पड़ताल के साथ सही दवा और परहेज की जरूरत होती है। लीवर में होने वाली हेपेटाइटिस समेत कुछ अन्य ऐसी बीमारियां हैं जिनका वक्त रहते अगर ठीक ढंग से जांच न कराई जाए, इलाज न कराया जाए, परहेज न रखी जाए, तो न सिर्फ स्थिति जटिल हो जाती है बल्कि जान भी खतरे में पड़ सकती है। दुर्भाग्य से इन समस्याओं को हम अक्सर नज़रअंदाज ही करते रहते हैं। विशेषज्ञों की माने तो कुछ खास लक्षण और तकलीफें अगर लगातार बनी रहें तो एकदम सावधान हो जाने की जरूरत होती है। जिंदगी की समस्याओं से जुड़े मसले कुछ भी हों, आपको सावधान करने का, उससे निपटने के सही तरीके तक आपको पहुंचाने का एक दायित्व जिसका निर्वहन हम लगातार करते आ रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओं नमस्कार, संजय की तरफ से। हेपेटाइटिस एवं लीवर संबंधी अन्य रोग और सावधानियां, यही है आज के हमारे कार्यक्रम हेलो जिंदगी का विषय। और इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आप श्रोताओं को उचित जानकारी और परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं जाने माने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित कुमार सुमन। डॉक्टर सुमित कुमार सुमन, एक बार फिर से आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में कार्यक्रम हेलो जिंदगी में आपका स्वागत। नमस्कार, कैसे हैं सर ये बताइए।
2: जी बिल्कुल

0: बढ़िया।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें होंगी हेपेटाइटिस को लेकर के, क्योंकि इसी महीने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी है। जो श्रोता पहली बार डॉक्टर सुमित कुमार सुमन को सुन रहे हैं, उनके पास एक जिज्ञासा है डॉक्टर साहब कि डॉक्टर सुमित कुमार सुमन कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आते हैं, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई?
2: जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ और मैंने अपनी MBBS सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से किया है, MD RML न्यू दिल्ली एंड DM गैस्ट्रो हैदराबाद गांधी मेडिकल कॉलेज से किया है। अभी मैं यहाँ पे अपना निजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ दरभंगा में।
1: पहला सवाल जो होगा वो ये होगा कि जब हम लीवर की बात करते हैं, ये लीवर है क्या और इसका जो है कार्य क्या है?
2: लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है ये हमारे खाना पचाने के लिए पित्त बनाता है
1: जी।
2: दूसरा, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे वेट को कंट्रोल करता है, हमारा शुगर कंट्रोल करता है, और अगर किसी को देख के हम बोलते हैं ना तुम्हारे चेहरे में रौनक है, तो ये आपका लिवर हेल्दी बता रहा है कि अगर आप चेहरे पर रौनक खिला खिला है, इसका मतलब आपका लिवर बहुत हेल्दी है।
1: अच्छा
2: जी,
1: लीवर को लेकर के बहुत सारी जिज्ञासाएं आएंगी इस कार्यक्रम में। और लीवर को डॉक्टर साहब पावर हाउस तक लोग कहते हैं कि शरीर का अगर कोई मतलब ऊर्जा देने का स्रोत है तो लीवर है
2: जी।
1: ये क्या है?
2: हम जो भी खाना खाते हैं सारे चीज हमारे लीवर में जाके प्रोसेस होता है। फर्स्ट जो मीटिंग होती है वो लीवर में होती है, जो भी हम चीज खाते हैं। तो एक तरह से ये बोला जा सकता है जो लीवर है हमारा पुलिस चेक पोस्ट है। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जब जा रहे होते हैं तो एक चेक पोस्ट होती है जहाँ पे कोई भी गैर कानूनी सामान को चेक किया जाता है कि हम जाने दें या ना जाने दें। तो लीवर में जो भी चीज़ खाते हैं सब पहले प्रोसेसिंग लीवर में होती है और उसमें ये देखा जाता है, वो चेक पोस्ट सिस्टम है, पुलिस चेक पोस्ट है, जो भी अनवांटेड मटेरियल्स होता है उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है।
1: अच्छा अच्छा,
2: जो भी जो उन शरीर को चाहिए होती है वो वहाँ से लिया जाता है। तो अगर लिवर डैमेज हो गया तो मतलब वो डिटॉक्सिफाई सिस्टम खराब हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि अगर लीवर दुरुस्त नहीं है तो लीवर से जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं ना दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है।
2: लीवर पहला ऑर्गन है, अगर वो डैमेज हुआ उसके साथ में सारे ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं धीरे धीरे
1: एक एक करके,
2: क्योंकि वहीं से मटेरियल्स को छांटा जा रहा है। आपका डैमेज हुआ मतलब सारे अनवांटेड मटेरियल सब बॉडी पार्ट्स में जाने लगे।
1: एक श्रोता जुड़ गए, उनसे हम बात कर लेते हैं।
3: नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार।
3: मोहन पासवान बिहार से बोल रहा हूँ।
1: जी मोहन पासवान जी, बताइए जिज्ञासा क्या है?
3: जिज्ञासा है सर की लीवर संबंधी समस्या उत्पन्न होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? दूसरा है सर की लीवर और हेपेटाइटिस के बीच किस प्रकार का संबंध है? तीसरा है सर की क्या बचपन से लीवर पर ध्यान देकर लीवर को ठोस और मजबूत बनाकर हेपेटाइटिस और अन्य बीमारियों से बचा जा सकता है? एक और सर की वर्तमान समय में रेडीमेड नाश्ता रेडीमेड भोजन की ओर लोग आकृष्ट हो रहे थे, प्रकार के बीमारी का जन्म जाता है सर, क्योंकि खान पान के कारण ही लीवर खराब होता है और कई प्रकार के बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं सर।
1: सुनिएगा पूरे कार्यक्रम को, हम एक एक कर चर्चा कर रहे हैं आपके सवालों का, ठीक है मोहन पासवान जी?
3: जी सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े ही सजग श्रोता हैं मोहन पासवान जी, और अमूमन कार्यक्रम की शुरुआत में ही फ़ोन लगा कर एकदम से तैयार रहते हैं और जब सवाल करते हैं तो 3-4 से कम नहीं करते हैं। एक और श्रोता जुड़ गए हैं हमारे बेस लाइन पर। जी नमस्कार, हेलो।
4: नमस्कार, मैं अरुण कुमार लाल दास सुंदरपुर जिला दरभंगा से बोल रहा हूँ।
1: जी अरुण कुमार लाल दास जी नमस्कार, बताइए क्या जी कैसा है?
4: प्रश्न है
1: जी, बताया जाए जी।
4: पहला प्रश्न ये है कि अल्कोहल लेने से और स्मोकिंग करने से लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: जी जी।
4: और ये दूसरा है कि हेपेटाइटिस का जो टीका लिया जाता है वो कब लिया जाता है और कब कब लेना चाहिए?
2: अल्कोहल जो होता है, हम जो भी अल्कोहल अमाउंट पीते हैं
1: जी, जी।
2: हम ज्यादातर जो भी चीज खाते हैं वो हमारी छोटी आंत में जाकर के लीवर से लीवर में जाता है, पर अल्कोहल एक ऐसा चीज है जो सीधा पेट से लीवर में डायरेक्ट चला जाता है और लीवर में वो जो अल्कोहल है वो लीवर सेल्स को डैमेज कर रहे होता है। जो बोलते हैं ना हेपेटाइटिस, वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अल्कोहल लेने से, अगर हैवी अमाउंट में अल्कोहल लिया है किसी ने, तेजी तेजी से बहुत सारे नंबर ऑफ ड्रिंक्स बढ़ा लिए, 2 घंटे में 4 ड्रिंक्स 5 ड्रिंक ऐसे पीते हैं, उसको हम बिंज ड्रिंकिंग बोलते हैं
1: जी।
2: तो ऐसे कंडीशंस में अल्कोहल लीवर सेल्स को बहुत

0: तेजी से डैमेज करता है, और साथ में कई बार जो लोग शराब पीते हैं और साथ में स्मोकिंग भी करते हैं, स्मोकिंग करने से भी लीवर सेल्स डैमेज होता है, और इनिशियली में हेपेटाइटिस होता है जब डैमेज होता है सेल्स को, हेपेटाइटिस मतलब लीवर में सूजन हो गई है। ये ऐसा कार्यक्रम अगर बार बार होता रहे, मतलब बार बार हेपेटाइटिस हो रहा हो, तो धीरे धीरे लीवर सेल्स, लीवर सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं, जो एंड स्टेज लीवर डिजीज होता है, जो कि लीवर बिल्कुल तरह से खराब हो गया। हेपेटाइटिस जो है वो एंड स्टेज लीवर डिजीज नहीं है, कुछ भी जब लीवर को हानि पहुंचाती है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कोई दवाई हो, तो उससे हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस मतलब लीवर सूज गया, और उसके एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, SGOT SGPT लेवल्स बढ़ जाते हैं, लीवर के सेल्स टेम्पोरली डैमेज होते हैं। लेकिन यही प्रोसेस अगर लंबे टाइम से चल रहा हो तो लीवर सिकुड़ जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसको सिरोसिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस कम्प्लीटली रिवर्सिबल है अगर इंसान शराब पीना छोड़ दे, वायरस को ट्रीट करा ले, या जो ड्रग्स जो ले रहे हैं वो सब चीज़ों को छोड़ दे, तो हेपेटाइटिस कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाता है। बट सिरोसिस एक बार हो गया तो फिर वो नॉर्मल नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन था हेपेटाइटिस वैक्सीन के, वायरस वैक्सीन। हमारे पास दो हेपेटाइटिस, दो वायरस है, एक हेपेटाइटिस बी वायरस है और एक हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बट अच्छी बात है कि हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मतलब अगर किसी को हेपेटाइटिस सी हो जाता है तो उसकी 12 से 24 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है और कम्प्लीटली क्योर हो जाता है, बशर्ते कि सही टाइम पर पता चल जाए उसको। और हेपेटाइटिस बी है कि उसकी ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है बट कम्प्लीटली क्योर नहीं होता है वो, लेकिन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन मतलब आप बचाव कर सकते हैं हेपेटाइटिस ना होने से।
1: उसके टीका पड़ता है,
0: जनरली जो बच्चे जन्म होते हैं तो जन्म के टाइम में ही पड़ जाता है अगर वो सरकारी अस्पताल में कराए हैं तो, और जिनको नहीं पड़ा है वो जनरली 3 टीके लगते हैं। पहला जब भी वो कराएंगे उसको 0 डोज बोलते हैं, उसके बाद फिर 1 महीने और फिर 6 महीने, 3 डोज कराने पर वो सेफ हो जाते हैं।
1: जिन लोगों ने नहीं लिया है वो कभी भी ले सकते हैं।
0: जिन्होंने नहीं कराया है उनको पहले तो अपनी हेपेटाइटिस बी का चेकअप कराना चाहिए कि वो पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं होते इनिशियली, तो कई बार लोगों को पता ही नहीं होता और पॉजिटिव होते हैं, तो उनमें हेपेटाइटिस वैक्सीन देने का कोई यूज नहीं है। तो पहले ना हो, चेक करा के नेगेटिव है तो उनको वैक्सीन 3 डोज ले लेना चाहिए।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कुमार लालदास जी। डॉक्टर साहब, लीवर एग्जैक्ट प्लेस कौन सी है?
0: लीवर का एग्जैक्ट प्लेस जो है वो हमारे राइट साइड में अपर पार्ट में होता है, जस्ट चेस्ट के नीचे जो हमारे रिब्स है, रिब्स का लास्ट पोर्शन,
1: पसली जहाँ
0: खत्म होती है, पसलियों के अंदर होता है, छुपा होता है, प्रोटेक्ट करती है उसको। तो आधी पार्ट जो है पसलियों के नीचे होती है, थोड़ी सी निकली होती है।
1: जी ये काम कैसे करता है? आपने थोड़ी सी बात कही थी कि जब हम खाना खाते हैं, खाना आमाशय में जाता है, उसके बाद
0: वो सारा चीज एब्जॉर्ब होके खून के द्वारा लीवर में जाता है। अच्छा। और वहाँ पे जो भी, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया, शुगर खाया, जो भी खाया, सब लीवर में जाता है। लीवर में मेटाबोलाइज होता है, मतलब उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है। अच्छा। और वहाँ से वो छोटी चीजों में, एमाइनो एसिड्स और ये सब चीजों में, कणों में बन के वो अदर पार्ट्स में ब्लड के द्वारा ट्रांसफर हो जाती है। तो यहीं पे जो है हमारा लीवर में कफर सेल्स नाम की एक सेल होती है जिसको हम पुलिस बोलते हैं, जैसे हर स्टेट में पुलिस। अच्छा। होती है, तो लीवर की एक पुलिस होती है जिसकी काम होता है सर्विलेंस करना, कुछ अनवांटेड चीज आ गया तो उसको सर्विलेंस करके रिमूव कर देना, वहीं डैमेज कर देना।
1: अच्छा।
0: तो इतना बड़ा रोल है लीवर का कि बॉडी के अदर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसलिए लीवर जब डैमेज होता है तो इनिशियल हम बोलते हैं शुगर की बीमारी, पैनक्रियाज की बीमारी है, बट एक्चुअली में वो लीवर की बीमारी है। लीवर डैमेज होता है तो ही शुगर होता है किसी को, तो पहले फैटी लीवर होता है बाद में शुगर होता है,
1: लोग ये समझ नहीं पाते।
0: हाँ, अगर आप फैटी लीवर को ठीक करेंगे तो शुगर अपने आप कंट्रोल हो जाएगी।
1: फैटी लीवर आज इतना कॉमन है डॉक्टर साहब कि हर तीसरा चौथा आदमी जब जांच करवाता है ना तो मालूम पड़ता है कि फैटी लीवर है, और फिर फैटी लीवर का जो स्टेज है ना उस पर सबकी दृष्टि जाती है कि किस लेवल का है, लेवल 1 लेवल 2, ये सारी बातें हो जाती है। हम चर्चा करेंगे इसके बारे में भी, और ये कि लीवर से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, ये हार्मोन्स क्या हैं, और आपने कहा पित्ताशय में, अग्नाशय में इसका क्या रोल है, क्योंकि अब जो है सो गॉल ब्लैडर स्टोन और फिर गॉल ब्लैडर को रिमूव करा देना ऑपरेशन के जरिए बड़ा कॉमन हो गया है। इतना कॉमन हो गया है कि अब लोग पूछते हैं कि अब तो आपको थोड़े थोड़े समय पर खाते रहना पड़ेगा। ये जो गॉल ब्लैडर है और लीवर का संबंध है, फिर गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन

0: है या इन्फेक्शन है या गॉल ब्लैडर को रिमूव करा दिया जाता है, तो ये जो सारी प्रक्रिया उसकी जरूरत क्यों पड़ती है और इसमें लीवर का क्या रोल है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी हम अनदेखी करते हैं और अंततः वहाँ हमें जाना पड़ता है उस जगह पर, ये सवाल बना हुआ है। एक हमारे श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी नमस्कार।
1: नमस्कार श्रीमान, मैं राम कुमार शाह सिमरिया भिंडी पंचायत कल्याणपुर से बोल रहा हूँ।
0: राम कुमार शाह जी, क्या है जिज्ञासा, बताइए।
1: जिज्ञासा बहुत छोटा सा है कि इतना महत्वपूर्ण जो शरीर के लिए लीवर पावर हाउस कहलाता है, सदा के लिए और हमेशा और ज्यादा समय तक लीवर ठीक से काम करता रहे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, खान पान या फिर कोई दूसरा उपाय, ऐसा यही मेरी जिज्ञासा है।
0: सुनिएगा कार्यक्रम में राम कुमार शाह जी।
1: जी सर,
0: जी जी, जी सर, धन्यवाद। राम कुमार शाह जी का कहना है कि इतना महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, ये हमेशा बढ़िया से काम करता रहे, इसके लिए दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, कौन कौन सी चीज़ें परहेज में रखें तो ये लीवर बढ़िया से काम करे। और दूसरी चीज़ ये है, इसी को लेते हुए हम ले जाते हैं आपको मोहन पासवान जी के सवाल पर, कौन कौन सी चीज़ें नुकसान पहुंचा जाती है लीवर को, ये मोहन पासवान जी ने सवाल
2: तीन चीज़ें,
0: दोनों सवाल को हमने जोड़ दिया है।
2: दो तीन चीज़ें ऐसी हैं, एक तो लीवर को ठीक करने का, एक खान पान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी चीज़ खाएं आपका दिनचर्या का 50% खाना जो है कच्चा होना चाहिए।
0: अच्छा,
2: कच्चे में सलाद हो गया, फल हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, तो आप पूरे दिन का जो भी खा रहे हैं 50% खाना आप ऐसे डिवाइड कीजिए कि आप उसको कच्चा खाएं, रॉ फूड, और 50% जो पका के खा रहे हैं उसमें ज़्यादा तेल मसाला इन सब चीज़ों का उपयोग ना हो। ये खान पान का हो गया। और दूसरी चीज़ है खान पान में भी कैसे खाएं, तो कम कम बार बार, कई लोग होते हैं पूरे दिन में एक बार खाते हैं।
0: अच्छा।
2: तो एक बार खाने से क्या होता है कि एकदम अचानक से लीवर पे लोड पड़ता है क्योंकि सारा खाना उसी को प्रोसेस करना है। आप कम कम खाएं, बार बार खाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
0: लीवर को सही रखेंगे, लीवर को थोड़े दुरुस्त रखेंगे तो लीवर भी हमें दुरुस्त रखेगा, ये सीधी सी बात है। और लोग कहते भी हैं कि मजबूत जिगर का आदमी है,
2: जी
0: है ना, इसका मतलब यही है कि हमारा अगर जिगर मजबूत,
2: लीवर एकदम ठीक है, तो आपका पूरा स्वस्थ ठीक है, सारे ऑर्गन्स ठीक है।
0: अब सवाल वही है कि आखिर कौन सा खान पान ऐसा है जिससे लीवर को तकलीफ होती है और हम समझ नहीं पाते हैं।
2: सबसे पहले तो फास्ट फूड, मोमोज, पिज्ज़ा, समोसा, जो भी आपको ऑयली फूड है, ये अनवांटेड मटेरियल से लीवर के लिए, जो भी लीवर को बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: अच्छा।
2: लीवर को सबसे ज़्यादा कच्चा फूड पसंद है। पहले ज़माने में जो हमारे दादा लोग रहते थे वो लोग बॉयल करके खाना खाते थे।
0: हाँ,
2: और
0: हाँ,
2: उनकी उम्र भी बहुत 90s 100 में पहुँचती थी, वो इसलिए क्योंकि लीवर के लिए वो सबसे बेस्ट फूड होता है।
0: और वो लोग अंकुरित भी खाते थे,
2: अंकुरित चना,
0: अंकुरित मूंग
2: फुला करके
0: सबका सेवन करते थे वो लोग, तो ये
2: फ्रूट्स खाते थे। हाँ। वो लोग उस टाइम पे, अब फ्रूट्स का टाइम चला गया, फ्रूट्स लोग ज्यादा नहीं खाते। अब फ्रूट्स को भी खाते हैं तो उसको प्रोसेस करके खाते हैं।
0: हाँ,
2: उसमें चीज और बटर अलग अलग चीज मिला करके
0: जी।
2: और अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ टॉक्सिन से लीवर के लिए।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि हमने स्मोकिंग की चर्चा कर ली कि जो बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करते हैं ये तो खतरनाक है ही, लेकिन जो लोग खैनी खाते हैं ना डॉक्टर साहब,
2: जी टोबैको, हाँ। किसी भी फॉर्म में, चाहे स्मोक कर रहे हैं वो भी टोबैको ही है, चबा रहे हैं वो भी टोबैको है, टोबैको है, तो टोबैको ज़्यादा जो चबाने वाली होती है वो ज़्यादातर माउथ, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर ये करता है। टोबैको है तो स्टमक में जाएगा तो उसका टॉक्सिन्स तो जाएगा ही।
0: डॉक्टर साहब, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो लीवर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कई बार हमें ऐसी दवाएं लेनी पड़ती है विशेषज्ञों की राय से भी, लोग कई बार तो अपने मन से लेते हैं।
2: इसमें मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा जो है एंटीबायोटिक्स, ज्यादातर गाँव में कुछ 2-3 दिन का बुखार होता है, एंटीबायोटिक्स इतने ज़्यादा यूज होते हैं जो लीवर को ही नहीं बल्कि पूरे अंग को डैमेज कर रहा है। लोगों को ये पता नहीं चलता क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट आता है, तो शुरुआत में आती नहीं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। जब आपको सर्दी जुकाम आया, 4-5 दिन का वायरल बुखार होता है जिसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, आपने ले लिया, लेकिन जब सच में रोल पड़ेगा बाद में कभी ऐसी बुखार आई तो वो एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेगी, और ना केवल आप पे नहीं करेगी, आपकी सराउंडिंग में जितनी कम्युनिटी में लोग हैं उनमें भी नहीं करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ आपको ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वही बैक्टीरिया तो उनको भी जाएगा ना।
0: सही।
2: तो वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पूरी कम्युनिटी के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है।
0: बहुत महीन तो, लेकिन बहुत सदी हुई बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब।
2: एक आदमी के एंटीबायोटिक्स लेने से, अनवांटेड एंटीबायोटिक्स जो ले रहे हैं बार बार, वो सिर्फ उनके लिए ही हानिकारक नहीं है, पूरी कम्युनिटी के लिए हानिकारक है।
0: तो एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल है

0: वो बगैर विशेषज्ञ की राय के बिल्कुल
1: बगैर विशेषज्ञ बगैर जांच के अगर जरूरत है तभी एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होता है, वायरल के लिए नहीं होता है। और ज़्यादातर जो बुखार जो शॉर्ट टर्म होता है चार दिन पाँच दिन वो वायरल इन्फेक्शंस होता है, उनमें एंटीबायोटिक्स की कोई रोल नहीं है।
0: और लोग सिर्फ बुखार देख लिया, लक्षण देख लिया और दवा लेनी शुरू,
1: बुखार नहीं अगर कमजोरी भी आती है तो लोग एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन लगवा लेते हैं।
0: ओहो,
1: तो ये लोगों का गलत फहमी है कि एंटीबायोटिक्स लेने से मेरे को मजबूती ताजगी आ जाती है, इन्फेक्शंस वायरल इन्फेक्शंस ठीक हो जाता है, कुछ भी होता है एक एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन लगा लेना तो इस बहुत इफेक्ट करता है लीवर और किडनी दोनों पे।
0: और इसी को थोड़ा सा, इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे डॉक्टर साहब, तो दूसरी दवा है वो है दर्द की दवा।
1: जी, सर में दर्द हुआ, दर्द की दवाई मतलब बुखार आया 9900 पैरासीटामोल, तो ये भी बहुत बड़ा वो है लीवर के लिए। और
0: सर ये पैरासीटामोल को लेकर के भी कुछ लोगों के मन में ये है कि ये बिल्कुल सेफ ड्रग है।
1: सेफ ड्रग है बट किसी लिमिट तक ही, अगर आप हफ्ते में 4 बार ले रहे हैं पैरासीटामोल और लंबे टाइम से ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ती जाती है उसकी। कोई भी दवाई हम लेते हैं तो हमारे शरीर से उसको एलिमिनेट करने के लिए टाइम लगता है।
0: जी, यानी अगर आपको पैरासीटामोल लेना भी है तो सचेत होके लेना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं।
1: बुखार अगर ज़्यादा है, 100 से ऊपर आ रही है बुखार, सर दर्द बहुत तेज है, नहीं ठीक हो रहा है तो आप ले, थोड़ा बहुत बुखार में बिल्कुल ही ना ले
0: और लंबे समय तक नहीं।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: और स्थिति यह है कि किसी के बदन में दर्द हो, सर में दर्द हो, वो केमिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ जाकर के जो है वो दवा ले लेते हैं। कई बार लोग घर में रखते हैं अलग अलग तरह की दर्द की दवाएं और एक काम नहीं करता है तो दूसरा खा के देखते हैं कि नहीं ये काम नहीं किया तो हम दूसरा लेके देखें।
1: सबसे बड़ी बात है कि जो दर्द हो रहा है दर्द का कारण का इलाज करना चाहिए ना कि दर्द का, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिल जाता है उनको लेकिन वो लंबे टाइम तक वही यूज करते आदत हो जाती है उनकी।
0: सही,
1: और वो दर्द के कारण का इलाज नहीं करके सिर्फ दर्द का इलाज कर रहे होते, कारण तो ठीक हुआ नहीं, वो अंदर ही अंदर है चीज़ें।
0: तो दवाओं के प्रयोग में सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है अगर हमारे लीवर को सुरक्षित रखना है तो। एक और श्रोता जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं।
2: प्रणाम सर।
0: जी जी प्रणाम, नाम बताइए अपना।
2: मेरा नाम है रघुनंदन सिंह।
1: जी, पहले इनिशियली में फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर का मतलब लीवर में फैट जमा हो गया, तो हमारा पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन का काम होता है शुगर को, बॉडी शुगर को कंट्रोल करना। इंसुलिन काम करता है कैसे, वो लीवर में जाके काम करता है, लीवर के सेल्स में।
0: जी।
1: क्योंकि हमने बोला जो भी आप खाना खाते हैं वो सारा लीवर के अंदर प्रोसेस होता है, तो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया वो लीवर में गया, उसको शुगर में कन्वर्ट होना है, वहाँ पे शुगर में बन रहा है तो उसको प्रोसेस करने के लिए पैनक्रियाज इंसुलिन निकालती है, वो लीवर के सेल्स के अंदर जाके काम करती है और शुगर को कंट्रोल करती है। लेकिन जब लीवर ऑलरेडी फैट से भरा है, चर्बी जो जमा हो गया, उसकी वजह से इंसुलिन जो शुगर को कंट्रोल करता है वो लीवर के अंदर जा ही नहीं पाती, जिसकी वजह से पैनक्रियाज पे लोड पड़ता है तो और इंसुलिन बनता है, और बन रहा होता है क्योंकि लेकिन लीवर में फैट जमा, चर्बी जमा है, जा ही नहीं पा रही, शुगर बढ़ता जा रहा है तो पैनक्रियाज को कंट्रोल करना है, वो इंसुलिन बना रही है बट एट द एंड पैनक्रियाज फेल हो जाती है, इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है तो शुगर हो जाती है किसी को। तो शुरुआत हुई फैटी लीवर से।
2: लीवर को ठीक करने का उपाय क्या है?
1: जी, उसके लिए आपको एक्सरसाइज नियमित रूप से हर दिन कम से कम आधा घंटा दौड़ना है, एटलीस्ट हफ्ते में 5-6 दिन दौड़िए, और खाने पीने में तला हुआ सामान बंद कर देना है। 50% खाना आपका कच्चा खाना होना चाहिए, कच्चे में जैसे सलाद हो गया, फल हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा उपयोग करेंगे खाने में।
0: हेपेटाइटिस की चर्चा हम थोड़ा कर लें, 5 जो है हेपेटाइटिस ABCDE, इसमें से बी और सी को थोड़ा खराब माना गया है, बी को ज्यादा।
1: बी और सी इसलिए क्योंकि ये है लीवर को सिरोसिस में कन्वर्ट करता है, क्रॉनिक बीमारी है ये, और ए ई डी जो वायरस है ये शॉर्ट टर्म इन्फेक्शंस है, मतलब लीवर इसमें खराब नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म लीवर को सूजन करता है।
0: अच्छा।
1: और ज्यादा हानिकारक नहीं होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस में ये हानिकारक होता है, अदरवाइज ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है। बट बी एंड सी लंबे टाइम से इन्फेक्शन रहता है, 10-20 साल भी रहते हैं लीवर, लोगों को पता नहीं होता और धीरे धीरे लीवर डैमेज हो जाता है।
0: लीवर जब भी खतरे में होता है

0: तो कुछ तो लक्षण आते होंगे।
1: कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो एक्सेप्ट BNC, AED, सब में पेशेंट्स को फीवर आएगा, हाई ग्रेड फीवर, जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है पेशेंट को, पूरा बॉडी पेन हो रहा होता है। अभी जैसे बारिश हो रही है तो अभी बहुत कॉमन हो गया ये हेपेटाइटिस ए, क्योंकि ये खाने पीने से फैलता है।
0: अच्छा।
1: तो बारिश हो रही है तो अभी जो अनहाइजीनिक फूड ये ज़्यादा होगा, तो अभी के टाइम में जिनको भी जॉन्डिस होता है, फीवर होता है, तो हेपेटाइटिस ए एन ई जरूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें।
0: लीवर से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसमें उल्टी हो सकती है?
1: जी बिल्कुल हो सकती है। लीवर में जब सूजन होता है तो उल्टी, पेट में हल्का दर्द, भारीपन, ये सब चीज़ें होना
0: हो सकता है।
1: जी जी।
0: लैक ऑफ एपेटाइट,
1: भूख नहीं लगता है,
0: भूख का मर जाना।
1: जी भूख पैदा ही होती है लीवर से। लीवर अगर अच्छा। ठीक नहीं हो रहा है तो आपका भूख खत्म हो जाएगा।
0: चक्कर, कमजोरी?
1: लीवर की वजह से तो नहीं, बट हाँ लीवर अगर डैमेज हो तो आपका हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, ये सब कम होते हैं, जो जिसकी वजह से चक्कर आ सकता है। बट पर्टिकुलरली लीवर की वजह से नहीं होता, लीवर के कारण बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही होती है जिसकी वजह से होता है।
0: हेलो जी, नमस्कार जी, अपना नाम बता दें।
2: मैं किशन कुमार मंडल मुंबई से बोल रहा हूँ।
0: किशन कुमार मंडल जी मुंबई से, बताइए क्या जिज्ञासा है?
2: शुगर का जो गोली देता है लीवर पर क्या असर पड़ती है उसके ही?
0: अच्छा हाँ, बढ़िया सवाल है इनका, कहना है कि जो भी, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है।
1: नहीं, लीवर पे वो एक्चुअली इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है, बहुत सारी जो दवाइयां हैं शुगर की, वो इंसुलिन जो मैंने बोला कि शुगर को कंट्रोल करता है, वो लीवर पे सेंसिटिविटी बढ़ाती है। सेंसिटिविटी मतलब इंसुलिन अच्छे से काम करे लीवर पे, क्योंकि इंसुलिन को लीवर पे ही काम करना होता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो उसका एक्शंस को बढ़ाती है बहुत सारी दवाइयां जो आई है, उनका जो एक्शंस है यही है कि लीवर पे इंसुलिन का एक्शंस बढ़ जाए, अदरवाइज लीवर पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, खान पान को लेके क्या कहेंगे?
1: जो खाना, जो भी हम डब्बे वगैरह जो चीज़ें मंगाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाली जाती है। प्रिजर्वेटिव्स वो चीज़ होती है जो खाने को लॉन्ग लाइफ देती है, लेकिन वो जो होती है माइक्रो मॉलिक्यूल्स होती है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता, वो हम खाते हैं और हम आंतों के बीच में जाके फंस जाती है, पूरी ज़िंदगी रहेगी। और वो ऑटो इम्यून नाम की जो डिजीज़ होती है, जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं IBD, खून का बवासीर निकल, लैटिन से ब्लड आ रहा है, वो एक IBD नाम की बीमारी होती है जो बहुत कॉमन हो गया है प्रिजर्वेटिव्स की वजह से। आजकल हर तीसरे चौथे पेशेंट्स में IBD कॉमन है।
0: वो कंडीशन बता दीजिए जो बिल्कुल खतरनाक है, जिस समय हमें थोड़ा भी बाएं दाएं को सोचने की जरूरत नहीं है।
1: लीवर जब भी डैमेज हो रहा होता है इनिशियली तो बिल्कुल कोई लक्षण नहीं होता, तो इसलिए हर इंसान को एटलीस्ट 6 महीने पे अपना लीवर टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ताकि इनिशियली स्टेज में, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, बिल्कुल अपने आप को ताज़ा कर लेता है, नया कर लेता है, तो इनिशियल स्टेज में पता चल जाए तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। हाँ, लीवर स्टेजेज अगर बढ़ रहा होता है बीमारी का तो बहुत सारे लक्षण आने लगते हैं, जैसे भूख नहीं लग रहा हो, पीलिया हो रहा हो, बदन में खुजली हो रही हो, और इम्यून सिस्टम वीकनेस, पूरा कमजोरी फील हो रहा हो, आलसपन लग रहा हो, पेशाब पीला हो रहा हो, आंखें पीली हो रही हो, ये सब जो लक्षण है ये लीवर की बीमारी है। और इस और जब बिल्कुल लीवर डैमेज हो जाता है तो पेट में पानी भर जाता है, पैरों में सूजन आने लगती है, खून का उल्टी होता है कई बार, लैटिन, काली लैटिन हो रही होती है, ये सब लीवर डैमेज होने का लक्षण है। और इनमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज, मतलब डेंजर साइन बोलते हैं इनको, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत लीवर के स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए।
0: अच्छा, चलते चलते डॉक्टर साहब, लीवर डाइट क्या है?
1: कच्चा फूड, सलाद, फ्रूट्स, जितने भी आपको कलर्ड फ्रूट्स मिल रहे हैं सब खाइए, लीवर को बहुत पसंद है। कॉफ़ी बहुत अच्छा है, बिना शुगर, बिना दूध का ब्लैक कॉफ़ी।
0: क्या संदेश देंगे हमारे श्रोताओं को हेपेटाइटिस डे इसको लेकर के?
1: लीवर हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसको पावर हाउस इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, बल्कि ये काम भी ऐसा काम करता है कि सारे ऑर्गन्स को बचा के रखता है। तो इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है कि अगर आपका लीवर खराब हुआ तो बाकी ऑर्गन सारे डैमेज होने लगते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये बताते हुए कि आज की हेलो जिंदगी का विषय था हेपेटाइटिस एवं लीवर संबंधी अन्य बीमारियाँ और सावधानियाँ, बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित कुमार सुमन, आपने अपना समय हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक असद दाऊद के साथ मुझे संजय को अनुमति दीजिएगा, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे

हेलो जिंदगी का संपादित अंश 19 जुलाई रविवार को प्रसारित ये हेलो जिंदगी कार्यक्रम का संपादित अंश हम आपको सुनवा रहे थे। ये आकाशवाणी दरभंगा है। कुछ पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उनके आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर बचाव कार्य और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच राज्य में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोफ को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादनोफ से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। घरेलू शेयर बाजार का

0: यदि सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था, ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 77,491 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,179 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज एसएस प्रणय और देविका सिहाग सिंगल्स में अपने अपने मुकाबले हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब जानकारी प्राप्त करें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की। देशभक्ति गीत अब से थोड़ी ही देर में यानी 1:10 से हम आपको सुनवाएंगे। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सैम बहादुर फिल्म का

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब जानकारी प्राप्त करें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की। देशभक्ति गीत अब से थोड़ी ही देर में यानी 1:10 से हम आपको सुनवाएंगे। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सैम बहादुर फिल्म का गीत, जिसे आवाजें दी शंकर महादेवन, विशाल दादलानी और दिव्य कुमार ने। देशभक्ति गीत के बाद 1:15 पर समय होगा फिल्म संगीत का। दो बजे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 2:05 समय होगा इलाकाई खबरों का। रोजगार सूचना हम आपको सुनाएंगे 2:10 पर और 2:15 समय होगा दोपहर समाचार का। दो बजकर 30 से एक बार फिर से हम आपको ले चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र में दोपहर, क्षमा करेंगे 2:15 समय होगा दोपहर समाचार का और 2:30 पर फिर से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 3 बज्जी का लोकगीत प्रस्तुत किया जाएगा। पहली सभा के कार्यक्रमों के बाद अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा आरंभ किया जाएगा संध्या 5 कार्यक्रम युववाणी तरुण कुसुम के साथ। 5:40 पर समय होगा फिल्म संगीत का। 6 हिंदी समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत और मैथिली संवाद का समय होगा 6:25। गांव घर के अंतर्गत नव ऊर्जा जब सुनेंगे अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री 15 कार्यक्रम। चर्चा का विषय रहेगा खेती गृहस्थी, हमारे किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 7 चर्चा होगा अगात फूल गोभी की खेती।

7:30 समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 7:47 पर आप सुनेंगे जिले की हलचल और 7:50 पर विधानमंडल की समीक्षा आप सुन पाएंगे। 8:00 दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा संसद समीक्षा। सिंगरहार का प्रसारण समय होगा 8:15। पर सुनिएगा न्यूज 8:45 पर संध्या समाचार न्यूज 8:09 9:00 और उर्दू खबरें 9:15 पर। विविधा ये कार्यक्रम होगा सर्वभाषा का 9:30 पर हमारे केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और 9:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दरभंगा से ही देववाणी। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे 10:00 से।

ये जानकारियां थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर इंग्लिश समाचार के साथ ही सभा का दूसरी सभा का समापन होगा।

देशभक्ति गीत आकाशवाणी दरभंगा से भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं सरगम फिल्म के इस गाने से, जिसे आवाज दी मोहम्मद रफी ने, गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आनंद बख्शी की आज जयंती है। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी के ही लिखे कुछ सदाबहार गाने। शुरुआत इस गाने से ही।

जिगरी दोस्त। इस फिल्म का ये गीत है, आनंद बख्शी की ही रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और आवाज है मोहम्मद रफी की।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं भारतवासी सब

कोयल बोली दुनिया डोली। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को भी आप सुन रहे थे फिल्म सरगम में। अगला गीत सुनिए फिल्म राजा और रंक से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: देवी माता रानी। अभी ये गीत आप सुन रहे थे स्वर्ग से सुंदर फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म संगीत का
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली में एनडीए संसदीय पार्टी की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि पेपर लीक मामले के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने छात्रों के साथ साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्धता जताई है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी के हंगामे और टोका टोकी के बीच सुचारू रूप से चल रही है। इस समय दोनों सदनों में भोजनावकाश के बाद की कार्यवाही शुरू हुई है। इससे पहले आज विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। राजद के गौतम कृष्णा के एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षक स्थानांतरण नीति लाई है। इसके तहत प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्री तिवारी ने कहा कि TRE-4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द ही अधियाचना भेज दी जाएगी। इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज विधानसभा में 7 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। इन विधेयकों में बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक, बिहार माल सेवा कर संशोधन विधेयक, बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक, बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक, बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक और बिहार कृषि भूमि विधेयक 2026 शामिल हैं। विधान परिषद में भी आज की कार्यवाही में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा रही है। इधर ग्राम पंचायतों में होल्डिंग टैक्स वसूली के मुद्दे पर सरकार ने अपना रुख साफ किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि गरीबों पर टैक्स लगाए जाने की बात पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रही है। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे पर किसी तरह का भ्रम नहीं फैलाने की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज जीविका के अंतर्गत चयनित 2446 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह के दौरान श्री चौधरी ने नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने के संकल्प को लेकर कार्य कर रही है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार उपस्थित थे। राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज संसद की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं। श्री कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद पहली बार संसद की कार्यवाही में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, समस्तीपुर, सीवान और पश्चिम चंपारण जिले में अनेक स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और पटना जिले में कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और लखीसराय समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटों के

0: दौरान बारिश के बीच राज्य के अलग अलग स्थानों पर वज्रपात की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर जिले में 4 जबकि सीवान जिले में 2 लोगों की मौत की खबर है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। समाहरणालय सभागार में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक में जिले में कृषि और इससे जुड़े विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसियार गांव बायोडायवर्सिटी पार्क के पास एक मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 156 किलो गांजा बरामद किया है। बेगूसराय जिले में बरौनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 7 पर खड़ी एक रेलगाड़ी के डिब्बे से रेल पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ

0: आधारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली में एनडीए पार्लिमानी पार्टी की हफ्तवार पॉलिसी मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने मीटिंग में कहा कि पेपर लीक मामले में कसूरवारों को सख्त सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी ने तलबा के साथ साथ नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना अज़्म जाहिर किया है। बिहार कानून साजिया के मानसून सेशन के दूसरे दिन आज दोनों ऐवानों की कार्रवाई हिजबे इख्तलाफ के हंगामे और टोका टोकी के दौरान बेहतर तरीके से जारी है। इस वक्त दोनों ऐवानों में खाने का वक्फा के बाद की कार्रवाई जारी है। इससे कबल आज कानून साज असम्बली में वक्फे सवाल जवाब की कार्रवाई बेहतर तरीके से चली। राजद के गौतम कृष्ण के सवाल एक के जवाब में वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने बताया कि हुकूमत असातज़ा के तबादले के लिए टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई है, इसके तहत अमल शुरू हो गया है। जनाब तिवारी ने कहा कि TRI-4 के तहत बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को जल्द ही नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। इधर हमारे नामा निगार ने बताया है कि आज कानून साज असम्बली में 7 बिल पेश किए जाएंगे। इन बिलों में बिहार जुआ बिल, बिहार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तरमीम बिल, बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन तरमीम बिल, मेडिकल तरमीम बिल, बिहार लैंड म्यूटेशन बिल, बिहार शुगर अंडरटेकिंग एक्विजिशन तरमीम बिल और बिहार ज़राई ज़मीन बिल 2026 शामिल हैं। विधान परिषद में भी आज की कार्रवाई में कई अहम बिलों पर बहस की जा रही है। इधर ग्राम पंचायतों में होल्डिंग टैक्स वसूली के मामले पर हुकूमत ने अपना मौकिफ वाज़े कर दिया है। वज़ीर आला समरार चौधरी ने विधान परिषद में अपोजिशन अराकीन के खदशात को दूर करते हुए कहा कि गरीबों पर टैक्स आयद किए जाने की बात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गुमराहकुन है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत गरीबों पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रही है। उन्होंने अपोजिशन से इस मामले पर किसी का मुगालता या अफवाह न फैलाने की अपील की है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज जीविका के तहत मुंतखब 2446 उम्मीदवारों को तकरीरी नामा दिया। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में मुनक़िद तकरीब के दौरान जनाब चौधरी ने तकरीरी नामा देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत नौजवानों को नौकरी दस्तयाब करने के अज़्म को लेकर काम कर रही है। इस दौरान नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव और देही तरक्यात के वज़ीर श्रवण कुमार भी मौजूद थे। राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट और साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार आज पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। जनाब कुमार राज्यसभा की रुकनियत लेने के बाद पहली बार पार्लियामेंट की कार्रवाई में शामिल हुए हैं। इससे कबल उन्होंने नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन से रस्मी मुलाकात की। रियासत में मानसून की सरगर्मी से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आज बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, समस्तीपुर, सीवान और मगरबी चंपारण जिला में कई मकामात पर बहुत ज्यादा शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और पटना जिला में कई मकामात पर सख्त बारिश का इंतबाह जारी किया है। रियासत के दीगर अजला में भी बारिश की पेशगोई की गई है। इस दौरान कई मकामात पर बिजली गिरने का भी खदशा है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और लखीसराय समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिश के बीच रियासत के अलग अलग मकामात पर आसमानी बिजली गिरने के वाक़े में 6 लोगों की मौत हो गई है। भोजपुर जिला में 4 जबकि सीवान जिला में 2 लोगों की मौत की इत्तला है। अररिया जिला के जिला मजिस्ट्रेट विनोद दुहन ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कर्ज तकसीम में तेजी लाने की हिदायत दी है। कलेक्ट्रेट वाक़ ऑडिटोरियम में जिला ज़राई टास्क फोर्स की मीटिंग में जिला में ज़राअत और इससे मुंसलिक मुख्तलिफ महकमों के मंसूबों के फरोग का जायजा लिया गया। वहीं जिला के टाउन थाना हल्का के तहत कोसियार गाँव बायोडाइवर्सिटी पार्क के पास एक मकान में छापामारी करके पुलिस ने 156 किलो गांजा बरामद किया है। इत्तला के मुताबिक ये मकान नरपतगंज के साबिक रुकन असम्बली जयप्रकाश यादव ने किराए पर दिया था। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।
2: मीडियम वेव 200

31.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे रोजगार सूचना।

लेखा परीक्षक एवं सहायक के कुल 1829 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन शुरू होने की तिथि 14/7/2026 थी। आवेदन की अंतिम तिथि 3/8/2026 होगी। आयु सीमा है न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट होगा upssc.gov.in। JKSSB 2026 के कुल 130 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन शुरू होने की तिथि है 22/6/2026। आवेदन की अंतिम तिथि होगी 21/7/2026, यानी आज ही अंतिम तिथि है। जिन्हें भी आवेदन करना हो आज आवेदन कर लें। आयु सीमा है अधिकतम 40 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट है jkssb.nic.in। रेलवे RRB टेक्निकल एग्जामिनेशन 2026 के लिए 6557 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन शुरू होने की तिथि 30 जून 2026 थी। आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 होगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए 30 वर्ष और टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए 33 वर्ष है। अधिक जानकारी के लिए RRB के वेबसाइट को आप देख सकते हैं। रोजगार सूचना अब समाप्त हुई।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अब हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों

0: की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
3: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है और भारत के युवा समझदार युवा, उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
0: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
4: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने

0: की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
1: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटवन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदों में भूस्खलन और चट्टानें गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहडू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता

0: को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोफ को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोफ से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रुपए से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट UG 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। एक बार फिर से आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चालबाज से। अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति। फिल्म का नाम है हद कर दी आपने। गायन स्वर है सोनू निगम का, गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत रचना आनंद राज आनंद की।

मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति को अभी आप सुन रहे थे फिल्म चालबाज में। इस गीत के गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अब प्रस्तुत है बज्जी का लोकगीत। आज के बज्जी का लोकगीत के कलाकार हैं ब्रजेश कुमार सुमन और कृष्ण कुमार श्याम।

अभी आप सुन रहे थे बज्जी का लोकगीत। बज्जी का लोकगीत के आज के कलाकार थे कृष्ण कुमार श्याम और ब्रजेश कुमार सुमन। बज्जी का लोकगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हो चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

0: तो बहुत अच्छा गीत सुनवाया भी आपने, यादों का मेला तो हमारे साथ लगा ही रहता है
1: जी।
0: और हमारी श्रोता लिख भी रही थी कि वो जब अलमारी खोलती हैं और पुराने कपड़े देखती हैं, बहुत सारी चीजें जो अलमारी में पड़ी हैं वो उनकी यादों में सजीवी, और फिर वो खो जाती हैं यादों में, अलमारी खोलती कई देर हो जाती है, उन्हें लगता है कि अरे मैं तो कहाँ खो गई। तो इस तरह से भी हमारे जीवन में बहुत बार होता है कि पुरानी चीजें हमसे छूटती नहीं है।
1: बिल्कुल। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत मंदाकिनी जी, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी के बारे में। आज सखी विशेष के अंतर्गत हम स्वाति लोढ़ा जी के बेहद जो प्रतिभाशाली बहुमुखी प्रतिमा की धनी और सफल व्यक्तित्व की महिलाएं डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी, पीएचडी शिक्षाविद, लेखिका, सामाजिक उद्यमी और कॉरपोरेट प्रशिक्षक होने के अलावा आप जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की संस्थापक निदेशक और जेएनयू में प्रबंधन संकाय की डीन और मुंबई स्थित AIMSR आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च की निदेशक भी रह चुकी हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की हम बात कर रहे हैं। इस संस्थान को देश के शीर्ष 10 उभरते 20 स्कूलों में स्थान मिला है और इसके बाद वे प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में नेतृत्व विभाग में भी प्रमुख बनी है। और डॉक्टर स्वाति की बात जब चल रही है तो उन्होंने कई शैक्षणिक और सामाजिक पहलों की संस्थापक वो रही हैं। PD प्राइवेट लिमिटेड, इनकी स्थापना उन्होंने स्वाश PD प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना उन्होंने 1997 में की थी और ये संस्था युवाओं को महिलाओं को पेशेवरों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं।
1: इसके अलावा लाइफ लेमोनेट के आप संस्थापक भी हैं और ये उनके प्रशिक्षण एवं कोचिंग की पहल है और वे नेतृत्व, पेरेंटिंग, व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल और पर कार्यशाला एवं सेमिनार आयोजित करती हैं। उनके उल्टा स्कूल, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के सक्रिय, सार्थक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए शुरू की गई उनकी एक सामाजिक पहल है। वर्तमान में भी वे एक डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा ने 10,000 से अधिक कॉरपोरेट अधिकारियों और युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया है, उनके जीवन को प्रभावित किया है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर स्वाति के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जिसमें शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और जीवन के क्षेत्र में सक्रिय योगदान, देश भर में छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों और कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए प्रेरक व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन करना
1: जी, महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच, संवाद कौशल और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देना, लेखन के माध्यम से भी जीवन मूल्यों, प्रेरणा और सफलता के सूत्र साझा करती हैं।
0: बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा की बेस्ट सेलर पुस्तक डोंट रेज योर चिल्ड्रन, रेज योर सेल्फ और साल 2020 में इन्होंने अपनी स्व सहायता पुस्तक कम ऑन गेट सेट गो लिखी और कविता से गद्य में जो है कदम भी रखा और इस पुस्तक का 15 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है और इसे भारत सरकार द्वारा 2002 में राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।
1: इसके साथ ही इन्हें वीर दुर्गादास पुरस्कार 2009 में, सूर्यदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 में, भारत गौरव पुरस्कार 2016 में, JITO बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 में, टाइम्स पावर वुमेन पुरस्कार 2019 में और ग्रोथ बिट्स वुमेन आइकॉन पुरस्कार 2021 में मिला। आपके पति शैलेश लोढ़ा जो एक कवि और अभिनेता लेखक भी हैं और जी, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा का मानना है कि सफलता केवल अच्छी शिक्षा से नहीं बल्कि सही सोच, अनुशासन, निरंतर सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण से मिलती है। वे युवाओं को अपने सपने पर विश्वास रखने, चुनौतियों से सीखने और जीवन में निरंतर आगे

0: तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं उफ घरों में सामानों की उठाई धराई के बारे में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब पहले का समय होता था मंजरी, आज भी लगभग यही होता है, लेकिन कुछ अंदाज

0: तौर तरीके बदल गए हैं। उठा धराई के काम का कहीं अंत तो होता नहीं। सुबह होते ही घर की महिलाएं या घर के लोग जो हैं घर के सामानों की उठा धराई में ही लगे रहते हैं। उनके दो हाथ 10 के बराबर हो जाते हैं। जिधर से निकले वहीं से सामान को झाड़ना पोछना सही से रखना शुरू कर देती हैं, खासतौर से महिलाएं। जो सामान जहां से उठाया वहीं रख दिया। परिवार में सबको समझाते हुए वो थकती नहीं कि वे सभी चीजें सही समय पर रखें, मगर भला किसी के कान में कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी जू तक नहीं रेंगती।
1: और एक समय था जब घर के छोटे बड़े दोनों तरह के घर हुआ करते थे मंदाकिनी जी, लेकिन सलीका बड़ा होता था। घरों में हर चीज अपनी जगह तय होती थी। दादी अम्मा कहती थी कि जो चीज जहां से उठाओ वहीं रख दो। अब यही छोटी छोटी सी आदत घरों को व्यवस्थित भी रखती थी और समय भी बचाती थी। पहले घरों में रसोई में तरह तरह के डिब्बे हुआ करते थे, आपको याद होगा है ना, और उनमें रंग से हम पहचान जाते थे कि अरहर की दाल के जो है वो है डब्बा है वो उसका ढक्कन जो है वो हरे रंग का है। चावल के डिब्बे का नाम बिगड़ चुका है, घिस चुका है, और चीनी के डिब्बे का ढक्कन चूहा उतर गया है, लेकिन डिब्बा नहीं बदला क्योंकि चींटी जाने की जगह नहीं उसमें हो पाई थी, है ना। तो जब माँ या दादी की रसोई कितनी भी उनकी छोटी सी दुनिया जैसी होती थी, आंख बंद करके भी वो बता देती थी कि चाय की पत्ती वाला डिब्बा दाईं तरफ तो दूसरे खाने में रखा है और जीरा उसके ठीक पीछे। सच पूछिए तो मंदाकिनी जी, उस जमाने में डिब्बे भी शायद अपनी जगह छोड़ने से डरा करते थे, है ना। और कोई बहू भला अम्मा की धराई को इधर उधर कर भी देना तो डांट पड़ने के आसार बन जाते थे, बल्कि क्या है कि पढ़ ही जाते थे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे उनका हम सभी कहना भी मानते थे, उनका सम्मान भी करते थे। जैसा कि आज बच्चे भी चिल्लाकर माता पिता को डांट देते हैं, यूं कहें कि टोक देते हैं कि क्या मम्मी आप रोज शोर करती हैं या क्या पापा, है ना। तो पहले अनुशासन होता था और सबसे मजा आता था जब बक्सा जब हम खोलते थे, अम्मा का संदूक खुलता था और कोठरी में अम्मा अपने उस बड़े से बक्से को संवारती थी। बच्चे फुदकते कंधे पर लटक जाते थे या पास में बैठकर उनके सामानों को निहारा करते थे और देखते थे कि दादी अम्मा का क्या खजाना है। ऊपर करीने से तह की भी साड़ियां होती थी, उनके बीच में नीम की सूखी पत्तियां जो आज तो कहीं दिखाई भी नहीं देती हैं, और कहीं कपूर की हल्की सी खुशबू होती थी, और अम्मा की पल्लू में डिबिया बटुआ छुपा लेती जिसमें उन्होंने एक एक पाई जोड़ी होती थी। तो इस तरह का नजारा हमें याद आता है।
1: बिल्कुल। और उस बक्से में ना जाने कितनी सारी चीजें निकलती थी, जैसे चांदी के सिक्के, चांदी की सोने की सुपारी और चांदी की तश्तरी, कोने मुड़े हुए टूटे, और दादा का खत भी उसमें होता था मंदाकिनी जी, और पोटली में पुरानी आरती संग्रह, दुपट्टे में लिपटा श्वेत शाम फोटो का एल्बम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का एल्बम, और उसकी यादों में खो जाती थी और बच्चे पूछने लग जाते थे ये कौन वो कौन। यानी ये भी उठाई धराई का एक हिस्सा होता था, जब संदूक खुलता था तो उसमें यादों में ही आदमी खोया रहता था, व्यक्ति खोया रहता था। और अब अम्मा जो थी अपनी साड़ी के पल्लू में संदूक की चाबी बांध कर रखती थी, कभी कमर में खोज लेती और कभी अगर कोई पूछ भी बैठे कि अम्मा चाबी कहाँ है तो वो मुस्कुराकर यही कहती भाई तुम्हें उससे क्या काम।
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कहा।
1: ये सब बातें भी उस समय बेहद याद आती हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही नजारा होता था जो आप अभी पेश कर रही हैं हमारी सखी और सखियों को। सूती बनारसी रेशमी साड़ी तो कहीं चमकी ले गोटे का गोला, जिसकी जो है जरी पीली पड़ चुकी होती थी, शादी के लहंगे से निकलावा वो भी संजो कर रखा होता था। छोटी पोटली, 2-3-5 के सिक्के, बिछिया की कई जोड़ियां, घिसी हुई टूटी पायल जो शायद किसी को बनवाने को तो नहीं बोल पाई, एक संकोच मन में रहा होगा अम्मा के, और या अब नई मिल गई होगी नई पहन ली होगी कि कभी इसको ठीक करवा के फिर से पहन लूंगी। और कंगन मोतियों की मालाएं जो थी, कजरोटा, शीशा कंघी, दुर्जनिया तंबाकू का डिब्बा और उसमें धरे सूती धागा, और वो सुई बटन हुक न जाने क्या क्या, मतलब कपड़ों को धूप दिखाई जाती थी, छत पर जाकर कपड़े सुखाए जाते थे, बक्सा झाड़ा जाता था, उन्हें फिर से धरा जाता था, और इसी में पूरा समय गुजर जाता था।
1: बिल्कुल, और कितनी सारी यादें पास चली आती थी। और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों को धोना, सुखाना, धूप दिखाना, रजाई गद्दे धूप में डालना, पलटना, फिर वापस धरना, घर भर के कपड़ों की सिलाई ठीक करना, अलमारी बक्से जमाना, यानी गर्मी आने से पहले ही वापस इन ऊनी कपड़ों को समेटना, और पापड़, चिप्स, कचरी, जाने क्या क्या बढ़िया है इन सबको बनाना, और बारिश से पहले पीपे भरकर सब रख लिया जाता था, और दिन महीने साल साल उसकी उठा धराई के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और सब काम एक अभियान जैसे होते थे, और जैसे लगता था घर आंगन में एकदम मेला लग गया है।
0: और किसी के कोई शिकन या शिकायत नहीं होती थी चेहरे पर कि हम थक गए हैं या सारे दिन हम काम ही करते रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं, सब मिलकर घर को संवारते थे, बड़ा प्यारा नजारा होता था। मुझे याद है मेरी मौसी कहा करती थी कि हम गेहूं में तेल लगाकर उसको सुखाया करते थे, फिर उसको डब्बे में भरा करते थे, तो हम पूछते आप थकती नहीं है, कहती काहे की थकान, सब मिलकर काम करते हैं। तो घर के सभी सदस्य जानते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कहाँ रखी है, और

0: सुविधा मिलेगी और इसीलिए काम भी जल्दी होता था और बिना कारण जो भाग दौड़ हुआ करती है आज के जमाने में वो नहीं होती थी। आले ताके जिनमें लालटेन, कुप्पी, मोमबत्ती, माचिस रखी रहती थी और लाइट जाने पर हाथ बढ़ाकर जला लिया जाता था उसे। हाथ के पंखे होते थे और खटिया, पलंग, तकिए सिराने पर भी वो रखे होते
1: आराम
0: थे।
1: हाँ। मिल जाते थे आराम से, है ना?
0: जैसे ही लाइट गई हमारा हाथ जाता था या दादी अम्मा का, नानी का, और उठाकर पंखा जलना शुरू हो जाता था।
1: तो ये भी एक सही एक सामान को रखने का तरीका था कि एक जगह रखते थे और घर का बड़ा हो या छोटा, सामान कम हो या ज्यादा, हर चीज का अपना एक ठिकाना होता था। शाम को पूरा परिवार मिलकर घर समेटता था, चारपाई अपनी जगह अखबार तय करके रख दिया जाता था, सिलाई का डिब्बा बंद होकर अलमारी में चला जाता था। सुबह घर ऐसा लगता था जैसे रात भर किसी ने प्यार से उसकी छोटी सी गूंद दी हो।
0: बिल्कुल सही कह रही हो मंजरी
1: जी।
0: लेकिन अब आते हैं हम आज के दौर पर जहां बिल्कुल सब कुछ अलग हो गया है। कभी चश्मा यहां, मोबाइल वहां, चाबी किसी मेज पर, रिमोट सोफे के नीचे, मतलब आधा समय कहां है सामान, कहां है मेरे मोजे, कहां है मेरा मोबाइल। इसी धुन में जो है पूरे घर में हंगामा बना रहता है आज के समय में। और सामान ढूंढने में लगभग पूरा समय, ऑफिस को लेट हो जाते हैं लोग बाग, लगता है जैसे घर का हर सामान रोज अपनी जगह बदलने की कसम खाकर बैठ गया हो।
1: बिल्कुल। और बच्चों के कमरे तो बिल्कुल अलग ही होते हैं कि उनमें चाहे जैसा भी सामान रखा हो तो बच्चे चाहते भी नहीं कि आप उनको समेटिए, वो कहते हैं कि भाई आप रहने दो माँ। और अब तो माओ का भी धैर्य छूट गया है कि भाई उन्हें लगता है कि क्या करना है इनका, समेट के तो फिर फैलाएंगे, क्योंकि वो भी जॉब कर रही, थकी आई है तो खाने में भी समय देना है उन्हें। तो जो उनके लिए अब क्या हो गया, छुट्टी वाला ही दिन उठाई धराई का हो गया है।
0: बिल्कुल। नौकरी पेशा जो महिला है ना, उन्हें संडे बहुत प्यारा होता है, पता है मंजरी? जब उन्हें कोई रविवार को बाहर बुलाता है तो वो जाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि पूरा दिन वो संडे का इसी काम में बिताती है। तो आज सुविधाएं बढ़ गई है, सामान भी इतना बढ़ गया है घर में, दुनिया भर की अलमारियां, दुनिया भर की हमने सामान उठा के घर में भर लिए हैं, और कहीं भी हम इधर उधर रख देते हैं तो फिर ये आवाजें लगाने का सिलसिला है कभी खत्म नहीं होता, भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है।
1: यानी कहने का मतलब ये कि जो उठाई धराई का जो काम था वो उस समय महिलाएं पूरे दिन भर इसी में लगी रहती थी और कोई शिकवा शिकायत नहीं, चेहरे पर शिकन तक नहीं होती थी। तो आज के समय में है कि भाई अगर कोई आपका कर रहा है काम तो आप मिलकर हाथ बटाइए और उठाई धराई थोड़ी कम हो गई लेकिन आप अपना सहयोग दीजिए।
0: हाँ, तो मंजरी इसका अंत में जो इन सभी बातों का जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि घर की शांति जो है केवल सुंदर सजावट से नहीं आती बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है। जब हर वस्तु अपने स्थान पर हो तो मन भी शांत रहता है और समय भी बचता है और घर स्वर्ग जैसा लगता है।
1: बिल्कुल। और हम लोग सुनते हैं गीत।
0: बिल्कुल।

0: हाँ दुबंज जी, अभी हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिखे हैं कि भाई हल्की फुल्की बातें, घर में सामान की जूठा पटक है, बहुत ज्यादा रोचक है ये विषय। जब हम घर में किसी सामान को एक नई जगह से सेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा मजा भी आता है, या कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं, इस सामान को इस जगह पर रखना है, इस जगह पर नहीं रखना। इसमें परिवार वालों के अलग अलग मत हो जाते हैं, सबकी अलग अलग मर्जी होती है, किसी को वो सामान यहां जचता है, किसी को वहां जचता है, मुझे यहां मजा आ रहा है, और ये बहुत छोटा छोटा झगड़ा होने लगता है, लेकिन मजेदार होता है। और लास्ट में सामान जहां पर भी रखा जाता है वो देखना पड़ता है कि अक्सर गृहिणियों की पसंद ही होती है कि लास्ट में घर की जो महिला है, हाँ, मुख्य महिला, वो क्या चाहती है, वहीं पर सामान रखा जाता है।
1: और एक साथी लिखते हैं, जहां घर जहां लोग रहते हैं वहां रखी चीजों की जगह बदलती रहती है, कभी सफाई के लिए, कभी सजावट के लिए, और कभी बदलाव के लिए। इससे घर की सफाई होती है, बेकार वस्तुओं की पहचान होती है, और घर अधिक व्यवस्थित बना रहता है। साथ ही इस बहाने से कई पुरानी खोई चीजें मिल जाती है जो भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा कर देती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखती है कि घर के सामान की उठापटक कई बार लगता है, अच्छा ये चीज यहाँ नहीं वहां रखकर देखते हैं, अच्छा ये सामान यहाँ नहीं वहां रखकर देखते हैं, और ऐसा करते करते फिर चीज की सही जगह कौन सी है ये भी भूल जाते हैं।
1: और एक लिखते हैं कि उफ, घर में सामानों की उठापटक और घर में गूंजती आवाजें, जरा ये अलमारी इधर सरका दो, वो डिब्बा ऊपर रख दो, अरे ये सामान यहाँ किसने रखा, बस यहीं से शुरू हो जाती घर में सामानों की उठापटक। इसी बीच अचानक कोई पुरानी तस्वीर, खोया जरूरी सामान, या किसी अपने का लिखा हुआ पत्र मिल जाए तो चेहरे की थकान पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इस उठापटक में कभी चाबी नहीं मिलती, चश्मा गायब हो जाता है, या फिर अन्य कोई जरूरत की चीज, फिर जवाब मिलता है अभी तो यही रखा था। ऐसे में झुंझलाहट और गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन उठापटक करते समय धैर्य भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और खत है हमारे संदेश के रूप में कि सामान की उठापटक का मौसम आने ही वाला है, ये कहीं आ ही गया है, यानी त्योहार का मौसम, अगस्त माह से तैयारियां आरंभ हो जाएंगी, और इसमें शामिल रहेगा घर की सफाई, रंग रोगन, पर्दे बदलना, इन सबको करते करते कुछ तो सामान की उठापटक होगी ही, कुछ शरीर की भी, कभी गिरते हैं, कभी सामान उठाते हुए लड़खड़ा जाते हैं, कभी बड़ों की आवाज आती है, संभाल कर रखना भाई, गिरना नहीं, गिराना नहीं, कहीं आवाज आती है अभी मजा, अभी यहां से हटा दो, बस यही करते करते कुछ टूट जाता है, कुछ बिखर भी जाता है।
1: यानी बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं, और इसी की तरह देखिए मुहावरों की दुनिया में भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, जो हमने आज दिया था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे पर, तो इस पर लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया भी अजब गजब की है, जहां हमें गागर में सागर जैसा अनुभव होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यहां नोचने का अर्थ झटकने से खींचना, उखाड़ना या खरोचना होता है। जो व्यक्ति अपनी गलती के कारण शर्मिंदगी व्यक्त करने की बजाय क्रोधित होकर दूसरों पर गुस्सा निकालता है, उसी पर यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है, मेरी बिल्ली और मुझे से म्याऊं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मुहावरों की दुनिया बड़ी निराली है। अभी हाल ही में मैं एक कहानी संग्रह की समीक्षा

0: देख रही थी। क्या बात है। और उसमें कहानी की नायिका बहुत खूबसूरत है और कुछ ऑफिस के कर्मचारी उसके बारे में तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं। मैं उस एक जगह पर अटक गई और फिर वहीं बड़ी देर तक कुछ नहीं सूझा, तो मैंने इसी मुहावरे का प्रयोग किया और इस मुहावरे के प्रयोग से मेरी समीक्षा को तर्क मिल गया, क्योंकि साथी कर्मचारी जब हर तरह से असफल हो गए तो नायिका के बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाने लग गए।
1: तो चलिए एक पहले गीत सुन लेते हैं, फिर हम आगे और संदेश पढ़ते हैं।
0: चलिए

0: होना और झुंझलाट को किसी निर्दोष पर या व्यर्थ की चीजों पर निकालना। मुहावरे की उत्पत्ति और भाव, जब तक कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन चूहा भाग जाता है, बिल्ली पकड़ी नहीं पाती उसे, पकड़ नहीं पाती है, शर्मिंदा होकर पास खड़े खंभे पर अपने नाखून गड़ाने लगती है। इसी स्थिति को इंसानों की इस मनोदशा से जोड़ा गया है, जहां व्यक्ति अपनी गलती या कमजोरी स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ देता है और बेमतलब का गुस्सा दिखाता है। वाक्य प्रयोग से बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ कुछ उन्होंने उदाहरण भी दे दिए हैं, जैसे हम अपने परीक्षा पेपर में देते हैं। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण लिखकर हमें भेजे हैं।
1: और इसके साथ ही एक लिखते हैं कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे, अपनी ही गलती होने पर खुद पर शर्मिंदा होना और गुस्सा करके किसी पर भड़ास निकालना या किसी चीज को नोच डालना, इन्होंने लिखा है। और इसी के साथ ही एक साथ लिखते हैं कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है, अन्य विकल्प असंगत है, अतः सही विकल्प किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है। एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है कि तुम खुद परीक्षा में पास नहीं हो सके और मास्टर जी पर दोष लगा रहे हो। ये तो वही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे।
0: वही एक श्रोता ने लिख रहा है कि एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, अपनी सफलता या शर्मिंदगी के कारण गुस्सा होना और उस झुंझलाहट में दूसरों पर गुस्सा निकालना, यानी बेमतलब की उल्टी सीधी हरकतें करना। जब कोई व्यक्ति किसी काम में नाकामयाब हो जाता है या उसे अपनी ही गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन वो उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो अपना गुस्सा या खींच किसी और चीज पर निकालता है। घर में भी अगर बड़ों का मन किसी बात पर खराब है तो अपनी खींच बच्चों पर हम निकालते हैं और अपने से छोटे पर भी हम निकालते हैं। इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे।
1: और एक साथी लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जब कोई गलती पर शर्मिंदा ना होना गुस्सा किसी पर उतारते हुए क्रोधित हो जाए, ऐसी ही कहावत गुज जाती कि लाजवाने बदले गाजवू, शर्मिंदा ना होकर गुस्सा करना, इन्होंने लिखा है।
0: जी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में और अन्य संस्थानों में देखा जाता है कि वहाँ उच्च अधिकारी अपनी खुद की असफलता के कारण उसे छुपाने के लिए कार्यस्थल पर कर्मचारियों पर क्रोधित हो जाते हैं और वो फिर अपने घर पर बेचारी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं। इस मुहावरे का चरितार्थ करते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, जो कि बहुत ही गलत बात है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि घर परिवार रिश्तेदार में खिसियानी बिल्ली वाले बात हमेशा ही होती है। रिश्तेदारी में ही दो बहनों में कुछ मनमुटाव हो गया, जबकि उसमें से एक बहन बैठने पर कुछ कुछ बात बोल रही थी। दूसरी बहन को लगा कि ये उन लोगों की बात हो रही, उस समय तो कुछ नहीं बोली, बाद में वो हम ही लोग से उलझ गई और हमें समझ में नहीं आया कि इसके पीछे इतनी ये आग बबूला क्यों हो रही है। सबके सामने खूब चिकी चिल्लाई, बाद में जब उसे पता चला तो हम सब में से ये कहकर खूब हंसे कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे।
0: और एक आखिरी और है संदेश, वो लिखते हैं कि पुराने समय में घी दूध मक्खन को छत पर रस्सी का छीका बांधकर सुरक्षित रखा जाता था ताकि बिल्ली उछलकर भी वहां तक नहीं पहुंचे। जब बिल्ली वाकई में चढ़ने के लिए खंभे नोचती है तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंचती तो फिर वो खंभा नोचने लग जाती है।
1: तो चलिए इसी के साथ सुन लेते हैं।

0: तो मंदाकिनी जी, देखिए बातें करते करते प्रोग्राम एकदम समापन की ओर आ गया है, तो चलते हैं, लेते हैं सबसे विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज है जाने माने गीतकार आनंद बख्शी का जन्मदिन। वो गीतकार जिसकी गीत यात्रा 1958 से शुरू हुई तो पूरे 44 साल चली, यानी तकरीबन 5 दशक का सफर। इस सफर में आनंद बख्शी के गानों ने कभी हमें रुलाया,
1: जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई,
0: कभी थपकी दी और बहलाया।

0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और कुछ सुने किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मुझे खुशी है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर आया हूँ। 1950 में बख्शी साहब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली में गए थे
0: जी,
1: उन्होंने वॉइस टेस्ट दिया था
0: उद्घोषक बनने का।
1: हाँ जी, और वो फेल हो गए थे।
0: बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी और खुद से एक वादा किया था जो सारा मामला है। पर सोचिए कि ये कनेक्शन बख्शी साहब का रेडियो के साथ है। एक और कनेक्शन है, जब उनका पहला गाना उन्होंने रेडियो पर सुना था, यहीं से बातें शुरू कर।
1: चुन्नू पतंग को कहता है काई,
2: चुन्नू पतंग को कहता है काई, बोलो बेटा टिंगू ये रंग है या राइट, राइट राइट राइट,
0: बोलो जी ये रॉन्ग है या राइट।
1: पहली बार उन्होंने अपना गाना सुना था
0: जी,
1: एक गली में दिल्ली में घूमते घूमते, अरे ये तो मेरा गाना बज रहा है। तो उनका जो बचपन का सपना था कि एक दिन मेरे गाने बजेंगे रेडियो पर
0: जी,
1: वो उस दिन पूरा हुआ।
0: क्या बात है। तो ये बख्शी साहब का जो रेडियो कनेक्शन है, उसके अलावा एक और कनेक्शन है, आप जानते हैं क्या? वो ये है कि दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन जो फिल्मी गाने बजाता है, कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता जब बख्शी साहब के गाने नहीं बजते हो।
1: यस, और एक और कनेक्शन है।
0: अच्छा,
1: कि उनकी जो जीवनी है
0: जी,
1: उसको ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में आरजे यूनुस खान ने किया।
0: जी, वो भी ये मेरा सौभाग्य है,
1: तीसरा कनेक्शन बन गया।
0: जी जी बिल्कुल। तो शुरू से शुरू करते हैं, बख्शी साहब कहाँ पैदा हुए थे और वो जो खानदान था वो किस हैसियत का खानदान था, वहाँ लोग क्या क्या काम किया करते थे?
1: तो बख्शी साहब पैदा हुए थे भारत में, फिर उसका विभाजन हुआ। भारत में रावलपिंडी में पैदा हुए थे, 17 साल उन्होंने रावलपिंडी में गुजारे, और फिर विभाजन हुआ तो फिर वो पाकिस्तान बन गया
0: जी।

0: तो 1947 में वो इंडिया आए,
1: सरहद के इस
0: यू
1: पार आ
0: नो.
1: गए।
0: हाँ, जो उनके 17 साल थे वो, उन्होंने एक गाना है उनका, मेरे देश में पवन चले पुरवाई,
1: जी
0: मेरे देश में.
1: बिल्कुल,
0: तो वो कहते हैं कि अगर मैंने गांव की जिंदगी नहीं जी होती तो ऐसा मैं गाना लिख ही नहीं पाता.
1: क्या प्यारी
0: अगर
1: बात है।
0: मैंने वो गाना लिखा है इसलिए क्योंकि मैंने वो पानी पिया है, खेतों में नहा हूं, खेतों से अनाज उठाया है.
1: इसीलिए जिगरी दोस्त का वो गाना जो है वो इतना सुंदर बन पड़ा है, उसमें
0: हाँ
1: उन्होंने पूरा वर्णन किया है।
0: हाँ पवन चले पुरवाई,
1: हाँ
0: क्योंकि जी सिंह के हमारे खुले गांव में
1: हाँ
0: सबसे ज्यादा मजा जो है वो एक आकाश का होता है, खुला आकाश, और दूसरा पवन.
1: बिल्कुल,
0: पवन का जो मजा है और जो बरसात का मजा है, पवन और खुले आसमान के नीचे, उसकी वो बातें बहुत करते थे.

0: उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। उन्होंने वो जब रावलपिंडी से दिल्ली आए थे तो एक छोटी दवाई की शीशी में, खाली शीशी में वो मिट्टी भी लाए थे रावलपिंडी की, और जिंदगी भर उन्होंने वो मिट्टी रखी थी अपने कबर्ड में उस बॉटल के अंदर।
1: मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि जो मिट्टी से प्यार, जो गांव से प्यार है, उसकी एक मिसाल है मेरे देश में। पवन चले पुरवाई में बख्शी साहब लिखते हैं, अमवा की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियां हो पतझड़ मस्त बहारें जैसे, पत्थर भी हैं तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के, मेरे खेत की मिट्टी ने सोने की मूरत पाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ये गांव की मिट्टी से उनका प्यार था।
0: अमवा की डाली पे

0: ये गांव वाले लिख सकते हैं। और एक रावलपिंडी की मिट्टी, पिंडी की मिट्टी,
1: उसका पिंडी कहते थे जी, रावलपिंडी नहीं कहते थे।
0: उन्होंने एक कविता लिखी है, उसका जिक्र कीजिए।
1: उन्होंने वो कविता लिखी थी क्योंकि उनको क्या होता है, वो भले वो विभाजन हो गया और एक दूसरा देश बन गया
0: जी,
1: लेकिन जन्म तो वही हुआ था ना,
0: बिल्कुल,
1: तो उनके लिए वो जन्मभूमि है। जब इंसान अपनी माँ से बिछड़ जाए 5 साल की उम्र में, तो वो भी तो मिट्टी है, वो भी तो एक भूमि क्या होती है, वो भी तो पैदा करती है ना, भूमि गर्भ होती है, गर्भ में से ही सब निकलता है ना, अनाज निकलता है, पानी आता है। तो वैसे ही जब माँ भी गुजर गई 5 साल की उम्र में, और मिट्टी भी रह गई पीछे 17 साल की उम्र में, तो एक जो दर्द महसूस होता है कि वो जो एक मातृभूमि है वो चली गई, दोनों माँ चली गई, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसकी कोख से जन्म लिया। तो इसलिए वो ऐसी उन्होंने ये कविता लिखी थी, कविता का नाम है
0: पिंडी की मिट्टी। तो मेरा सौभाग्य है कि वो कविता मैंने पढ़ी है, एक हाँ, किताब है बख्शी साहब की कविताओं की जिसमें वो संग्रहित हाँ,
1: मैं जादू हूं चल जाऊंगा
0: जी,
1: उसमें लिखी है, मेंशन की हुई है। हाँ।
0: बख्शी साहब के बचपन की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ बांटी है, जैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे, वो सिनेमा, साइकिल, गाना, ये सारी चीजें।
1: क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे।
0: अरे ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई,
1: सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ एंटायर पंजाब, ऑल द जेल्स,
0: पंजाब प्रांत,
1: पूरा प्रांत, अनडिवाइडेड पंजाब का जो जो जेल्स थे वो जेलर थे, उसकी वजह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेरी बिग, वेरी पावरफुल मैन। उनका उनका जो घर है अभी कुछ 3-4 साल पहले ही वो डिमोलिश हुआ है, 3 मंजिल का घर था वो। और ही वॉज द ओनली चाइल्ड फैमिली जिनके पास साइकिल थी, तो वो

0: साइकिल भी इतनी खास चीज थी तब कि जब वो कहीं भी जाते थे साइकिल छोड़ आते थे, कोई ना कोई घर में साइकिल छोड़ जाता था वापस।
1: सब पहचानते थे
0: कि दरोगा जी के पोते की साइकिल है ये।
1: क्या कहलाती है? मोहियाल।
0: मोहियाल, मोहियाल। हाँ, पंजाबियों में एक कम्युनिटी होती है मोहियाल्स
1: जी।
0: तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अभी मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, मोर देन 50% रिलेटिव्स हमारे आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में है, बिकॉज वी आर अ मार्शल क्लैन।
1: जी जी।
0: हाँ, वी वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय ऑफ सोसाइटी। और उनको शौक था फिल्मों का, और फिल्म देखने के लिए पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे फिल्म का काम करना या फिल्म देखना कंजरों का काम होता था,
1: खराब माना जाता।
0: हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहां पे पास में, तो वहां पे वो टेम्पररी नौकरी ले लेते थे कभी हफ्ते में 2-3 दिन। क्यों? पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में।
1: अरे गजब।
0: हाँ, क्योंकि अगर आप सिनेमा में काम करोगे, लोगों को सीट बताओगे सीट कहां बैठना है, या डोरमैन का काम करोगे स्कूल के बाद, तो फिल्म पूरी देखने को मिलती है फ्री में। तो फिर दादाजी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फिल्म देखने को मिलने में नहीं वाले। तो ये उनका टाइम पास होता था कि चलो मैं इसी बहाने फिल्में देखूंगा।
1: वाह।
0: तो जिस दिन पिताजी को पता चला कि इसने ऐसी नौकरी पकड़ी हुई है टाइम पास,
1: और जबकि वो बच्चे थे उस वक्त,
0: बच्चे थे और स्कूल की पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे थे, और जाके इधर नौकरी कर रहे थे सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्म देखने के लिए, तो जो उनके दादाजी की जो छड़ी थी, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी कि तुमने ये ऐसा क्यों किया जब हमारे को पैसों की जरूरत ही नहीं है, और तुम भी ये काम कर रहे हो, गलत काम है ये फिल्में देखना, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है। इतना शौक था उनको।
1: जी जी।
0: और वो करीब कुछ 12-13 साल की उम्र से ही नज़में लिख भी रहे थे, उसकी धुन भी बनाते थे, उसको गाते भी थे, और उसपे एक्टिंग भी करते थे।
1: वाह वाह।
0: क्योंकि जब मोहल्ले में रामलीला होती थी
1: जी,
0: तो उनको भी पकड़ा जाता था। अच्छा। डायलॉग मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए रामायण का। तो जितने भी हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते थे हिंदू के, तो उसमें सारे में बख्शी साहब टीनेजर को बुलाया जाता था। अरे वो बख्शी को बुलाओ, अरे वो दरोगा जी के पोते को बुलाओ, वो अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है। तो सब कर लेते थे, लिख भी लेते थे, उसको धुन भी बना देते थे, गा भी लेते थे, उसकी एक्टिंग भी कर लेते थे।
1: और उनका ख्वाब बंबई जाने का था।
0: हाँ, फिल्में देखते हैं तो पता चलता है ये कहां बनी है, बंबई से बंबई में बनती है। अच्छा, बंबई किधर है?
1: समुंदर के पार है।
0: समुंदर के पार है। तो उनको ये था कि मैं बंबई जाऊं, लेकिन उनको पता नहीं था बंबई क्या है, ये कि बंबई में फिल्में बनती हैं।
1: हाँ।
0: तो अगर गाना गाना है या गाना लिखना है या एक्टिंग करनी है या धुन बनानी है तो बंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो गांव में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं।
1: एक छोटे से बच्चे को ये समझ में आ गया कि उसकी मंजिल बंबई है।
0: हाँ। तो जब वो 14 साल के थे, उनको नेवी में भर्ती किया गया, क्योंकि हमारी सारी एंसेस्ट्री नेवी में थी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस, बिकॉज देवर अ मार्शल क्लैन।
1: तो 14 साल की उम्र तो बहुत कम होती है, तो कैडेट बन गए वो।
0: कैडेट, यू वर द नेवल कैडेट। और उनकी भर्ती हुई दो शिप थी, INS हिंदुस्तान और INS दिलावर। इन दो शिप में पढ़ाई जाती थी नेवल की जो पढ़ाई है।
1: और ये तो अंग्रेजों का जमाना था।
0: हाँ, 1942। तो जो पहला साल उनका नेवी में था कराची पोर्ट में, तो वहां म्यूटिनी शुरू हो गई। तो जो म्यूटिनी हुई वो बंबई में हुई, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, मद्रास पोर्ट और कराची पोर्ट।
1: ये जो बगावत थी नेवी
0: बगावत
1: की, ये बहुत मशहूर है,
0: बहुत मशहूर,
1: इसका
0: बहुत।
1: इतिहास में दर्ज है।
0: पहली बगावत, सेकंड बगावत थी जब ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि हम इस देश पर राज नहीं कर सकेंगे
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, आम आदमी प्रोटेस्ट करे तो वो तो करेगा प्रोटेस्ट, लेकिन अगर आपकी नेवल फोर्स आपके अगेंस्ट चले जाए, आपकी आर्मी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपकी पुलिस आपके, कू बन जाता है। लेकिन भी कू,
1: बिल्कुल,
0: तो दैट इज व्हेन दे रियलाइज यार ये तो इन पे राज करना मुश्किल होगा
1: जी।
0: तो उन्होंने उसमें भाग लिया था। और उनका जो ये जो उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी ना, नेवी इसलिए नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि वो पेट्रियोटिक थे। उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी कि कराची में बोट में पढ़ाई होती है, शिप में पढ़ाई होती है, और वो शिप में घुमाते हैं, तो जब मेरी शिप बंबई जाएगी मैं शिप से जंप मार के भाग जाऊंगा, नेवी छोड़ के भाग जाऊंगा और जाके फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा।
1: अरे,
0: तो उनका जो गोल था वो देश के लिए नहीं था नेवी ज्वाइन करना, वो जो देश के लिए गोल था वो जब म्यूटिनी हुई तब पैदा हुआ। वहां उनको एहसास हुआ, क्योंकि जब वो पकड़े गए सब और जेल हुई, तो तब उनको उनमें ये एक एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। तब तक उनको वो गुलामी का एहसास नहीं था,
1: क्योंकि उम्र भी बहुत कम थी,
0: बहुत कम थी
1: जी।
0: और क्या होता है कि दादाजी भी पुलिस में है, सच ए पावरफुल पोस्ट, तो आपको कोई गुलाम की तरह रखेगा नहीं ना, तो आपको गुलामी का एहसास नहीं होता। तो जब भी इनको कराची में अरेस्ट किया गया, जब म्यूटिनी को स्मैश किया गया, डिमोलिश किया गया बाय द ब्रिटिश, उनके जो ऑफिसर थे वो अंग्रेज था, तो उन्होंने पकड़ा इनको, सबको पकड़ा, जेल में गए। तो जेल में जब गए और बख्शी साहब को देखा, तो उसने बोला ये बच्चा कौन है, ये तो अंडर एज है। तो बख्शी साहब को उन्होंने बोला कि तुम तो बच्चे हो, यू आर नॉट 18 एज येट, तो अगर तुम्हें जेल होती है, अगर मैं तुम्हें जेल में भेजता

0: हाँ तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जेल की लाइफ बहुत अलग लाइफ होती है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो मैंने चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं।
1: जी
0: लेकिन क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूं ब्रिटिश नेवी का, तो
1: बिल्कुल
0: मैं तुम्हें रेस्टिकेट करूंगा नेवी से। तो उनको रेस्टिकेट किया गया, यू हैव टू लीव। फिर लीव करके फिर उनके बाद वो गए, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ इंडिया आए, दिल्ली आए, तो वहां उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन की, सिग्नल्स।
1: इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो रॉयल इंडियन नेवी के जो फौजी अफसर थे उनके प्रति बहुत सम्मान था बख्शी साहब के जहन में, क्योंकि अगर वो जेल भेज देते तो पूरी जिंदगी बदल जाती।
0: हाँ तो वो कहते हैं ना कि एक तो माँ होती है जो जन्म देती है, और एक
1: जी
0: जो माँ होती है जो एक आगे जिंदगी बढ़ाती है।
1: जी
0: तो ही ऑलवेज थॉट कि इट इज अ वेरी मदर लाइक एक्ट,
1: जी
0: एक माँ की तरह एक उन्होंने उस बच्चे को एक सेकंड लाइफ दी कि तू जा, देखो
1: जी
0: मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जेल में।
1: और छोड़ दिया, सबसे
0: छोड़ दिया,
1: इंपॉर्टेंट
0: हाँ,
1: बात।
0: यू आर रेस्टिकेटेड विद डिसऑनर।
1: अब जब
0: फॉर
1: घर आए तो क्या हाल हुआ?
0: घर आए तो फिर नेचुरली तो फिर तो इमिजिएटली अपना एक साल में पार्टीशन हो गया ना देश का, अपना भारत का। तो फिर उससे पहले उनको उधर भेजा गया गुरुकुल, जम्मू के
1: जी
0: पास में गुरुकुल था, तो वहां गुरुकुल में भेजा गया पढ़ाई के लिए। क्योंकि यहाँ रावलपिंडी में वो सिनेमा हॉल में ये चले जाते थे छोटा मोटा काम करने के लिए, पैसे नहीं मिलते थे लेकिन फिल्म देखने को मिलती थी। तो ये सब पकड़ी गई, सब उनकी सब चोरी पकड़ी गई था ये तो। और दूसरी एक बात थी कि एक बार उनके स्कूल में दो दोस्त बने थे उनके, तीन, ये तीन दोस्त थे स्कूल में, और तीनों का अब ये सपना था कि हम बंबई जाएंगे कुछ काम करेंगे। बख्शी साहब का था कि मैं फिल्म ज्वाइन करूंगा,
1: और बाकी
0: बाकी
1: दो
0: दूसरों का
1: बंदे
0: कुछ था, उनका कोई सपना था। तो इन्होंने तीनों ने स्कूल की सारी किताबें बेच दी,
1: अरे बाप रे
0: बैग वैग सब बेच दिया, पानी की बॉटल सब बेच, सब कुछ जो भी स्कूल का सामान था सारा बेच दिया। और उस जैसे पैसे मिले वो जाके सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए कि सुबह हम मिलेंगे इतने बजे और हम ये ट्रेन पकड़ेंगे, ये ट्रेन यहां जाएगी, यहां से वहां जाएगी, वहां से वहां जाएगी, वहां से बंबई पहुंच जाएगी,
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: हम घर में नहीं बताएंगे। अभी वो चले गए, पहुंच गए, अपना सामान वामान बेच के, सब पैसे वैसे जेब में जो भी 5, 10, 6 रुपया, 1 रुपया जो भी मिला होगा उसका जेब में डाल के, अपने दो तीन एक जोड़ी कपड़ा वपड़ा कपड़े की थैली में लटका के, पानी वानी, पहुंच गए स्टेशन। 5, 6, 8, 12 घंटे निकल के वो आए नहीं दोनों दोस्त,
1: अरे अरे अरे,
0: घर चले गए वापस। घर चले गए वापस तो फिर मालूम पड़ा कि तो सारी किताबें बेच दी इसने, कल स्कूल है,
1: फिर
0: स्कूल
1: पिटाई
0: जाने के लिए
1: हुई।
0: सब जबरदस्त पिटाई हुई।
1: अरे
0: तो
1: अरे,
0: उसका इलाज उन्होंने क्या ढूंढा कि यहां से निकालो, ये यहां खराब हो गया गांव में,
1: यहां गलत संगत
0: गलत
1: होगी।
0: संगत होगी इसकी,
1: हाँ
0: इसके बेकार बेकार से सपने हैं इसके बंबई जाने के, फिल्म लाइन ज्वाइन करने के। तो इसको गुरुकुल भेजो, गुरुकुल में खूब पिटाई होगी, इसकी पढ़ाई भी होगी और साथ में
1: स्ट्रिक्ट लोग हैं वहां
0: डिसिप्लिन,
1: पर।
0: स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता ना, बिकॉज एवरीथिंग इज धार्मिक। तो वहां ये सुधर जाएगा। तो भेजा।

0: गुरुकुल ज्वाइन किया तो गुरुकुल में एक ऑफिसर आया था, ही वाज अ ब्रिटिश बॉक्सर, ब्रिटिश था वो, अंग्रेज था और वो बॉक्सर था और टीचर था, बॉक्सिंग सिखाता था वो।
1: अच्छा, मतलब गुरुकुल में इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता था, मतलब कि बच्चे हट्टे कट्टे बने, तंदुरुस्त बने, वो
0: ब्रिटिश राज था ना, करें ब्रिटिश को था कि हम हर जगह हमारा पैर दबा के रखें। तो जो दो गुरुकुल में पढ़ाई इंग्लिश नहीं होती थी, लेकिन उनको अपना दबदबा सब जगह रखना था, तो उन्हें वहां भी अंग्रेज को भेजते थे वो, कि ताकि वो नजर रखे सब बच्चों पे और स्टूडेंट्स पे कि हो क्या रखे, हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट तो नहीं हो रहा गुरुकुल में। बॉक्सर था तो वो बॉक्सिंग सिखाता था सबको, पीटी वीटी कराता था। तो बॉक्सिंग सिखाने के लिए कोई सीखने को रेडी नहीं था, तो किसी को शौक नहीं था, क्योंकि हमारी जो एंसेस्ट्रल है अपना, हमारी जो कल्चर है उसमें वो है ना कुश्ती,
1: बिल्कुल
0: बॉक्सिंग तो है ही नहीं हमारे इसमें, तो उसको अभी कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर बॉक्सिंग सीखोगे तो बड़ा ग्लास दूध का मिलता था, उसमें मलाई ऊपर रहती थी।
1: अच्छा,
0: तो वो दूध का ग्लास और मलाई के साथ पीने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली, कि यार साला इधर मलाई और दूध मिलेगा,
1: दूध मिलेगा।
0: फॉर एवरी क्लास एवरी स्टूडेंट गेट्स वन ग्लास ऑफ मिल्क विद मलाई ऑन टॉप। वो जमाने के ग्लास इतने बड़े बड़े रहते थे,
1: बिल्कुल। और वो पंजाबी व्यक्ति दूध का शौक मलाई,
0: गांव में पैदा हुए हैं
1: जी,
0: तो ज्वाइन किया। अच्छा, वहां पर वो जो ऑफिसर था ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, वो सिखाने के लिए नहीं आया था, वो अपना गुस्सा निकालता था सब पे, वो रोज एक स्टूडेंट को पकड़ के इतनी पिटाई करता था कि वो बच्चे बेहोश हो जाते थे। तो बख्श साहब ने देखा, यार ये तो खूब पिटाई हो रही है, लेकिन यार दूध भी मिल रहा है। तो वो क्या करते थे, रोज जब क्लास होता था ना, हफ्ते में एक दिन क्लास होता था, वो किसी न किसी के पीछे छुप जाते थे
1: ताकि रिंग में ना आना
0: पड़े। रिंग में नहीं आया, आंखों

0: आंखों से आंखें नहीं मिल सके।
1: हाँ।
0: तो तीन चार महीने तो बड़ा दूध पिया, मलाई खाई, मजे के ले लिए।
1: हाँ।
0: लेकिन एक दिन उस अंग्रेज ने देख लिया इनको, बोला यार तुम कौन हो, हैव यू जॉइंड न्यू, तुम क्या नया आए हो इधर? इसे नहीं, कब आए तुम इधर क्लास में? वो सर चार पांच महीने हो गए। चार पांच महीने हो गए
1: अभी तक मेरे हाथ से,
0: अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा ये। उनकी तो डबल पिटाई की उन्होंने।
1: अरे बाप,
0: अरे जबरदस्त खूब पीटा बख्शी साहब को।
1: हाँ।
0: साहब अगले दिन भाग गए वहां से।
1: अरे अरे,
0: सुबह उठे सीधा ट्रेन पकड़ी। क्या वो जमाने के जो बच्चे थे ना
1: जी,
0: वो आज के जमाने के जो हमारे मेट्रो बच्चे हैं या टायर टू सिटी के बच्चे, वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं थे वो। तो सीधा अगले दिन ट्रेन पकड़ी जम्मू से और घर वापस आ गए कि बाबा बहुत हो गया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी और। तो उसके बाद फिर विभाजन हो गया।
1: हाँ।
0: तो फिर वो पूरा स्टोरी चेंज हो गई ना, सारे लाइफ पाथ ही बदल गया पूरा।
1: तो एक दिन रातों रात ये तय किया गया कि पूरा परिवार दिल्ली जाएगा।
0: हाँ। तो उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हमारे मोहल्ले में दंगा होने वाला है। और क्योंकि वो दरोगा जी थे वो।
1: हाँ।
0: तो उनके हर घर को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली कल्चरली सर्टेन पोजिशन बट ऑल्सो मैन ऑफ पावर। ये भाई इसका घर तोड़ेंगे आज हिसाब से। तो इनको रातों रात निकलना पड़ा वहां से। तो जो भी हाथ लगा, बर्तन बर्तन गहने वहने, हाँ, खाना जो भी छोटा मोटा खाना पीना पानी, वो लकी थे क्योंकि उनके ग्रैंडफादर उनके दादाजी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे ऑफ पंजाब जेल। तो उनको दिल्ली आने के लिए एक डकोटा प्लेन में आए। देवर टू थ्री फैमिलीज, देवर वेरी प्रिविलेज्ड पीपल, और वो डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आए रावलपिंडी। पता नहीं बीच में रुके होंगे फॉर रिफ्यूलिंग, आई डो नॉट नो, बट आई नो दैट दे केम टू दिल्ली टू रेफ्यूजी कैंप। और बहुत लकी थे क्योंकि लाखों कहानियां जो लोगों का लूटा गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया। तो उनकी पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, तो सारे के सारे सेफ। तो जो भी वो उनका हाथ लगा, और घर की चाबी बाजू वाले को देके आए थे कि बाबा हम आ रहे हैं वापस, दो तीन महीने में वापस आ जाएंगे।
1: क्योंकि
0: किसी को ये नहीं था कि वापस कभी नहीं आ सकेंगे। तो इस विश्वास से कि हम एक दिन वापस आ जाएंगे, सब चीजें ठंडी हो जाएंगी, वापस आ जाएंगे। तो पड़ोसी को घर की चाबी देके आ गए। तो यहाँ कुछ चार पांच दिन निकले और सब सेटल हो गए, खाना पीना, और रेफ्यूजी कैंप में जगह मिल गई रहने के लिए, क्योंकि दरोगा जी थे वो, रिटायर्ड नहीं हुए थे, ही वॉज इन पावर स्टिल बट ही वॉज दिल्ली। तो रेफ्यूजी कैंप में उनको जगह वगैरह मिल गई, सब ठीक हो गया। तो सबको पूछा कि भाई क्या क्या लाए हो, कि उस जमाने में चांदी के बर्तन वॉज वेरी कॉमन। तो बर्तन चांदी के, ज्वेलरी जो लेडीज होती है तो ज्वेलरी लगती है, हमारे कल्चर में तो यही ज्वेलरी, गोल्ड लेना, क्योंकि पांच बहन है और ही वॉज ओनली सन फ्रॉम द फर्स्ट मदर एंड टू ब्रदर्स फ्रॉम द सेकेंड मदर।
1: सौतेली माँ भी उनकी एक थी।
0: हाँ, सौतेली माँ। तो ये सब पूरी दादा दादी साथ में, पूरे सब ज्वाइंट फैमिली। तो सब ने बताया कि किसी के पास ज्वेलरी, किसी के पास ये वो कपड़े वपड़े। तो जब बख्शी साहब का पूछा कि तू क्या लाया घर से, क्योंकि उनको रातों रात भाग के निकला ना वहां से, सुबह होने से पहले हमें यहां से निकल जाना है। तो जब उन्होंने बताया सामान जो लाए हैं, तो उनको खूब डांट पड़ी दादाजी से, बाबूजी से और दादाजी दोनों से, कि बेवकूफ क्या उठा के लाया, ये क्या काम आएगा किसी के, ये सब क्या लाए थे वो 17 साल की उम्र में रातों रात वहां से जब निकले। अपनी गुजरी हुई माँ की फोटोज, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में गुजर गई माँ, तो उनकी मेमोरीज बहुत कम है माँ के साथ।
1: तो वो तस्वीर उनके लिए,
0: वो तस्वीर ही उनकी मेमोरी थी कि ये। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो माँ बहुत जल्दी गुजर गई, तो मेरे पास तो ज्यादा यादें नहीं है माँ के साथ, तो ये तस्वीरें ही हैं जिनको मैं देख देख के वक्त गुजारता हूँ। जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि क्या है, उनके पिताजी ने भी शादी कर ली सेकंड, तो नेचुरली एक कोई भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता ना, तो बच्चे को थोड़ा प्यार नहीं मिलता, ये नहीं कि कम मिलता है, और हर एक बच्चा अलग होता है। कोई बच्चे को लगता है मुझे ज्यादा सेंसिटिव होता है कि मुझे कम प्यार मिल रहा है, तो फिर वो माँ की तस्वीर देख के रोते थे वो। तो उनको ये था कि उन्होंने बाबूजी को बोला था कि पैसे तो हम काम करके कमा लेंगे, कोई भी काम करके आप आदमी इंसान पैसे कमा लेता है, लेकिन माँ की तस्वीर अगर रह जाती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा।
1: गजब, क्या गजब की बात।
0: तो मैं लोगों को हमेशा ये जो किस्सा सुनाता हूँ, उसका मकसद ये है सुनाने का, जो इंसान 17 साल की उम्र में रातों रात कपड़े नहीं उठाए, पानी नहीं उठाया, खाना नहीं उठाया, ज्वेलरी नहीं उठाई, जो चांदी का ग्लास था वो नहीं उठाया, माँ की तस्वीर उठा के लाया, वो ही इंसान आगे जाके गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है ओ माँ।

0: और कोई नहीं लिख सकता ऐसा गाना। मुझे याद है जब हम मम्मी के साथ लड़ते थे, क्योंकि हम हर बच्चा मम्मी के साथ लड़ता है, क्योंकि मम्मी एक है जो हमारे नॉनसेंस ले लेती है ना, बाकी तो बाप तो सीधा उठा के दो चांटे लगा देगा। तो मम्मी के साथ वो लड़ते थे, डैडी के लड़ नहीं सकते क्योंकि एक जनरेशन गैप है। ऊपर से एक पिताजी का एक होता है ना रोब होता है, बाबूजी दादाजी पिताजी इनका एक रोब होता है बहुत हमारे घर में।
1: बिल्कुल
0: मम्मी फ्रेंड होती है ना।
1: यस बिल्कुल।
0: हाँ।

0: दोस्ती ज्यादा मम्मी से करते हैं, तो मम्मी से बहुत लड़ते थे, तो हमेशा डैडी मम्मी को बोलते थे कि तुम जो बदतमीजी से बात करते हो अपनी मम्मी के साथ, तुम बुरे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी माँ जिंदा है इसलिए तुम्हें पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है।
1: क्या
0: हमसे
1: बात है,
0: पूछो जिनकी माँ नहीं है, माँ से कैसे बात की जाती है, तुम्हारी माँ है इसलिए तुम्हें माँ की कीमत नहीं पता।
1: मां का मोल समझो।
0: हाँ,
1: दूसरी चीज वो जो लेके आए थे अपने घर से, वो थी पिंडी की मिट्टी।
0: वो मिसप्लेस हो गई, पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो वेयर इट वेंट। मैंने बहुत उसको खोजा, और उनके जाने के बाद जब मैंने उनका वॉलेट खोला, मुझे उनकी कृष्ण जी की फोटो मिली, एक गीता का एक वर्स मिला मुझे उसमें, एक बॉटल नहीं मुझे वापस मिली।
1: कि उन्होंने अपने गांव की मिट्टी एक बोतल में भरी कि अब ये छूट रही है मेरी मातृभूमि। ये कितनी बड़ी बात है
0: हाँ, इसलिए उन्होंने कितने खूबसूरत गाने लिखे हैं मिट्टी पे,
1: जी।
0: कितने खूबसूरत, मतलब एक से नंबर एक गाना है उनका मिट्टी पे। और मिट्टी खो देने का, माँ खो देने का, और मिट्टी खो देने का, इंसान खो देने का, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, जाने कहाँ चले जाते हैं वो लोग,
1: दुनिया से जाने
0: दुनिया से
1: वाले,
0: जाने वाले। आप देखो ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि जिया है उसे।
1: वो उनकी जिंदगी की

0: कहा।
1: रावलपिंडी से जुड़ी यादें वो शेयर करते थे, और वो कौन कौन सी यादें, अभी तक हमने बहुत सारी यादें वहां की बांटी हैं, तो कुछ और बात है जो रह गई जो उन्होंने आपको सुनाई हो रावलपिंडी से जुड़ी हुई कहानी?
2: जब रावलपिंडी में थे तब उनको पता चला था कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी।
1: हाँ, क्यों, स्टूडियोज होते थे बड़े। हाँ, बड़े।
2: तो वो लाहौर गए थे काम ढूंढने के लिए। नहीं, उनकी एक कविता एक उर्दू मैगजीन में छपी थी, क्योंकि पढ़ाई उर्दू में होती थी वहां पर रावलपिंडी में। तो उनका जो लिखाई है वो भले हिंदी है, हिंदी गाने हैं, लेकिन वो उर्दू में लिखते थे हिंदी गानों को हमेशा, क्योंकि उन्होंने हिंदी सीखी नहीं थी। जो उनकी हिंदी थी वो बोलचाल में थी।
1: जी जी।
2: हाँ, लेकिन लिखने में वो हिंदी गाने उर्दू में लिखते थे।
1: ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बख्शी साहब अपने गाने उर्दू में लिखा करते थे।
2: हाँ, मैट्रिक पास ना, 8th स्टैंडर्ड तक। तो वो पब्लिश हुई थी उनकी एक नज़म लाहौर में, तो वहां इंडस्ट्री भी थी, तो वहां भी वो गए थे कि चलो इसी बारे में थोड़ा काम भी ढूंढूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो वो फिर वापस आ गए थे।
1: जी, पार्टीशन के बाद जब पूरा परिवार दिल्ली आया, दिल्ली में किस तरह के हालात हुए और वहां से कहां गया पूरा परिवार?
2: बिकॉज देवर रेफ्यूजी कैंप में थे ना वो, तो दिल्ली से फिर उनको पुणे शिफ्ट किया गया रेफ्यूजी कैंप।
1: सरकार ने भेजा?
2: सरकार ने। फिर वहां से वापस वो दिल्ली आए, क्योंकि पंजाबी थे वो, तो उनको महाराष्ट्र सूट नहीं किया। दे वांटेड समबडी, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव वही है, पंजाब में ही है, पंजाब हरियाणा। तो उन्होंने बोला कोई ये हमारा इधर तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई पहचान वाला ही नहीं है महाराष्ट्र में। तो पुणे से फिर वापस उनको शिफ्ट किया गया, फिर उनको घर दिया गया दिल्ली में, सराय रोहिल्ला जगह है, सराय रोहिल्ला। तो फिर पार्टीशन हुआ अगस्त में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उन्होंने ही ज्वाइन इन द सिग्नल्स एज एन इलेक्ट्रिशियन एंड टेलीफोन ऑपरेटर।
1: ओके।
2: तो उनका जो कोड नेम था सोल्जर, क्योंकि सोल्जर को सिग्नल में वॉच कोड सिखाया जाता है।
1: जी जी।

0: सिखाई थी ट्रेनिंग वाली, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हैं, बहुत सारे नोट्स लिखे हैं साइंस के, तो वो देख के
1: लेकिन कमाल की बात है, ही वाज सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, लेकिन डरपोक नंबर वन, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो जाए घर में ना गड़बड़, डरपोक नंबर वन,
0: तो वो टच नहीं करते थे,
1: स्क्रू ड्राइवर डालने में भी घबराते थे कि शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, हाथ में लगा, हाथ में लगा, शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, ही वाज लाइक दैट।
0: नहीं लेकिन वो जो नोटबुक आपने मुझे दिखाई थी उसमें तो क्या सर्किट
1: सब कुछ, लेकिन
0: बहुत सुंदर राइटिंग में सब कुछ है।
1: फोबिया होता है शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो उनको वो शॉक लगने का बहुत डर रहता था, एक चिपकली का डर, एक शॉक लगने का डर, और एक लिफ्ट में चढ़ने का डर, तीन उनके डर थे, और अकेले रहने का डर। तो उनका अकेले रहने का जो डर था ना, उसको एनालाइज किया गया, वो करीब लेट 1990s में, मेरे ख्याल में गुजर जाने से कुछ दो तीन साल पहले, ही मेट अ साइकोलॉजिस्ट कि अभी तो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूं, मेरा नाम है सब जगह, इज्जत है, जो मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में होगा वो भी हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे डर है प्लेन में नहीं चढ़ने का, लिफ्ट में नहीं जाने का, घर में अकेले नहीं रहने का।
0: मतलब कोई ना कोई उनके साथ होना जरूरी था।
1: घर पे भी हमारा काफी बार डैडी के साथ झगड़ा क्यों होता था, क्योंकि वो बोलते थे अभी मम्मी बाहर गई है तुम घर बैठो, बाहर नहीं जाना, मम्मी आएगी तब जाना, तो बोलता अभी अब जाना खेलने के लिए जाना है क्रिकेट खेलने जाना है या गोटी खेलने जाना है या गिती गिती खेलने जाना है, दोस्त बुला रहे हैं नहीं नहीं मम्मी आएगी या भाई आएगा गोगी आएगा तब जाना, तो हम लड़ते थे डैडी के साथ। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद जब मैंने उनकी डायरी खोली तब मुझे पता चला कि ये जो डर था उनका घर में अकेले नहीं रहना, कोई ना कोई होना चाहिए घर में, या तो जो हमारे घर में लोग काम करते हैं वो होने चाहिए, या मैं या माय ब्रदर और माय सिस्टर और माय मदर, कोई होना चाहिए अकेले नहीं। उसको एनालाइज किया गया हूं साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने रिमार्क लिखा है दैट बिकॉज यू आर अबैंडन्ड एज अ चाइल्ड, बिकॉज यू लॉस्ट योर मदर एट द एज ऑफ 5 और आप पिताजी ने दूसरी शादी की, और क्या होता है भले वो माँ अच्छी हो दूसरी आई है लेकिन वो माँ नहीं है,
0: तो एक अकेलापन आ जाता
1: है। अकेलापन से ज्यादा होता है अबैंडनमेंट।
0: जी जी,
1: अबैंडनमेंट हर्ट्स यू।
0: यस,
1: अकेलापन में नॉट हर्ट यू, लेकिन इफ यू फील अबैंडनड यू आर हर्टिंग योरसेल्फ
0: कि मेरा तो कोई नहीं है,
1: मेरा तो कोई नहीं है, नहीं मुझे छोड़ा गया है,
0: हाँ,
1: मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, तो क्योंकि 5 साल की उम्र है ना, तो उसको लगता है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है, तो बचपन से माँ चली गई मतलब माँ ने छोड़ दिया मुझे, तो वो जख्म था वो भरा नहीं कभी, इसलिए वहां पे क्या गाने लिखे बख्शी साहब ने, कमाल सर, आई डोंट थिंक एनी बडी रिटन एज गुड एज आनंद बख्शी रिटन ऑन मदर।

0: 60s, 70s, 80s में माँ की बहुत अहमियत थी सोसाइटी में, तो फिल्म में कहीं ना कहीं माँ का कैरेक्टर आ ही जाता था, स्ट्रांग कैरेक्टर,
1: और वहां फिर गाने लिखने की।
0: हाँ, जो आजकल नहीं है फिल्मों में। आजकल फिल्मों में आपको देखो दोस्ती खत्म हो गई है, दोस्ती में कोई गाना नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं दिखा रहे दोस्ती का। तो ये सब है, तो उनका जो ये था ना कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, उसकी दो वजह थी। एक तो ही फेल्ट लेटर तो व्हेन ही ग्रो ओल्डर देन ही रियलाइज्ड दैट शी डाइड, बिकॉज शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ। जब सेकंड चाइल्ड पैदा हुआ ना बख्शी साहब के बाद, तो वो चाइल्ड बर्थ में गुजर, उस जमाने में ना चाइल्ड बर्थ में बहुत डेथ हो जाती थी।
1: जी जी लेडीज बिल्कुल, की बिल्कुल।
0: लेकिन वो जख्म जख्म होता है, कोई जख्म बढ़ते नहीं है, हर जख्म नहीं बढ़ता
1: वाला। और प्लेन में सफर न करने वाला डर क्यों?
0: दैट इज जस्ट अ फोबिया। एंड साइकोलॉजिस्ट ने बोला, अगर आपको, उन्होंने बोला कि भाई जब मैं आर्मी में था तो मैं तो पैराशूट से जंप मारता था, 70 रुपए के लिए ज्यादा, हमको 70 रुपए ज्यादा मिलते थे अगर हम पैराट्रूपिंग करें। वो आदमी प्लेन में नहीं चढ़ रहा है, आप सोचो। तो उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि भाई इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने कमाल का क्योर दिया हमको। उन्होंने बोला कि आप जब बंबई आए थे ये डर था? ही सेड नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये डर बाद में आया, कब आया? जब शोहरत आई। शोहरत के साथ डर आया। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्लेन में वापस चढ़ना है, अगर आपको लिफ्ट में वापस जाना है, आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी थी 1956 में,
1: स्ट्रगल।
0: ट्रेन में जाना, बस में जाना, कार स्टेशन से वो

0: निकालते थे फर्स्ट क्लास का, और वो वही ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाते थे। फिर चर्चगेट में जाके समुद्र के किनारे मंडरा पे बैठते थे, जहां वो बैठ के गाने लिखते थे। वहां 1-2 घंटा गाना लिखा, 2-3 जो भी मूड हुआ तो लिखा, नहीं हुआ तो ऐसे बैठ के। वो जो जिंदगी जी थी उन्होंने
1: उसको रिपीट
0: 1956
1: किया।
0: में, उसको रिपीट किया गया ताकि ये डर जाए, क्योंकि वो आदमी खो गया है, उस आदमी को वापस कैसे लाना है, वो आदमी बनो।
1: अरे गजब।
0: तो वो आदमी वापस आएगा, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ने वो आदमी पैदा किया था ना, जो ट्रेन में जाता था काम ढूंढने, बस में चढ़ता था काम ढूंढने, लिफ्ट पे चला जाता था काम ढूंढने। वो इंसान खो गया क्योंकि अभी उसके पास गाड़ी आ गई है, वेल्थ आ गया है, घर आ गया है, नाम और शोहरत आ गया है, तो वो इंसान खो गया है। तो उस डॉक्टर ने कहा था उनको, साइकोलॉजिस्ट ने, तुम वो इंसान बनो क्योंकि वो इंसान पीछे रह गया है। फिर हफ्ते में 3 दिन चर्चगेट जाते थे ट्रेन में, और ऐसे बहुत लोगों ने मिले हैं लोग, आई सॉ योर फादर टुडे यार एट बांद्रा स्टेशन यार माय फ्रेंड्स, यू आर गोइंग ऑन ट्रेन यार।
1: ट्रेन से जा रहे थे। क्या बात है।
0: हाँ, एक जर्नलिस्ट मुझे, मैं 2-3 जर्नलिस्ट से मिला रहे, हम बख्शीश आपको देखते थे यार
1: ट्रेन में जाते।
0: हाँ, क्यों जाते थे।
1: हाँ।
0: तो बोले कभी बैठेंगे तो सुनाऊंगा कहानी।
1: अरे बाप रे, ये भी बहुत ही कमाल की कहानी।
0: तो हमें अगर हमें ताकत चाहिए ना, जो हमारी ताकत जवानी में थे, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा।
1: ये बहुत बारीक
0: तो स्पिरिचुअल ताकत वापस आएगी।
1: जी, बहुत बारीक बात। वापस जबलपुर चलते हैं, जहां आर्मी सिग्नल कोर में बख्शी साहब की ट्रेनिंग चल रही है, और वहां बख्शी साहब अपनी कलाकारी भी दिखाते हैं, और आर्मी वालों को ये यकीन हो जाता है कि यार ये बंदा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए नहीं बना है।
0: तो क्या हुआ कि उनका सपना जो था वो मोहल्ले वालों ने एनकरेज किया, अरे तू बंबई जा यार, तू बंबई जा यार, यार तू किधर क्या कर रहा है यार, तू गांव में क्या कर रहा है, बंबई जा। तो वो तो एक बचपन का सपना होता ना, लेकिन जब वो आर्मी में अडल्ट हो गए थे, विभाजन हो गया था देश का, मतलब इट वॉज अ वेरी सीरियस एटमोसफियर ना, यू हैव लॉस्ट योर हाउस, यू हैव लॉस्ट योर प्रॉपर्टी, यू हैव लॉस्ट योर वेल्थ, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट नौकरी, सरकारी नौकरी है बस, और देश के लिए आप काम कर रहे हो। बिकॉज दैट वाज व्हेन यू जॉइन द आर्मी, इट वॉज पेट्रियोटिज्म। व्हेन यू जॉइन द नेवी, इट वॉज मैं बंबई जाऊंगा, वहां से जंप मार के फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। जो उनका जो बचपन का सपना था उसने रूप लेना शुरू किया। कैसे, उनके जो कलीग्स थे आर्मी में, जो सोल्जर्स होते हैं साथ में आपके काम करते हैं, और जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने इनको एनकरेज किया। और एक तो कैप्टन, उन्होंने तो ऑफिशियल आर्मी के लेटर पे चिट्ठी भी लिखी थी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आनंद प्रकाश बख्शी वैद इज एन एक्सीलेंट राइटर एंड एक्सीलेंट सिंगर एंड ही परफॉर्म्स वेरी गुड स्टेज शोज एंड आई सोनचो कमांडर ऑफिसर कैप्टन रिकमेंड हिम टू एनीबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री टू प्लीज गिव हिम अ वर्क एज अ सॉन्ग राइटर।
1: गजब गजब। यानी एक फौजी अफसर ये लिख रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा कलाकार है, इसको सिनेमा में काम दो।
0: में काम दो।
1: वाह वाह।
0: वो है मेरे पास चिट्ठी है, हमारे पास रेडीनेस को संभाल कर रखा है, क्योंकि वो चिट्ठी जाके दिखा देते बॉम्बे में आके, देखो मेरे ऑफिसर ने मुझे भेजा है, अब यहाँ क्या उसकी कीमत।
1: हाँ, इंडस्ट्री वालों को थोड़ी पता
0: क्या कीमत है कैप्टन की।
1: जी, आर्मी में वो परफॉर्म क्या करते थे बड़े खाने के दिन?
0: प्लेस, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उसमें एक्टिंग भी कर लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, गाते थे भी और एक्टिंग भी कर लेते थे। ये वो मेन स्टार ऑफ बड़ा खाना शोज।
1: और ये
0: एनुअल
1: इंपॉर्टेंट बात है कि उस जमाने में उन्होंने उस दौर के मशहूर गानों को सुन के उनकी धुन पर गाने लिखना शुरू कर दिया।
0: हाँ, जब आर्मी में थे तो बरसात की एक रात लगी थी
1: जी,
0: उन्होंने उस फिल्म को 29 टाइम्स देखा था। 29 टाइम्स क्यों देखा था? ताकि वो कहानी को घोल के पी जाएं, और फिर उस फिल्म के गाने लिखे थे पूरे।
1: ये उनका रियाज था।
0: वीकेंड पे जो छुट्टी मिलती थी ना, तो जाके फिल्म देखते थे सिटी में, वापस आके बैरक्स में उसी फिल्म के पूरे गाने वापस लिखते थे और सुनाते थे सब। इसीलिए सबने रेकमेंड किया, यार तूने तो यार क्या लिखा यार, ये तो वैसा ही है जैसा हमने फिल्म में देखा था यार, उससे भी अच्छा लिखा तूने यार। तो वो एनकरेजमेंट, पहले बार उनका जो सपना था ना वो कॉन्क्रीटाइज हुआ कि मैं यहां के लिए नहीं बनाऊं, मैं वहां के लिए बनाऊं।
1: तो उन्होंने आर्मी छोड़ी कैसे, बंबई आए, साल कौन सा था?
0: 1950 में छोड़ी, जो भी उनकी सैलरी थी उसको जमा किया, सेविंग्स बंबई 1950, और 3 महीने में सारे पैसे खत्म हो गए।
1: बंबई तो शहर ही निराला है।
0: और वापस आर्मी ने को लिया, 6 साल काम किया आर्मी में, सिग्नल्स नहीं उनको वापस से एक्सेप्ट किया।
1: 1950 में बंबई आए,
0: तीन महीने में
1: वापस चले गए, और वापस आर्मी में
0: हार के, और वो जो टोली ना, उनके सीनियर ने उनको छुट्टियां दी थी, तो देव वेलकम डेम, उनको बल्कि सिंपथी हुई कि यार बेचारा अपना छोड़ा मुंडा वापस आ गया है, तो आज को रख लो यार, क्योंकि आपने जो 3 साल काम किया है ना, वहां भी तो नाम कमाया, तो उनको नौकरी मिल गई इमीडिएटली। फिर उनकी शादी हो गई,
1: और शादी भी लखनऊ में हुई।
0: हाँ, शादी लखनऊ में हुई।
1: ये लड़की कैसे मिली?
0: शादी में एक लड़का मिला उनको, तो बोला यार तू यहाँ क्या कर रहा है, वो रावलपिंडी का था, उनकी गली का, तो बोला यार तू इधर क्या कर रहा है, तो बोला मेरी तो शादी है। तेरी शादी है? हाँ। तो तू इधर क्या कर, मेरी बहन की शादी है। तो मेरे मम्मी का भाई था वो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: क्योंकि वो दोनों में अरेंज मैरिज होती थी।
1: ये रिश्ता किसने जोड़ा था?
0: उनकी एक बुआ थी, शी वॉज

0: पत्री बनाती थी, जन्म पत्री।
1: अच्छा अच्छा,
0: एस्ट्रोलॉजी, शी वाज एन एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड में, पोस्ट कार्ड हमारे मेरे पास है, मैंने उसको अभी फाइनली डिस्प्ले किया हॉल में
1: जी,
0: उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी बख्शी साहब के, उनके पिताजी को, बाऊजी को, कि मैंने नंद के, नंद उनका घर का नाम था नंद,
1: हाँ, आनंद से नंद,
0: नंद, नंद इज ऑल्सो नेम फॉर कृष्णा,
1: बिल्कुल
0: कृष्ण भक्त है वो
1: जी।
0: तो नंद के लिए मैंने कुड़ी देखी है लड़की, और वो थोड़ी सावली है, व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, और थोड़ी भारी है, स्लाइटली प्लम्प, और सबसे कमाल की बात है शी इज अ सीमस्ट्रेस ग्रेजुएशन इन
1: सिलाई कढ़ाई, बहुत अच्छा करती है
0: हाँ। और सबसे अच्छी, सबसे खास बात है कि वो साइकिल चलाती है।
1: अच्छा, साइकिल चलाना बहुत बड़ी खासियत है,
0: बहुत बड़ी बात है लेडीज के लिए, गर्ल के लिए, लड़की साइकिल चलाए वो, अरे ये तो डेक्कन क्वीन है भाई ये तो।
1: वाह वाह वाह वाह वाह। तो बख्शी साहब देखने गए?
0: नहीं नहीं, कुछ देखना होगा ना, क्या कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सर आप, देख रहे
1: सीधे शादी तय,
0: शादी तय, और उनका भाई था, उनको पता नहीं था कि भाई है इसका ये।
1: हाँ, ये देखिए ये कमाल की बात है, और यही बख्शी साहब ने आगे चल के गाना लिखा, लड़की साइकिल वाली,
0: बी आर चोपड़ा की फिल्म थी वो।
1: हाँ,

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

जी हाँ दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं। हम उपस्थित हैं युवा श्रोताओं के साथ कार्यक्रम युवाणी को लेकर के। अभी से लेकर के शाम के 5:40 तक हम आपके साथ बने रहेंगे इस कार्यक्रम में, और अन्य दिनों की भांति आज भी आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में कुछ लोकगीत, साथ ही साथ कुछ आपसे बातचीत भी होगी। तो देर न करते हुए कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत।

0: सुन रहे थे राखी कुमारी के स्वर में ये लोकगीत। और दोस्तों, पुनः हम आपको सुनाएंगे लोकगीत एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पुनः आप सबों का स्वागत है इस कार्यक्रम में, और अब आपको हम सुनवाते हैं पूनम कुमारी के स्वर में ये लोकगीत।

0: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब सुनिए नीलम झा के स्वर में ये लोकगीत।

0: भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: अब सुनिए दिवाकर सिंह के स्वर में ये लोकगीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं दरभंगा आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से युवानी कार्यक्रम। और देखिए ना दोस्तों, यूं ही गीत सुनते सुनवाते धीरे धीरे घड़ी की सुई अग्रसर होती चली जा रही है और अब हम लोग कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं हेमकांत झा के स्वर में ये लोकगीत।

अभी आप युवानी कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब वक्त हो चला है कुछ नए फिल्म संगीत का, तो कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आयुष्मती गीता मैट्रिक पास का यह गीत, सुनिए। गायक कलाकार हैं मनीष, बोल हैं संजीव आनंद के, श्रोताओं एक बार पुनः सुन लेंगे, बोल हैं संजीव आनंद के और संगीतकार भी संजीव आनंद झा ही हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अब सुनिए फिल्म सहदेव का यह गीत कपिल कापिलान की एवं पावनी वसा की आवाज़ में। बोल हैं मंदार चोलकर के और संगीत निर्देशन देव जैंड का है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकते।

0: ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे फिल्म सहदेव का यह गीत। गायक कलाकार थे कपिल कापिलान एवं पावनी वसा। बोल थे मंदार चोलकर के और संगीत निर्देशन देव जैन का था। इसी गीत के साथ दोस्तों आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह अब मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो द्वारा दायर

0: याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर JAAC ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के HS प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ से हार का

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। मैथिली संवाद आप सुनते हैं प्रतिदिन संध्या 6:25 पर। गाम घर संध्या 6:30 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7:00। रात्रि 7:50 पर आप सुनेंगे बिहार विधानमंडल समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। संसद समीक्षा रात्रि 8:00 प्रसारित किए जाएंगे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। मैथिली कार्यक्रम सिंहहार आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। विविधा कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर प्रसारित किए जाएंगे और इसमें आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय होगा डिजिटल युग में अभिनय की कला, अवसर, चुनौतियां और भविष्य। वार्ताकार होंगे अंजनी कुमार, भेंटकर्ता होंगे आशुतोष कुमार झा। रात्रि 9:45 पर आप सुनेंगे देववाणी कार्यक्रम। रात्रि 10:00 सुनिए एक फनकार, रात्रि 10:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11:00 मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप

0: सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अब जानकारी प्राप्त कीजिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कल प्रातः 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन, विषय होगा संसार में, आलेख एवं वाचन होगा सुरेंद्र झा का। कृषि चर्चा आप सुनते हैं प्रतिदिन 5:55 पर।

पर आप सुनेंगे चिंतन, विषय होगा संसार में, आलेख एवं वाचन होगा सुरेंद्र झा का। कृषि चर्चा आप सुनते हैं प्रतिदिन 5:55 पर। 6:05 पर आप आनंद लेंगे, 6:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनते हैं प्रतिदिन 6:10 पर। नमस्कार मिथिला कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:05 पर। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन आप सुनेंगे 9:10 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे दिन में 10:23 पर। लोकगीत आप सुनेंगे, कृपया एक बार पुनः सुन लें। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे दिन में 10 बजे, और 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत। शास्त्रीय संगीत सुनेंगे आप दिन के 11 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनते हैं दिन के 11:30 पर, तथा 12 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 12:30 पर आप सुनेंगे बहनों के लिए हमारा संबोधित कार्यक्रम नारी संसार। देशभक्ति गीत आप सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 1:10 पर, और फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे दोपहर 1:15 पर। रोजगार सूचना आप सुनेंगे दोपहर 2:10 पर, तथा दिन में 2:30 पर वक्त होगा फिल्म संगीत का। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत, कलाकार हैं गौतम मिश्रा।

0: अभी आप विद्यापति गीत सुन रहे थे। कलाकार थे राम कुमार मल्लिक। प्रसारण
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी हृदयकांत मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनौलनि जे युवा लोकनिक भविष्यक संग कोनो खेलवाड़ बर्दाश्त नहि कयल जायत। नव दिल्ली में एनडीए संसदीय पार्टीक साप्ताहिक रणनीति बैसारक बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जनौलनि जे प्रधानमंत्री बैसार में जनौलनि जे पेपर लीक मामलाक दोषी सब के कड़गर सजा भेटत। ओ जनौलनि जे श्री मोदी छात्र सभक संग संग युवा सभक नीक भविष्यक लेल संकल्प जतौलनि अछि। बिहार विधानमंडलक मॉनसून सत्रक दोसर दिन आइ दुनू सदनक कार्यवाही विपक्षक हल्लागुल्ला आ टोकाटोकी के बीच नीक सँ चलल। राजदक गौतम कृष्णाक एकटा प्रश्नक जवाब में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जनौलनि जे सरकार शिक्षक सभक बदली लेल शिक्षक तबादला नीति आनलक अछि। श्री तिवारी जनौलनि जे TRI-4 में बिहार लोक सेवा आयोग के शीघ्रहि अधियाचना पठा देल जायत। एम्हर हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे आइ विधानसभा में 7 पैघ विधेयक पेश कयल गेल। एहि मे बिहार युवा प्रतिषेध विधेयक, बिहार माल सेवा कर संशोधन विधेयक, बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक, बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक, बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक और बिहार कृषि भूमि विधेयक 2026 अछि। विधान परिषद में सेहो आजुक कार्यवाही में कतेको पैघ विधेयक पर चर्चा कयल गेल। एम्हर ग्राम पंचायत सब में होल्डिंग टैक्स वसूली के मुद्दा पर सरकार अपन रुख साफ कयलनि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विधान परिषद में विपक्षी सदस्य सभक भ्रम के दूर करैत जनौलनि जे गरीब सब पर टैक्स लगाओल जयबाक गप निराधार आ भ्रामक अछि। मुख्यमंत्री जनौलनि जे सरकार गरीब सब पर कोनो नव टैक्स नहि लगा रहल अछि। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार जनौलनि जे बिहार चीनी उपक्रम संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में पारित भेला सँ राज्य में गन्ना उद्योग के नव ऊर्जा भेटत। आकाशवाणी समाचार सँ गपशप में श्री कुमार जनौलनि जे एहि सँ रोजगारक मौका बढ़त। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आजीविका में चयनित 2446 अभ्यर्थी सब के नियुक्ति पत्र सौंपलनि। पटनाक ऊर्जा ऑडिटोरियम में भेल समारोहक बीच श्री चौधरी नियुक्ति पत्र सौंपित जनौलनि जे राज्य सरकार युवा सब के नौकरी देबाक संकल्प लऽ कऽ काज कऽ रहल अछि। एहि बीच उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आ विजेंद्र प्रसाद यादव और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सेहो छलाह। राज्यसभा सांसद आ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ संसदक कार्यवाही में भाग लेलनि। श्री कुमार राज्यसभाक सदस्यता लेलाक बाद पहिल बेर संसदक कार्यवाही में शामिल भेलाह। एहि सँ पहिने ओ उपराष्ट्रपति

0: कियारा सभाक सभापति सी पी राधाकृष्णन सँ शिष्टाचार भेंटघाट कयलनि। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पांचम सक्षमता परीक्षाक परिणाम जारी कऽ देलक अछि। बोर्डक अध्यक्ष त्यागराजन एस एम परिणाम जारी करैत जनौलनि जे 5 जून कऽ भेल परीक्षा मे सभ श्रेणीक 30% परीक्षार्थी सभ पास भेल छथि। अभ्यर्थी सभ अपन अपन परिणाम आवेदनक संख्याक मदद सँ बोर्डक वेबसाइट पर देख सकैत छथि। प्रदेश में मानसूनक सक्रियता से बरखा भ रहल अछि। मौसम विभाग आई भोजपुर बक्सर रोहतास भभुआ अरवल शेखपुरा बेगूसराय सहित राज्यक दक्षिण पश्चिम आ दक्षिण मध्य भाग में कतेको ठाम तेज हवाक संग बरखा होयबाक अलर्ट जारी कयलक अछि। ओतहि सुपौल अररिया आ किशनगंज सहित राज्यक उत्तर पूर्व भाग में कतेको ठाम बरखाक बीच ठनका सेहो खसि सकैत अछि। मौसम विभागक अनुसार पछिला 24 घंटाक बीच कटिहार जिलाक मनिहारी में सबसे बेसी 109 मिलीमीटर बरखा भेल अछि। बेगूसरायक सिमरिया धाम में 10 करोड़ टाकाक लागत सँ 2 इलेक्ट्रिक आ काठ शब्दागृह बनाओल गेल अछि। एम्हर जिलाक बरौनी रेलवे स्टेशनक प्लेटफार्म संख्या 7 पर ठाढ़ 1 रेलगाड़ीक डिब्बा सँ रेल पुलिस भारी मात्रा में शराब बरामद कयलक अछि। एहि मामला में 2 गोटा के गिरफ्तार कयल गेल अछि। दरभंगा कतेको शिक्षण आ स्वास्थ्य संस्थान सभ में आइ CPR जागरूकता कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल। एहि मे विद्यार्थी शिक्षक आ स्वास्थ्यकर्मी सभ के हृदयघातक स्थिति में शीघ्रहि CPR सहायता देबाक तकनीकक जनतब देल गेल। अररियाक जिलाधिकारी विनोद दुहन किसान क्रेडिट कार्ड सँ ऋण बांटे में गति बढ़ेबाक लेल जनौलनि। समाहरणालय सभागार में जिला कृषि टास्क फोर्सक बैसार में कृषि आ एहि सँ जुड़ल कतेको विभागक योजनाक प्रगतिक समीक्षा कयल गेल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांव घर।

0: कार्यक्रम गाम घर सुनवला सब स्नेही श्रोता लोकन के सत्तू भाई के दिशा नमस्कार संगे गोपी भाई अहूं के नमस्कार
1: नमस्कार सत्तू भाई संगे संग गाम घरक श्रोता लोकन के सेहो नमस्कार। देखियो सत्तू भाई आजुक दिन मंगल है आ मंगल को हम सब युवा लोकन के लेल नव ऊर्जा कार्यक्रमक प्रसारण करै छी। युवा लोकन जे होइत छथि ओ अहाँके देशक ऊर्जा होइत छथि,
0: ऊर्जा होइत छथि
1: आ देशक भविष्य छथि। आ ई तऽ बड़ सुखद गप अछि कि हमर सबके देश के जे जनसंख्या आया ओहिमे अखन बेसी छै से अहाँके संख्या युवा लोकन कहि सकै छी कि हमर सबक देश जे यऽ ओ युवा लोकन के देश अछि। आ युवा लोकनिक विकास, युवा लोकनिक उत्थान, युवा लोकनिक रोजगार भेटा ई सबसँ बेसी जरूरी अछि। आ एहि लेल अहाँके प्रधानमंत्री के नव 15 सूत्री जे कार्यक्रम अछि ओ भारत सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यक के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लेल शुरू कयल गेल एकटा प्रमुख कल्याणकारी योजना थी। ई कार्यक्रम केंद्र द्वारा अधिसूचित 6 जे अल्पसंख्यक समुदाय अछि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन के कमजोर वर्ग पर विशेष रूप से केंद्रित अछि। अच्छा एहि कार्यक्रमक मुख्य उद्देश्य की है सतो भाई?
0: एकर उद्देश्य अछि शैक्षणिक अवसर के बढ़ावा देव, आर्थिक गतिविधि रोजगार में समान हिस्सा सुनिश्चित करब आ जीवन स्तर के सुधार लाब ई कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य अछि। एहिमे कहबे के लिए जे अहाँ के मुस्लिम भऽ गेलथि, ईसाई भऽ गेलथि, सिख भऽ गेलथि, बौद्ध, फारसी, जैन ई सब एहिमे शामिल कयल गेलथि है। आ एकरा लेल बहुत रास एहन उद्देश्य आ प्रावधान अछि जे उनका लेल चलायल जा रहल अछि, जेनाकि शिक्षा के अवसर में बढ़ावा देब, जेनाकि प्री मैट्रिक भऽ गेल, पोस्ट मैट्रिक भऽ गेल, मैट्रिक सह साधन छात्रवृत्ति भऽ गेल, ई योजना के विस्तार करब, संगे मदरसा के आधुनिकीकरण आ उर्दू शिक्षण के बढ़ावा देव।

0: प्रमुख उपलब्धि
1: आ मेधावी जे अल्पसंख्यक छात्र छै उनका लेल प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक आ मेरिट कम मींस में छात्रवृत्ति योजना के संचालन अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में उर्दू शिक्षकक भर्ती और नियुक्ति मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से शैक्षिक बुनियादी ढांचा में सुधार केने और आर्थिक सशक्तिकरण स्वरोजगार के लेल नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन NMDFC के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान केने और सरकारी नौकरी में अल्पसंख्यक लोकन के लेल उचित भागीदारी सुनिश्चित केने अछि।
0: संगे आर्थिक भागीदारी आ रोजगार अइमे अहाँ के स्वरोजगार भ गेल, मजदूरी रोजगार भ गेल, योजना के उचित अवसर एवं वित्तीय संसाधन के माध्यम से ऋण सहायता देल जाइत अछि। संगे सरकारी नौकरी आ अन्य सेवा जे अछि ओहिमे उचित प्रावधान सुनिश्चित कयल गेल अछि। सबके भागीदारी हुए, ओ सरकारी अहाँ के नौकरी हुए चाहे अहाँ के प्राइवेट हुए, तो सबक भागीदारी एहिमे सुनिश्चित कयल गेल अछि।
1: आ एहि योजना से आर्थिक सशक्तिकरण रोजगार अल्पसंख्यक युवा लोकन के भेटैत अछि। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के माध्यम से ऋण प्रदान केने, समग्र शिक्षा अभियान, दीनदयाल अंत्योदय योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत कौशल विकास और रोजगारक अवसर। एहि योजना से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में जीवन स्तर में सुधार अन्नय अछि। हुनक क्षेत्र में बुनियादी सुविधा जे प्राथमिक सुविधा अछि ओ जुटाओल गेल अछि। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमक अंतर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, ITI, पॉलिटेक्निक, स्वास्थ्य केंद्र, कौशल केंद्र और पेयजल जेहन आवश्यक सुविधा के व्यवस्था कयल गेल अछि।
0: संगे ग्रामीण आवास आ समेकित बाल विकास सेवा जे अछि जकरा ICDS कहै छै, ओकर लक्षित क्षेत्र में समान वितरण के आवश्यकता अछि। जना कि छोट धियापुता भले चाहे युवा भेल, तो उनका लेल बहुत रास एहन कार्यक्रम सब चलायल जाइत अछि जे उनके लेल रहैत अछि, तो ओहिमे सेहो समान भागीदारी होइन। तो ओहि के लेल ICDS जे आंगनबाड़ी होइत अछि ओकर द्वारा केंद्र जे चलायल जाइत अछि, तो ओहू में समान हिस्सेदारी उनका हेबाक चाही।
1: एहि योजना के उद्देश्य में सांप्रदायिक दंगा के मामला में त्वरित न्याय सुनिश्चित केने, प्रभावित लोक के पुनर्वास और दंगा से बचावक लेल विशेष उपाय सुनिश्चित केने अछि। आ सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय के मंजूरी और एहन आन सरकारी योजना के स्वीकृति के अंतर्गत ये सुनिश्चित कयल गेल अछि कि अल्पसंख्यक क्षेत्र में इस संस्थान जैसे खुजा।
0: संगे योजना में आवंटन के अधिकांश विकास योजना जे अछि ओकर 15% हिस्सा अल्पसंख्यक के लिए लक्षित कयल गेल अछि। अनुपातिक रूप से निर्धारित करबा के सेहो एहिमे प्रावधान कयल गेल अछि। उनका लेल 15% जे हिस्सा अछि ओ अहाँ के ओकरा प्रावधान कयल गेल अछि। तो ओहिमे अहाँ के जे छथि जते समुदाय के आदमी जेना मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, फारसी सब, तो उनका लेल ई ऋण चलायल जाइत अछि।
1: देखियो अल्पसंख्यक लोकन जे छथि ओ समाज के अभिन्न अंग छथि, हाँ, तो हुनक विकास हैत तो समाज के विकास हैत, तो हुनक विकास पर जोर देने आप सबका तो संविधाने में अछि कि जे कमजोर वर्ग अछि चाहे वो महिला होथ, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति होथ, चाहे पिछड़ा वर्ग होथ आ चाहे छै से अहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग होथ, हिनकर विकास का सुनिश्चित केने आ हिनकर विकास का प्राथमिकता का आधार पर केने, ई हमर सबके संविधान में अहाँ का जे संविधान का दिशा निर्देशक तत्व अछि ओहिमे स्पष्ट रूप से कहल गेल अछि कि हिनक विकास का प्राथमिकता के तौर पर अहाँ सुनिश्चित करू। तो एनाही अछि अहाँ का
0: छात्रवृत्ति योजना अछि, जना कि एहिमे अहाँ के जे अल्पसंख्यक समुदाय के आदमी छथि उनका लेल छात्रवृत्ति चलायल जाइत अछि। संगे विशेष ऋण योजना सेहो इनका लेल चलायल जाइत अछि। जे आदमी पढ़ि लिख कऽ बेरोजगार छथि उनका लेल ऋण के सेहो उपलब्ध करायल जाइत अछि, जाहि के माध्यम से ओ स्वरोजगार कऽ कऽ अपन मजदूरी रोजगार
1: कऽ सकैत छथि। तऽ ओनाही अहाँ के जे गीतनाद अछि, तऽ गीतनाद छै से जीवन के सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करे, हाँ, तो किया लो हम सब एकटा गीत सुनी
0: सुनल जा।

0: दया करू, ई कुमकुम झा के गाल श्रोता लोकन के गीत सुनलियन।
1: देखियो दया करू शीघ्र हे काली, कथिल देर करे। वास्तव में जो मानव के होत धैर्यक एक सीमा होत तो हम माँ के ध्यान करे छी, हुनक साधना करे छी, तो हुनक आशीर्वाद निश्चित रूप से भेटैया। आ अइ लेल मनुष्य के धैर्य रखबा के चाही, बुझलहुँ कि हुनकर आशीर्वाद निश्चित रूप से भेटैत अछि। आ कहल गेल अछि कि जब प्रयास करो तो प्रयास करे वाला के कखनो हार नहि होइए, बुझलहुँ कि नहि। ओनाही अहाँके राष्ट्र के विकास में युवा वर्ग जे छथि।

0: ओ बदलावक मुख्य केंद्र
1: बिंदु
0: केंद्र बिंदु होइत छै। अपन असीम ऊर्जा, तकनीकी ज्ञान, नवाचार जकरा कहै छी, इनोवेशन के जरिए युवा लोकनि आर्थिक विकास के गति दैत छथि, सामाजिक बुराई के दूर करैत छथि आ देश के नव ऊंचाई पर लऽ जाइत छथि।
1: आ युवा वर्ग राष्ट्रीय विकास जना भेल, शिक्षा भऽ गेल, कौशल विकास भऽ गेल, नवाचार भऽ गेल, उद्यमता भऽ गेल, सामाजिक सहभागिता भऽ गेल, एहिके माध्यमसँ ओ लोकनि नव नव जे चीज छथि हुनका सिखबाके अवसर भेटै छनि। जेनाकि लऽ लिअ कौशल विकासमे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जे अछि ओ ज्ञान आ तकनीकी दक्षता प्राप्त करयवला जे युवा छथि हुनका लेल बड्ड बेसी आवश्यक अछि, किएकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जहन ग्रहण करै छी तखने अहाँके कोनो जे नव चीज, नव विचार होइत अछि ओ उत्पन्न होइत अछि आ ओकर समस्याके जखन हल खोजि लै छी तऽ उएह रोजगारके अवसर प्रदान करै छी।
0: देखियौ सत्तो भाई, अहाँके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा युवा लोकनिके आ मानवक विकास लेल बड़ आवश्यक बुझलहुँ। कहल गेल अछि कि अल्प विद्या भयंकरी, बुझलहुँ, जे कम विद्या अछि आ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहि यऽ तऽ ओ विद्या छै से जतेक अहाँके लाभ करत ओहिसँ बेसी हानियो कऽ सकैए। तऽ शिक्षा जे चाही ओ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाही आ एहि क्षेत्रमे अहाँके नवाचार बराबर होइत रहबाक चाही, अहाँके जकरा कहै छियै अनुसन्धान, अन्वेषण आ स्टार्टअपके शुरुआत युवा नव विचारक संग स्टार्टअप इंडिया पोर्टलके उपयोग कऽ नव व्यापार शुरू कऽ सकैत छथि, जाहिसँ रोजगारके अवसर उत्पन्न होइए। तकनीकी विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जेहन क्षेत्रमे डिजिटल तकनीक आओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसक उपयोगके समस्याके समाधान निकालल जा सकैए। आब शिक्षा भेल, कौशल विकास भेल,
1: संगे वैज्ञानिक अनुसंधान जे अछि, जेनाकि विज्ञान आ अंतरिक्ष क्षेत्रमे आगा बढ़ायब, युवा के आगा बढ़ायब, ई प्रधानमंत्री के मुख्य उद्देश्य छनि। तऽ ओहो के माध्यम सँ नव नव जे अनुसंधान भऽ रहल अछि ओहिमे युवा लोकनि आगा बढ़ैत, युवा लोकनि ओहि क्षेत्रमे नीक सँ नीक काज करैत, तऽ इनके लेल चलायल गेल अछि, जेना स्टार्टअपे अहाँ कहलियै, तऽ ई सब जे नव उद्यम करबाक एकटा नव साधन अछि, एहिके माध्यमसँ रोजगार सृजित भऽ रहल अछि आ स्टार्टअप सीख कऽ युवा लोकनि देश नहि विदेशोमे अपन स्टार्टअप शुरू कऽ रहल छथि
0: आ निरन्तर कौशल उन्नयन करैत रहबाक छै। अहाँके जे हुनर यऽ ओ हुनर दिनोदिन छै से मजेबाक चाही, हुनर के छै से अहाँके, हाँ हुनर, अहाँ हुनर विकसित हेबाक चाही आ विश्वमे निरन्तर सब जगह नवाचार भऽ रहल अछि आ अपना देशमे तऽ बहुत रास भऽ रहल यऽ, तऽ नव नव जे अनुसन्धान भऽ रहल यऽ, नव नव जे नवाचार भऽ रहल यऽ, अन्वेषण भऽ रहल यऽ, तऽ ओकरा बारेमे छै से जानकारी बराबर लैत रहबाक चाही आओर ओहि जानकारीके अपन काजमे ओकर उपयोग करू तऽ अहाँके काज छै से बहुत विकसित भऽ जाइए। तऽ कौशल भारत मिशन के तहत तकनीकी आओर व्यावसायिक कौशल सीख कऽ अपन उत्पादकता बढ़ा सकै छी आओर श्रम बाजारके माँगके अनुरूप खुदके अहाँ ढालि सकै छी, किया तऽ जे बाजारमे माँग अछि ओहि माँगके पूरा करै लेल अहाँके अपने आपमे बदलाव आनऽ पड़त, अपन उत्पादमे बदलाव आनऽ पड़त, बुझलहुँ कि नहि। डिजिटल आओर वित्तीय साक्षरता, युवा ग्रामीण आओर वंचित क्षेत्रमे डिजिटल आओर वित्तीय साक्षरताके बढ़ावा दऽ कऽ आर्थिक समावेशनमे योगदान कऽ सकै छै। आ देखियौ सबसँ पैघ जे होइए सतो भाइ, युवा लोकनिके सामाजिक उत्तरदायित्व जागरूकता, समाज हमरा विकासमे एतेक योगदान देलक हँ तऽ समाजोके प्रति तऽ हमर जिम्मेवारी होइ छै, अपना सबके तऽ वेदमे सब चीजके उल्लेख कऽ देल गेल हँ कि पितृ ऋण होइए, समाजक ऋण होइए, देव ऋण होइए, मातृ ऋण होइ छै, तऽ सामाजिक जे उत्तरदायित्व अछि ओहि लेल स्वयंसेवा आओर सामुदायिक कार्यमे युवा नेहरू युवा केंद्र संगठन जेन संगठनके माध्यमसँ स्वच्छता अभियान भेल, पर्यावरण संरक्षण भेल, आपदा प्रबंधनमे सक्रिय योगदान दऽ सकै छी, सामाजिक जे कुरीति यऽ जेना भेल दहेज प्रथा भेल, शिक्षा आओर प्रगतिशील विचारके बल पर युवा लिंग भेल। आब देखियौ जैसे शिक्षाके स्तर बढ़ि रहल यऽ, नव नव तकनीक आबि रहल यऽ, लेकिन लोकके जे मानसिकता छै ओहि मानसिकतामे निरन्तर हलास भऽ रहल छै। आब देशके कतेक राज्यमे देखबामे आबि रहल अछि कि जे बालिकाके संख्या घटि रहल छै, किया तऽ जे आधुनिक तकनीक अछि अल्ट्रासाउंड वगैरह ओकरा कऽ कऽ छै से अहाँ पहिलेसँ अहाँ देख लै छियै कि अहाँके बालिका भेल कि आ जँ बालिका भेल तऽ अपन नैतिकताके गिराकऽ अहाँ बालिकाके छै से ओकरा गर्वेमे ओकरा

0: गर्भपात करवा दै छै, भ्रूण हत्या करवा दै छै, तऽ बालिकाके संख्या दिनोदिन घटि रहल यऽ। तऽ एहन जे भऽ रहल यऽ, ई तऽ अहाँके चिंताक विषय छी, सामाजिक असंतुलन भऽ जायत। बालिका जे छै तऽ ओ समाजके छै से अहाँके एकटा सशक्त छै से, जेना साइकिलके दू गो सशक्त पहिया होइए, एकटा पहिया ओ छै, तऽ हुनक जे संख्या घट रहा, हुनक प्रति जे अपना सबके ई जे मानसिकतामे हलास भऽ रहल, ई बहुत दुखके गप अछि। आओर विशेष कऽ एहि देशमे जाहिठाम हमसब छै से अहाँके मातृ पूजा करै छी, नारी पूजा करै छी, आओर जैसे अहाँके देवी पूजा कऽ कऽ नवरात्र मनाबै छी, हँ, आ बालिकाके पूजन करै छी, ओहिठाम जे ई भऽ रहल यऽ, ई बहुत अहाँके गलत बात अछि, एहन नहि हेबाक चाही। बुझलहुँ कि नहि? शिक्षा आओर प्रगतिशील विचारके बल पर युवा लिंग भेद अशिक्षा आओर अंधविश्वास जेहन बुराईके मिटा सकै छै।
1: आ बालिका जे छथि ओ एहन कोनो क्षेत्र नहि, जाहि क्षेत्रमे ओ अवसर नहि प्राप्त कऽ रहल छथि, ओ सेनाके हुए, चाहे अहाँके विद्यालयमे नाम करबाके हुए, चाहे खेलमे हुए, चाहे नर्सके रूपमे, डॉक्टरके रूपमे, तऽ सब क्षेत्रमे ओ आगाँ बढ़ि रहल छै। तऽ एहनमे हमरा लोकनिके चाही ई जे भ्रूण हत्या अछि एकरा प्रति
0: एकदम रुकबाके चाही,
1: एकरा रुकबाके चाही।
0: अपन सबके वेद वाक्य अछि, जत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जाहिठाम नारीके पूजा होइए, आदर भेटैए, जाहिठाम सुरक्षा भेटैए, ओहिठाम अहाँके देवताके समृद्धिके सुख शान्तिके वास होइए।
1: लेकिन
0: आओर देखियौ, अपना सबके लेल गौरवके विषय अछि कि दरभंगे जिलामे अहाँके एकटा छै से प्रतिभावान बालिका छलै अहाँके भावना कंठ, जे एखन भारतीय वायुसेनामे छथि आ विश्वके सबसँ नवीनतम जे फाइटर प्लेन अछि राफेलके ओ उड़ा रहल छै। बुझलहुँ कि नहि? तऽ ई सब तऽ प्रेरणाके विषय अछि कि अहाँके भावना कंठसँ हमर सबके क्षेत्रके बालिका प्रेरणा लऽ सकै छथि, अभिभावक प्रेरणा लऽ सकै छथि कि बालिका आब कोनो एहन क्षेत्र नहि यऽ जाहि क्षेत्रमे ओ नाम नहि कऽ रहल छथि आ सबसँ अगुआयल छथि। देखियौ, अहाँके जतेक रिजल्ट निकलैए, चाहे CBSE बोर्डके या आन बोर्डके, ओहिमे बालिका जे अहाँके लड़कासँ बेसी आगू रही,
1: हँ,
0: तखन आ तखन ई भेदभाव ई छै से अहाँके उचित नहि ठीक, अपन मानसिकतामे सुधार करबाक चाही। आओर बालिकाके प्रति जे हमर सबके वेद वाक्य अछि, जत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, तऽ ओहि वेद वाक्यके व्यवहारमे अमलमे आनी।
1: आ बालक बालिकामे कोनो अन्तरो नहि अछि, समाजमे हमरा लोकनि देख रहल छी, आब पढ़ाइके माध्यमसँ सब आदमी पढ़ि लिख रहल छथि, सब आदमी आगाँ पढ़ि रहल छथि, तऽ आब पहिलेसँ बदलाव भेल हँ, लेकिन आरो बदलाव करबाक।
0: देखियौ, बालक आओर बालिका जे छै एक दोसरके पूरक, एकटा नारायण छै, दोसर लक्ष्मी छै। अहाँ देखै छी ने, शिवके अर्धनारीश्वरके स्वरूप, आधा जे हुनकर स्वरूप छनि ओ नारीके छनि, आधा छनि से पुरुषके छनि। तऽ शिव आओर शक्ति जे अछि ओ तऽ एक दोसरमे समाहित अछि, एक दोसरक लेल अछि, आ दुनू एक दोसरक पूरक अछि, एक दोसरके बिना दुनू अधूरा अछि। तऽ छै से अहाँके बालिकाके शिक्षा पर, हुनक विकास पर जोर देबाक चाही। आ बालिकाके विकास जे अछि, एकटा बालिका जँ शिक्षित होइए तऽ बुझि लिअ कि पूरा परिवार शिक्षित होइए, किया तऽ वएह माय बनैए। आ जँ माय शिक्षित अछि तऽ ओकर बालक जे अछि, धियापुता, ओ जरूर अहाँके शिक्षित हैत, संस्कारी हैत। आगू हमसब गपशप करब, मुदा ओहिसँ पहिने किछु गीतनाथ सुनि लेल जाए,
1: श्रोता लोकनिके सुना दिए।

0: महल पर कागा जागा है रे, इस शारदा सिन्हा के स्वर में बड़ नीक झूमर सुने छलो हम, हम तो देखलो सतो भाई के झूमर पर एकदम झूम रहल छलो, वास्तव में जतेक स्वर छल मधुर उतबे गीत का छे से अहाँ के शब्द और भाव मधुर छ। आ देखियो सतो भाई एखन बरखा भ रहल या झमाझम, हाँ दू चार दिन से, आ एखन उम्मीद है कि आगो अहाँ के वर्षा हैत, तो बरखा के मौसम में स्वस्थ रहनाइ एक कठिन काज है, तो अहले स्वस्थ रह आवश्यक है कि दूषित जल जे आ वो नहीं पीबी और मच्छर से बचाव सबसे बेसी जरूरी है।
1: हाँ।
0: देखियो एखन अहाँ के जल के उबाल के बोलो आ फिर सुसुम कह लिय आ तखन पीबू, घर के लग पास में जल जमा नहीं होब दियो, बाहर का खाना से एकदम परहेज करो, आ घरों में जो बनाबू उसमें तेल मसाला कम से कम दियो, है ना, आ भिगला का अगर जल अहाँ के बरखा में भीज जाए छी तो तुरंत तौलिया से मुँह कान पोछ ली, देह ते पोछ ली, माथा पोछ ली, हाँ सुखा ली।
1: आ सर्दी बुखार यदि भ जाए तो अहाँ के घरेलू बहुत रास एहन उपचार है जाय के माध्यम से, जना तुलसी पत्ता भ गेल, बाक्सक पात भ गेल,
0: आदि भ गेल,
1: सिंघारा के पात भ गेल, तो ई सब के पहिने उपयोग करवा के चाही, आ जखन बेसी कठिनाई में दिखाई पड़े तखने अहाँ के जे चिकित्सक छथि उनका से सलाह लकर दवाई खेबा।

0: देखियौ, सबसँ पहिने तऽ छै कि अहाँके अपन स्वास्थ्यके लेल आहार विहार ठीक करी। हँ, किएक तऽ जे डॉक्टरके पास जे जायब तऽ दवाइ खायब, अंग्रेजी दवाइ, ओ 10 तरहके जे रासायनिक दुष्प्रभाव छोड़त। ओहिसँ बढ़िआँ अछि कि अपने एहन खान पान राखी, एहन व्यवस्था राखी कि स्वस्थ रही।
1: हँ,
0: तऽ एकदम टटका भोजन करी, बुझलहुँ, सड़क किनारे जे खुलल खाद्य पदार्थ अछि या कटल फल नहि खाए, किएक तऽ एहिपर माछी द्वारा संक्रमण पसरैके खतरा रहैए।
1: हँ,
0: गरम जल पीबी, कहबे कयलहुँ उबालि कऽ जल पीबू। हँ, तुलसी पातके आओर आदिके बेसीसँ बेसी सेवन करी, किएक तऽ तुलसी पात आदि जे यए ओ संक्रमणके रोकैए,
1: बुझलहुँ।
0: अच्छा, देहमे गर्मी दैए छै तऽ चायमे आदि मिला दियौ, तुलसी पात मिला दियौ। आ जल जनित जे रोग अछि जेना हैजाड, टाइफाइड सब बचैके लेल कहबे कयलहुँ कि अहाँके उबलल जल या वाटर प्यूरिफायरके जल पीबी।
1: आ यात्रा,
0: आ जँ यात्रा करै छी तऽ अपन अहाँके बोतलमे अपन जल राखी।
1: संगे सूतक कालमे मच्छरदानीके उपयोग अवश्य करबाक चाही,
0: निश्चित रूपसँ करबाक चाही।
1: नालामे अहाँके देखबै बेसी मच्छर पनपैत अछि तऽ पानि घरके आसपास जमा नहि हुअ दी। आ यदि मच्छर बेसी पनपैत अछि तऽ अहाँके मटिया तेल जे छै ओकर छिड़काव करबाक चाही,
0: करबाक चाही निश्चित रूपसँ। आ भिजे पर सावधानी, जँ बारिशमे भिज गेलहुँ हँ तऽ घर पहुँचते अहाँके तुरंत साफ जैसे जे कपड़ा अछि ओहिसँ माथा पोछि ली, देह पोछि ली, अपन शरीरके तौलियासँ नीक जेना सुखा ली। आ गीला कपड़ामे बेसी देर नहि रही। आ अपन डाइटमे, भोजनमे, आहारमे विटामिन सी जे जाहिमे अहाँके नेम्बू भेल, संतरा भेल, सब भरपूर खाद्य पदार्थ, किन्तु विटामिन सी जे होइए ओहिमे पर्याप्त मात्रामे रोग प्रतिरोधक क्षमता होइए।
1: आ
0: हरियर तीमन तरकारी, आ कहबे कयलहुँ कि आदि तुलसीके चायमे शामिल करी,
1: संगे दूध दही छाछ एकर सबके बेसी उपयोग कऽ सकै छी,
0: कऽ सकै छी। तऽ देखियौ कि अहिके संगे जे अछि अहाँके गाम घरके समय सम्पन्न भऽ रहल यऽ। आब हमसब खेती पथारीके कार्यक्रम, खेती गृहस्थी दिस चली। तऽ खेती गृहस्थी कार्यक्रममे किसान भाई लोकनिके हार्दिक स्वागत अछि,
1: बहुत बहुत हमरो दिससँ स्वागत छनि।
0: आ
1: संगे देखू गोपी भाई, जे बारहो मास किसान भाई कोनो ने कोनो खेतीमे लगले
0: रहैत
1: छै, अखन धानके रोपाई चलि रहल अछि, संगे तरकारी तीमनके नर्सरी हमरा लोकनि तैयार कऽ रहल छी, आरो अहाँके भऽ गेल तरकारी तीमनके अलावा औषधीय पौध सब लगा रहल छी।
0: हाँ,
1: तऽ बारहो मास कोनो ने कोनो खेती लगले रहै,
0: लगले रही। हाँ,
1: आवश्यकता ई बातके अछि जे हमरा लोकनिके कोन समयमे कोन चीजके खेती करी जाहिसँ बेसी मुनाफा हुए, ओहिपर विशेष ध्यान रखबाक चाही।
0: हाँ, किएक तऽ देखियौ एखन अर्थ प्रधान युग अछि ने, अर्थ प्रधान युगमे अहाँ अर्थके छोड़ि कऽ कोनो काज नहि कऽ सकै
1: छी,
0: तऽ अर्थक उपार्जन बेसीसँ बेसी हुए एहि लेल आवश्यक अछि कि खेतीमे जे नव नव नवाचार भऽ रहल यऽ ओहि नवाचारके उपयोग करी, अगता जे प्रभेद अछि ओकर खेती करी, पहिनेसँ एकदम तैयार रही,
1: खेतके तैयार कऽ कऽ,
0: हँ, तैयार कऽ कऽ रखबाक चाही। तऽ अगता जे फूलकोबी यऽ ओकर अहाँके देखबे करै छी बाजार माँग कतेक जबरदस्त यऽ। हँ, तीमन तरकारीके राजा मानल जाइए फूलकोबी, आओर गर्मीमे परवल आ जाड़मे छै से कोबी, लेकिन आब तऽ बारहो मास कोबी होइए। हँ, एहन एहन प्रभेद निकलि गेल हँ सत्तो भाइ।
1: आ कृषि वैज्ञानिक लोकनि लगलो छथि जे नव नव जे अनुसन्धान भऽ रहल अछि कृषिके क्षेत्रमे, तऽ ओ लोकनि किसान भाइ धरि पहुँचनि, ओ लोकनि सीखैत एहि चीजके आ नव नव खेती करै।
0: आ एहि लेल अहाँके समय समय पर कृषि विश्वविद्यालय पूसा जी यऽ, ओ अहाँके बहुत रास जगह पर जे छै प्रशिक्षण केंद्र लगाबैए, आ ओहिठाम हाँ वैज्ञानिक छै से सम्मेलन होइए कृषि वैज्ञानिक सबके, आ ओहिठाम जाकर जे अहाँके कोनो समस्या अछि तो ओहि समस्याके निदान ओहिठाम जाकर अहाँ लऽ सकै छी। आ देखियौ ओकर सफल खेतीके लेल मई जूनमे नर्सरी तैयार करू, आओर जून जुलाईमे सत्तो भाई रोपाइ करी, आ एकर जे उन्नत बीया अछि पूसा कतकी अरली कुआरीके प्रयोग करी, आ उचित जल निकासी वाला जे बलुई दोमट माटिमे यऽ ओहिमे 45 सेंटीमीटर के दूरी पर रोपाई करी, आ ऐसे 60-70 दिन में फसल की होइए
1: तैयार
0: भऽ जाइए।
1: संगे माटि के चुनाव में नीक जल निकासी वाला जे बलुई दोमट माटि होइत अछि जाहिमे उपजाउ अहाँ के बेसी होइत अछि उपजा, तो दोमट माटि के जकर पीएच मान 6-7 हुए ओहन खेत के चुनाव कऽ कऽ तकर बाद अहाँ के कोबी के खेती करबाक चाही।
0: आ एकर जे उन्नत किस्म अछि पूसा कतकी जुलाई में रोपे के लेल बेहतरीन किस्म अछि, आ फूल 60-70 दिन में तैयार भऽ जाइए। अरली कुवारी अछि ई मई जून में रोपाई के लेल उपयुक्त अछि, आ पूसा दीपाली यऽ इहो अगता किस्म जे सितंबर अक्टूबर में
1: तैयार
0: नीक उपजा दैए। आ खेतक तैयारी में दू तीन बेर एकरा नीक से जोताई।

0: माटिके एकदम भुरभुरा बना
1: भुरभुरा बनाकर एक पंक्ति में रोपबाके चाही,
0: एक पंक्ति में रोपबाके चाही,
1: दूरी बनाकर गाछ के
0: दूरी बनाकर राखी 45x45 सेंटीमीटर है ना। आ प्रति एकड़ खेत में 400 से 500 टन सरल गोबरक खाद मिलाबी बुझलहुँ।
1: अगेती किस्म
0: आ जल निकासी के उत्तम व्यवस्था रखियो, किया तो बरसात के जल रुके से फसल खराब हो सके। अब बाव का समय जो तरीका ये बताबियो की सब करबे।
1: बीज के मात्रा में अगेती किस्म के लेल 600 से 700 ग्राम बिया प्रति हेक्टेयर उपयोग करबा के चाहिए, संगे 80 से 100 ग्राम बीज के प्रति एकड़ पर्याप्त होते।
0: अच्छा अच्छा, बिया दर्ज रखिए अगता खेती के लिए 400 से 500 ग्राम बिया प्रति एकड़ पर्याप्त है। आ नर्सरी में बिया का क्यारी में बौ करी कहबे के लिए, आ 3 से 4 सप्ताह में गाछ 10 से 15 सेंटीमीटर जखन उचगर भ जाइए तखन रोपे के लिए तैयार करी। आ रोपाई जो राखी 45 से 45 सेंटीमीटर और गाछ से गाछक दूरी 45 सेंटीमीटर।
1: आ संगे साँझ के समय में एकर रोपाई करब निक मानल जाते
0: हैं।
1: साँझ के समय में किसान भाई के रोपबा के चाही। खाद उर्वरक में खेत के तैयारी के समय में अहाँ के पर्याप्त मात्रा में जो सरल गोबर के खाद होते हैं चाहे बर्मी कंपोस्ट, एकर उपयोग करवा के चाहिए खेत में।
0: आ रोपाई के समय बेसल डोज के माने ओकर जो आधारभूत जो ओकर जो खुराक या ओय में नाइट्रोजन फास्फोरस आ पोटास माटि के जाँच के अनुसार पहले माटि के जाँच करा ली ओकर बाद दी। अब फूल बने के समय में यूरिया का छिड़काव लगभग 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के दर से करी। अब पटौनी के संग एकरा देने बेसी लाभदायक हुई।
1: संगे आवश्यकता अनुसार हल्लुक पटौनी करवा के चाहे किसान भाई के। आ खेत में पानी बिल्कुल नहीं रह दी। आ फंगस आ कीट से बचाव के लिए बीज व पौध के कार्बेंडाजिम या बेविस्टीन जो दवाई होते हैं से उपचारित केला के बाद तकर बाद एकर बुआई चाहे रोपाई
0: करवा के चाहे। कमौनी समय समय पर करित रही, खेत का साफ राखी खरपात से बोलो। आ कीट और रोग नियंत्रण में डायमंड बैक मॉथ जो है ये अगता कोबी का मुख्य कीट है, एकरा से बचाव लेल नीम के तेल का छिड़काव करू या कृषि विशेषज्ञ के सलाह पर उपयुक्त कीटनाशक का प्रयोग करियो। एना नीम का जो तेल है तो सबसे निक है, क्योंकि अगर अहाँ का कोनो रासायनिक दुष्प्रभाव नहीं छे। आ नर्सरी में इस समस्या बेसी हुई है आद्र गलन का, ऐसे बचवा के लिए बिया के बाव से पहने कार्बिन डांजीब या थैरम से उपचारित कर दी। आ जखन फल फूल जो अहाँ का ठोसगर और उचित आकार के भ जाए तखन ओकर कटाई
1: कर।
0: आ फूल का पात सहित काट लेबा के चाहिए ताकि वो मंडी तक सुरक्षित पहुँच सके। आगता किस्म से प्रति एकड़ लगभग 80 से 100 क्विंटल तक का उपज आसानी से प्राप्त भ जाए। आ बुझ लियो 80 से 100 क्विंटल जे अहाँ का अगता फूल कोबी है ओकरा जे बाजार में बेचबे तो कते पैसा कमेबे। हाँ आ एकदम कैचा आयत धराधर एकदम मन एकदम गदगद रहत, आ मन गदगद रहत तो गीत नाद फुरात।
1: हाँ
0: तो किया नहीं एकटा गीत हम सब सुन ली
1: सुना जा।

0: हाँ एखन हमसब अरविंद कुमार झा के स्वर में ये गीत सुने छलहुँ फसिल गीत हम छी किसान हमर परतर करत के वास्तव में किसान भाई लोकन जे होइत छथि ओ समाजक अन्नदाता होइत छथि आ हुनक जे ऋण या ओ हमसब उतार नहीं सकै छी किया तऽ आइ जे पेट भरैया तो हुनके मेहनत से और हुनके समर्पण से आ देखियो सतो भाई मौसम पूर्वानुमान जे अछि अहाँके खेती बाड़ी के काज का आसान बना दै छै
1: आ हमरा लोकन आसानी से पता क लै छी जे मौसम केहन रह वाला अछि ओहि के अनुरूप खेती
0: करै छी ओहि के अनुरूप तैयारी करै छी तो मौसम पूर्वानुमान के जानकारी किसान भाई लोकन के द दियन ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर और भारत मौसम विज्ञान विभाग दिस से जारी 22 जुलाई से 26 जुलाई 2026 धरि मौसम पूर्वानुमानक अनुसार पूर्वानुमान अवधि में उत्तर बिहार के अधिकांश जिला में नीक वर्षा हेबाक संभावना नहीं अछि परंतु 23 जुलाई के आसपास गोपालगंज मधुबनी सीतामढ़ी सिवान पूर्वी आ पश्चिमी चंपारण जिला के किछ स्थान पर हलुक से मध्यम वर्षा हेबाक संभावना अछि पूर्वानुमान अवधि में आन जिला में बिजली चमकने आ तेज हवा के संग संग कतौ कतौ हलुक वर्षा होय के संभावना से होय एहि दौरान तापमान में गर्मी से कनी मनी राहत भेटत ज्यादातर स्थान में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना
1: असमसामयिक सुझाव में किसान भाई के कहल गेल अछि जे तिल जाहि उचास जमीन पर धान के खेती संभव नहीं हुआ ओहि सप्ताह के भीतर तिल के बुआई किसान भाई करत बुआई से पूर्व अहाँ के बिया के थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बिया के दर से उपचारित करत आ एकरा लेल जे उन्नतशील प्रभेद अछि ओ अछि अहाँके कृष्णा कालिका काके सफेद आ प्रगति MT75 किस्म के अहाँके अनुशंसित अछि एकरा चयन कऽ कऽ एकर बुआई करत आ बुआई 30 × 10 × 15 सेंटीमीटर के दूरी राखत संगे प्रति हेक्टेयर 60 क्विंटल गोबर के खाद 40 किलोग्राम नाइट्रोजन 20 किलोग्राम फास्फोरस आ 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करे
0: आ राहर के जे खेती करब दलहन का तो नीक जल निकासी वाला उचास जमीन में खरीफ राहर का बाव करी आ जाता संभव हुआ मेड या रीज पर बाव करी बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 राजेंद्र अरहर 2 किस्मक चयन करी प्रति हेक्टेयर 18 से 20 किलोग्राम बिया का उपयोग करी।

0: आप 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास आ 20 किलोग्राम सल्फर आधार खाद के रूप में दी। आ बहुत से पहले बिया का कार्बन डांजिम, क्लोरपेरीफॉस आ रेजुबियम कल्चर से उपचारित कर दी। उन्हें ये चाहे मिर्चाई का
1: मिर्चाई में उच्च क्यारी में अहाँ के मिर्चाई के नर्सरी के बुआई करे किसान भाई। अब बुआई से पूर्व बिया के थीरम 75% डस्ट से उपचारित करवा के चाहिए किसान भाई के। संगे अहाँ के अनुशंसित किस्म के चयन क के समान किस्म के लेल अहाँ के 800 से 1000 ग्राम, अहाँ के संकर किस्म के लेल अहाँ के 250 से 300 ग्राम बिया राखत। संगे प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करें। प्रति हेक्टेयर 25 से 30 टन सरल गोबर के खाद आ 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, संगे 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से किसान भाई एक लेल प्रयोग करे।
0: आ किशोर का जो खेती हुआ वो देखबे कर छी किशोर कते जबरदस्त बाजार मांगिया आ कते लाभदायक के शरीर ले आ स्वादो कर अपूर्व होइ
1: छै।
0: त एकर लेल अहाँ के नीक जल निकासी वाला उचास जमीन में एकर बाव करी। बाव के लेल राजेंद्र मिश्री कंद एक, राजेंद्र मिश्री कंद दू किस्मक चयन करी आ प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम बिया 30x30 सेंटीमीटर दूरी माने 30 सेंटीमीटर भेल गाछ से गाछ आ 30 सेंटीमीटर पाती से पाती आ 200 क्विंटल गोबरक खाद तथा 80 अहाँ का क्विंटल नाइट्रोजन, 80 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस आ 80 किलोग्राम पोटास उर्वरक का उपयोग करी। नाइट्रोजन का आधा मात्रा, फास्फोरस पोटास का संपूर्ण मात्रा बौ के समय आ शेष आधा मात्रा 40 से 45 दिन का बौ केला के बाद करी।
1: संगे प्याज के 25 से 35 दिन पुरान नर्सरी भग हुआ तो निराई गोड़ाई एवं खटपतवार के नियंत्रण करवा के चाहिए। आ बेसी वर्षा एवं तेज धूप से बचाव के लेल अहाँ के क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट के ऊंचाई पर शेड या नेट लगेबा के चाहिए किसान भाई के।
0: अब मशरूम के खेती में जुलाई मास के भीतर श्वेत दुधिया मशरूम का बाव निक जना करी। ऑयस्टर मशरूम उत्पादन के लिए झोपड़ी उत्पादन कक्ष का मरम्मत और साफ सफाई करी और गुणवत्ता युक्त स्पॉन विश्वसनीय प्रयोगशाला से प्राप्त करी। तो ये सब जो गप का ध्यान में रखो तो नीक छे से जना खेती बाड़ी हैत आ जखन नीक खेती बाड़ी हैत तो मन एकदम प्रसन्न रह आ तखन गीतनाथ सुने का मन करो। तो क्या नहीं हम सब एक गीतनाथ सुनी
1: सुनल जाए।

0: खेले के दिन में बीतले नैहरवा, वास्तव में नैहर के जो याद हुई है वो अहाँक महिला लोकन के बराबर आबित रही है। हाँ, क्या नैहर में खेलने कूदने माय बाप को प्यार, काका काकी के प्यार, दादा दादी के प्यार, तो वो तो अहाँ के बराबर याद आबते रहते। आ देखियो अपने सब खेती बाड़ी तो करबे करे छी सतो भाई, संगे संग माल जाल के पोषण सेहो अधोकाल से करैत आबि रहल छी। तो माल जाल के पोषण अहाँ के नीक जना हुए बरसात के मौसम आ गाय महीस के बीमारी से कोना बचाबी, एहि लेल ध्यान दी कि हुनकर सेट के सूखा और हवादार बना के राखी।
1: संगे अहाँके पेयजल जरा पानी पियाबै छै माल जाल के,
0: हाँ,
1: वो अहाँ के बढ़िया स्वच्छ रहबा के चाही। आ संगे बाहरी परजीवी से बचाव के लेल, बीमारी से बचाव के लेल टीकाकरण जे बरसात के समय में होते है माल जाल के, वो अवश्य करा देबा के चाही।
0: आ जल जमाव बथान पर नहीं है माल जाल के बारिश में माँ के बरखा में भीजे से बचाबी। आ हरियर चारा साफ कह के खुआबी। आ थनैला रोग से बचाव के लेल थन के सफाई पर विशेष ध्यान दी। बोलो
1: आ संगे सूखा फर्श रखवा के चाहे, जतब पशु बैठत है वो जगह के हमेशा सूखा राखी। आ खुर पक्का मुँह पक्का जो रोग होते है वो बरसात के समय में होते है, तो ऐसे बचेबा के लिए टीकाकरण माल जाल के अवश्य।
0: अच्छा, जैठा अहाँ का माल जाल बैसे वो सेट का छे से अहाँ के कनी ऊपर उठल हेबाक चाहिए, क्या तो अहाँ का ऊपर जल जमाव नहीं है, पानी आसानी से बह जाए। आ फर्श का कीचड़ और फिसलन से बचावे के लिए पुआल भेल, सूखल घास भेल या भूसा के बिछावन के उपयोग करी। एकरा नियमित रूप से बदलते रही। आ मच्छर और माछी से बचाव के लिए बारिश में कीड़ा मकोड़ा बहुत हो जाए सेड में नीमक पात का धुआं करते रही। आ पशुपालन विभाग द्वारा जो अनुशंसित सुरक्षित दवाई है ओकर छिड़काव करते रहे।
1: संगे संतुलित आहार में जना चारा में तो नमक जरूर ओकरा मिला के देबा के चाहिए। संगे मिनरल मिक्सचर जो होते है वो पशु के देबा के चाहिए।
0: आ फंगस से बचाव के लिए चारा के नमी और बरखा से बचाबी। आ सरल या फंगस लागल जो चारा है बिल्कुल नहीं खुआबी। आ माल जाल के एकदम टटका साफ जल पिए ले दी, क्या तो गंदा जल पीला से डायरिया या आन संक्रमण बीमारी भ सकी।
1: संगे टीकाकरण में बरसात में अहाँ के बहुत रास रोग होते है जना के लंगरा, घरकुट, गलघोटू, लंगरा बुखार, ई सब के टीकाकरण अवश्य करा देवा के चाहिए।
0: अब मिनरल मिक्सचर ए मौसम में माल जाल के पाचन शक्ति कमजोर भ जाए, एहि लेल हुनक आहार में पशु चिकित्सा विशेषज्ञ सलाह से उचित मात्रा में मिनरल मिक्सचर

0: आओर अहाँके नून शामिल करी तऽ ईसब जे काज करब तऽ मालजाल एकदम स्वस्थ रहत हँ आओर छै से नीक जेना दूध देत। तऽ एहिके सङ्गे छै से आजुक जे खेती गृहस्थी कार्यक्रमके समय अछि ओ सम्पन्न हेबाक अछि। तऽ खेती गृहस्थी कार्यक्रमसँ किसान भाइसँ हमसब आज्ञा ली।
1: नमस्कार गोपी भाई।
0: नमस्कार सत्तो भाई।

यथ खेती गृहस्थी प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: प्रादेशिक समाचार कृपया प्रतीक्षा करें।
1: अरे मेरा वोटर आई कार्ड घर पर रह गया, अब क्या मैं मतदान नहीं कर पाऊंगा?
2: क्यों नहीं, पहचान के और भी कई मान्य विकल्प है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, एमपीआर स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, एमएलसी की आधिकारिक पहचान पत्र, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा यूडीआईडी कार्ड दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।
1: मतलब वोट जरूर दे सकता हूँ?
3: बिल्कुल, पहचान पत्र की वजह से आपका वोट नहीं छूटना चाहिए।
4: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में मतदान तिथि है 30 जुलाई 2026। मतदान के दिन मान्य पहचान दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
5: कोई मतदाता ना छूटे।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
8: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
7: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का किया आह्वान। नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, गरीबों पर टैक्स लगाने का राज्य सरकार का कोई इरादा नहीं, विपक्ष भ्रम न फैलाए। विधानसभा में आज बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 समेत 7 महत्वपूर्ण विधेयक पारित। और मौसम विभाग ने भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि गरीबों पर टैक्स लगाए जाने की बात पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में आज इस संबंध में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि गरीबों पर टैक्स लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम न फैलाए।
2: गरीबों के ऊपर टैक्स लगने वाला ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है। सरकार ने एक नियम बनाया, इसके आधार पर रूल्स में कई चीजों का बदलाव करेंगे, लेकिन जो ये उन्होंने चर्चा किया कि पूरी तरह गरीबों के ऊपर टैक्स लगाने की बात है, पूरी तरह निराधार है।
0: मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने राज्य में बंद चीनी मिलों को लेकर भी स्पष्ट घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इन्हें पुनः चालू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। श्री चौधरी ने कहा कि गोपालगंज, सकरी और रैयाम चीनी मिल जल्द शुरू की जाएगी।
2: बंद चीनी मिलों में कई जगह पर, चाहे वो गोपालगंज में हो, सकरी हो और रैयाम, ये तीन जगह पर हम लोग अभी ये व्यवस्था कर रहे हैं कि आईपीएल जो भारत सरकार की संस्था है उसके साथ हम लोग एमओयू करने जा रहे हैं। तीन नए जगह पर हम लोग तुरंत चीनी मिल प्रस्तावित करके शुरू करने जा रहे हैं।
0: बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे और टोका टोकी के बीच सुचारू रूप से चली। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विधानसभा में राजद के गौतम कृष्ण के एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षक स्थानांतरण नीति लाई है, इसके तहत प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्री तिवारी ने कहा कि TRE-4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द ही अधियाचना भेज दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज विधानसभा में 7 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों में बिहार जुआ प्रतिषेध

0: विधेयक, बिहार माल सेवा कर संशोधन विधेयक, बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक, बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक, बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक और बिहार कृषि भूमि विधेयक 2026 शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा है कि दूसरे राज्यों के चिकित्सकों को बिहार में प्रैक्टिस करने के लिए अब अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्व प्रमाणन पत्र के आधार पर उनका राज्य में निबंधन किया जाएगा।
1: कोई भी चिकित्सक जिसका रजिस्ट्रेशन पहले किसी और राज्य में था या फिर केंद्र में है, वो आकर बिहार में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो पहले करनी पड़ती थी। अब सिर्फ वो स्व प्रमाणन पत्र देंगे तो उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
0: गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा है कि बिहार चीनी उपक्रम संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में पारित होने से राज्य में गन्ना उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
2: इस विधेयक के तहत रोजगार का सृजन होगा, गन्ना उत्पादन की वृद्धि में काफी नीति काम करेगी। जो मॉडल कॉम्प्लेक्स हम लोग लाए निवेशकों को लाने के लिए, उस पर सरकार काम करेगी।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज जीविका के अंतर्गत चयनित 2446 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह के दौरान श्री चौधरी ने नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने के संकल्प को लेकर कार्य कर रही है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी उपस्थित थे। राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज संसद की कार्यवाही में भाग लिया। श्री कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद पहली बार सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पांचवी सक्षमता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन SM ने परिणाम जारी करते हुए बताया कि 5 जून को आयोजित परीक्षा में सभी श्रेणी के 30% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस परीक्षा में 14,512 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें 4,353 शिक्षक सफल हुए हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम आवेदन संख्या की मदद से बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा में सफल शिक्षकों की आगे

0: काउंसिलिंग की जाएगी। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, अरवल, शेखपुरा, बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर बारिश के दौरान वज्रपात की आशंका है।
1: दिनांक 22 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात एवं तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार जिले के मनिहारी में सबसे अधिक 109 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश के बीच राज्य के अलग अलग स्थानों पर वज्रपात की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर जिले में 4 जबकि सीवान जिले में 2 लोगों की मौत हो गई। इधर हमारे मुंगेर संवाददाता ने बताया कि जिले के असरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी कोरियन गांव में वज्रपात की चपेट में आने से आज एक युवक की मौत हो गई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश के विभिन्न भागों में भारी बारिश के कारण गंडक, कोसी, बागमती और कमला बलान समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न जिलों में निचले इलाकों में पानी फैल जाने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे गोपालगंज संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पानी का बहाव अभी सामान्य बना हुआ है। जिले में सभी बांध और छरकी सुरक्षित हैं। इधर जिलाधिकारी समीर सौरभ ने विभागीय अधिकारियों के साथ बांधों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता साजिद इकबाल ने बताया कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है, फिलहाल कोई खतरा नहीं है।
2: अभी हम लोगों का जितना भी तटबंध, सारण तटबंध जो है 80 से 152 और उसके बीच जितना संलग्न छरकी है सब सुरक्षित है। इस स्थल में कटाव निरोधक कार्य बार जो कराया गया है परकोपाइन से डिपो छरकी से लेकर महारानी छरकी तक, और आज यहाँ जो है बहुत अच्छा कारगर रहा है।
0: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने आज दानापुर छावनी स्थित चर्च परिसर में सिंदूर का पौधा लगाकर ऑपरेशन सिंदूर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। श्री हसनैन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आयोजित यह अभियान हमारे वीर सैनिकों के साहस, बलिदान और उनकी राष्ट्र की सुरक्षा के संकल्प को सम्मान का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज पटना में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर के खिलाफ फर्जी सोशल मीडिया नेटवर्क चलाने और पैसों के बल पर चुनाव प्रभावित करने की शिकायत की है। पटना के दानापुर स्थित 4 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। दानापुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि ईमेल के माध्यम से धमकी मिलने की सूचना के बाद इन स्कूलों में जांच की गई, कहीं कोई विस्फोटक अथवा ज्वलनशील पदार्थ नहीं पाया गया है। प्रदेश के विभिन्न पंचायतों में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गईं और कई आवेदनों का ऑन स्पॉट निपटारा किया गया। रोहतास के 66 पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान दाखिल खारिज, राशन कार्ड, शौचालय, महिला सुरक्षा समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा किया गया। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार दावत प्रखंड के जमसोना पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल हुए। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज साइबर सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत सर्वा माध्यमिक विद्यालय में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान छात्रों को साइबर अपराध से बचाव और सुरक्षा के टिप्स दिए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 26 जुलाई को पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिलाधिकारी तरनजोत सिंह और अन्य अधिकारियों ने प्रस्तावित सभास्थल नदी घाटी योजना उच्चतर विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। बेगूसराय के सिमरिया धाम में 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 इलेक्ट्रिक और लकड़ी के शवदाह गृह का निर्माण किया गया है। इन शवदाह गृहों को नगर परिषद प्रशासन को सौंप दिया गया। दरभंगा के विभिन्न शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों में आज सीपीआर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों को हृदयघात की स्थिति में तत्काल सीपीआर सहायता देने की तकनीकी जानकारी दी गई। सारण जिला मुख्यालय छपरा में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के सफल संचालन के लिए चार्ज

0: अधिकारियों और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कल से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 दिनों का होगा। रोहतास जिले के विक्रमगंज स्थित मंडल कारा में कैदियों के लिए 4 दिवसीय वर्मी खाद उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, गरीबों पर टैक्स लगाने का राज्य सरकार का कोई इरादा नहीं, विपक्ष भ्रम न फैलाए। विधानसभा में आज बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 समेत 7 महत्वपूर्ण विधेयक पारित। और मौसम विभाग ने भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में आज तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जी नमस्कार, मैं सम्राट चौधरी बोल रहा हूँ। राज्य में अग्निकांडों से होने वाली जान माल की क्षति अत्यंत दुखद और अपूर्णीय है। यदि हम सभी सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियों का पालन करें तो इन घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। बिहार अग्निशमन सेवा जनहित में निरंतर जन जागरूकता अभियान के माध्यम से आप सभी के अग्नि सुरक्षा एवं निवारण के प्रति जागरूक कर रही है। यह सेवा राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा किया जा रहा सुझाव का पालन करें। आपकी सजगता और सहयोग से हम राज्य में अग्निकांडों को रोक सकते हैं और जान माल की क्षति को न्यूनतम कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित बिहार का निर्माण करें। जय बिहार।
2: अरे वाह, यहाँ ठंडा पानी है
3: और देखिए साफ सुथरा शौचालय भी।
2: मेरे लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। वाह,
4: दिशा सूचक इतने स्पष्ट हैं कि केंद्र ढूंढना बिल्कुल आसान हो गया। हेल्प डेस्क पर हर जानकारी तुरंत मिल रही है।
5: वाह, मोबाइल रखने की व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, शाम तक रोशनी की सुविधा, सब कुछ है।
6: और ये पोल वॉलंटियर्स कितना सहयोग कर रहे हैं।
4: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में आपका मतदान अनुभव होगा सुगम, सहज और सुरक्षित। मतदान केंद्रों पर भूतल पर मतदान केंद्र, ठंडी पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्पष्ट संकेतक, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, प्रकाश व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पूल वॉलंटियर्स और मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 30 जुलाई 2026 को घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
7: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
8: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्णिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता होमी चंदन।
9: पूर्णिया जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी 14 प्रखंड मुख्यालयों और नगर निगम क्षेत्र स्थित उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के DCR भवन में विशेष शिविर लगाए गए। शिविर में विद्युत विभाग के अधिकारियों, विभिन्न सरकारी बैंकों के प्रतिनिधियों और अधिकृत सोलर वेंडरों ने भाग लिया। पूर्व सत्यापित 1414 लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें 476 लोग शामिल हुए। इस दौरान 87 नए आवेदन प्राप्त हुए। 26 लाभार्थियों ने सोलर पैनल लगाने के लिए वेंडर का चयन किया और 15 लोगों ने ऋण के लिए आवेदन दिया। एक लाभार्थी के घर सोलर संयंत्र भी लगाया गया। विभाग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़कर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली खर्च में कमी लाना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के 551 सरस्वती विद्या निकेतन यानी आदर्श विद्यालयों का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके तहत पूर्णिया जिले में 19 सरस्वती विद्या निकेतन शुरू किए गए हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्ता

0: पूर्ण और समग्र शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। जिले में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में 211 डिग्री कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके तहत पूर्णिया जिले में 6 नए डिग्री कॉलेजों में पठन पाठन शुरू हुआ। जिले के मां कामाख्या स्थान डिग्री कॉलेज के उद्घाटन समारोह में भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह और जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों को उनके आसपास की गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार नए संस्थान खोल रही है। जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सेवा संवाद समाधान अनुसरण प्रणाली के तहत नियमित जन सुनवाई जारी है। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से आए लोगों की शिकायतें गंभीरता से सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, भूमि विवाद, जन कल्याण योजनाओं और अन्य विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। यह कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जिला मुख्यालय के साथ साथ अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी आयोजित किया जा रहा है, ताकि लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर शीघ्र समाधान हो सके। जिले में स्वास्थ्य विभाग टीबी उन्मूलन अभियान को प्रभावी ढंग से चला रहा है। इस क्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से लाइन बाजार स्थित रेड क्रॉस भवन में टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार के पैकेट वितरित किए गए। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार कनौजिया ने बताया कि टीबी मरीजों के लिए दवा के साथ संतुलित पोषण भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि निक्षय पोषण योजना के तहत इलाजरत मरीजों को 6 महीने तक हर माह 500 रुपये की सहायता राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि वे पौष्टिक भोजन खरीद सके। उन्होंने लोगों से टीबी के लक्षण दिखाई देने पर समय पर जांच और इलाज कराने की अपील भी की। पूर्णिया जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने पूर्णिया व्यवसायिक संघ तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में व्यवसायियों ने सुरक्षा और यातायात से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में डायल 112 की गश्ती व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है, जिसके तहत 39 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल तैनात किए गए हैं, जो औसतन 10 से 11 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। साथ ही जिले की सीमाओं पर पुलिस चौकसी बढ़ाई गई है और मुख्य मार्गों पर नियमित गश्ती जारी है।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्णिया जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता होमी चंदन।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानमंडल की कार्यवाही की समीक्षा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है विधानमंडल में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक चंद्रा। विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्षी सदस्यों ने अपराध, नीट सहित कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए। हालांकि हल्के विरोध के बाद वे शांत हो गए। इसके बाद प्रश्नकाल शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने राज्य के विद्यालयों की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया। सदस्यों ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जिनके भवन या तो जर्जर होकर गिर चुके हैं, या फिर दो कमरों में 500 से 600 विद्यार्थियों की पढ़ाई कराई जा रही है। इस मुद्दे पर सरकार को घिरता देख मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने अगले 6 महीने के भीतर स्थिति में सुधार का दावा किया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि राज्य की प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानक की तुलना में लगभग 63,000 अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। इसी दौरान मंजीत सिंह ने कहा कि राज्य के 33 जिलों में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के 2,294 विद्यालयों का अपना भवन नहीं है। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि बिहार के लगभग 40% विद्यालयों के भवन गिर चुके हैं, जिसके कारण इन विद्यालयों को दूसरे गांवों में स्थानांतरित करना पड़ा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़े प्रश्नों पर भी सदन में विस्तृत चर्चा हुई। जदयू विधायक श्याम रजक ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा।

इस पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 3456 पद स्वीकृत हैं। राज्य में कुल 96 विद्यालय स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में 91 संचालित हो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विभाग ने बीपीएससी के माध्यम से 1048 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी है। राजद विधायक गौतम कृष्णा ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए अगस्त से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल क्यों नहीं हुई। जवाब में शिक्षा मंत्री श्री तिवारी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 20,000 शिक्षकों की बहाली का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE4 के संबंध में जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बिहार लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजे जाने की उम्मीद है। इसके बाद आयोग भर्ती प्रक्रिया की आगे की रूपरेखा तय करेगा। योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने सदन को बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत विधायकों को बिना निविदा के 25,00,000 तक की योजनाओं की अनुशंसा करने का अधिकार मिल सकता है। अभी विधायक मात्र 15,00,000 तक की योजनाओं की अनुशंसा किया करते हैं। ध्यानाकर्षण के पूरक प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष के 2 दर्जन से अधिक सदस्यों ने अपनी बात रखी। आलोक कुमार मेहता, प्रमोद कुमार, नीरज बबलू, अख्तरुल ईमान, वशिष्ठ नारायण सिंह और माधव आनंद समेत कई विधायकों ने कहा कि 15,00,000 रुपए तक की सीमा मौजूदा समय में उचित नहीं है। सभी सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि हुई है, इसलिए 25,00,000 रुपए तक बिना निविदा के काम कराने की शक्ति विधायकों को दी जाए। साथ ही विधायक निधि की राशि भी 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6 से 8 करोड़ रुपए की जाए। भोजन अवकाश के बाद सदन ने चर्चा के उपरांत 7 विधेयकों को पारित कर दिया। बिहार में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर अथवा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से खेले जाने वाले जुए सहित सभी प्रकार के जुए पर प्रतिबंध लगाने संबंधी बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित हो गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि विधेयक में बकारा, 6 व्हील, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, केम इन द फेयर, क्रैप्स, फ्लश, ब्रैग, 3 कार्ड गेम, केनो, पॉन्टून 21, रूलेट, स्लॉट्स, सुपर पैन 9 तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाने वाले अन्य भाग आधारित खेलों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में जुए से संबंधित विज्ञापन देने, उसके मुद्रण, प्रकाशन अथवा किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने का प्रावधान भी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बताया है कि बिहार में अब स्वप्रमाणन प्रमाण पत्र देकर दूसरे राज्यों में पंजीकृत डॉक्टर और नर्सें भी प्रैक्टिस कर सकेंगी। इस संबंध में विधानसभा ने चिकित्सकों के प्रैक्टिस से संबंधित बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 तथा नर्सेज स्वास्थ्य आगंतुक दाई और प्रशिक्षित दाई से संबंधित बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर भी मुहर लगा दी है। सदन ने बिहार माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 तथा बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक 2026 पर भी सहमति प्रदान की। और अब प्रस्तुत है विधान परिषद में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। इसके समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार किरणेश कुमार। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को बिहार विधान परिषद की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद के सुनील कुमार सिंह ने कार्यस्थगन की सूचना पढ़ी। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 50 रूपये से लेकर 5,000 रूपये तक होल्डिंग टैक्स वसूलने का फैसला लिया है। यह फैसला जन विरोधी है और सरकार इसे वापस ले। सभापति ने कहा कि कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं है, इसलिए इसे नामंजूर किया जाता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि गरीबों से टैक्स वसूलने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। गांव के अंदर होल्डिंग होने पर टैक्स देना होगा। नल जल के लिए 30 रूपये और साफ सफाई के लिए 30 रूपये टैक्स देना होगा। भाकपा माले की शशि यादव के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा कि बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने के लिए नीति निर्धारित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बंद पड़ी गोपालगंज, सकरी और लोहट चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। इन चीनी मिलों को चालू करने के लिए भारत सरकार की संस्था IPL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाली नियमावली 2026, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती संशोधन नियमावली

0: 2025 बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती संशोधन नियमावली 2024 तथा बिहार काश्तकारी संशोधन नियमावली 2023 की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखी। राजद के अजय कुमार सिंह, जदयू के नीरज कुमार और राजद के सुनील कुमार सिंह ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सूखे नशे पर रोक लगाने की मांग की। भोजन अवकाश के बाद सदस्यों के गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा हुई। भाजपा के दिलीप कुमार सिंह, जदयू की रीणा यादव, भाकपा के संजय कुमार सिंह, निर्दलीय महेश्वर सिंह, राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी, कांग्रेस के मदन मोहन झा समेत अन्य सदस्यों के गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा हुई। सरकार के आश्वासन के बाद सदस्यों ने अपने अपने संकल्प वापस ले लिए। अभी आप विधानमंडल में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता सुन रहे थे। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार आलोक चंद्रा, जबकि विधान परिषद की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार किरणेश कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
2: मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता JP नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष

0: सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी ऊषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खड़गे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने कहा कि नीट पीपर लेक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं

उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय

2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति, एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में ICP शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपनी विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक आजुक अंक में अपने सभक स्वागत अछि, अभिनंदन अछि। अपने सभक संग आई हम छी राकेश चंद्र नंदन। आजुक कार्यक्रम में जखन हमरा लोकनि एक संग बैसि गेल छी तऽ गपक क्रम आरंभ करी, ओहिसँ पहिने अपने सबकेँ एकटा जनतब दऽ दैत छी। जनतब ई जे आजुक कार्यक्रम में हमरा लोकनि युवा कवि प्रियरंजन झाक काव्य पाठ सुनब। अहाँ गीतनाद तऽ जहिना सुनैत एलहुँ अछि ओ सुनबे करब हमरा लोकनि। बंधु लोकनि, गीतनाद हुए आकि कोनो काव्यकृति, ई सब हमरा सभक हृदय केर लगीच रहल अछि। काव्यकृति आकि गीतनाद सबसँ बेसी लिखल गेल, सबसँ बेसी पढ़ल गेल, सबसँ बेसी सुनल गेल। एखुनका समयमे ओना तऽ साहित्यक प्रत्येक विधामे लेखन भऽ रहल अछि, मुदा सबसँ बेसी काव्यक रचना होइत रहल अछि आ एखुनको समयमे भऽ रहल अछि। हाँ, समयक संग परिवर्तन अवश्य आयल छैक। परिवर्तन तऽ संसारक शाश्वत नियम बनल रहल अछि आ तैँ प्रगति करबा लेल सेहो परिवर्तनक आवश्यकता होइत छैक। आ से हमरा लोकनि अपन साहित्यमे सेहो देखैत एलहुँ अछि, ओना अपन कार्यक्रममे सेहो किछु परिवर्तनक आवश्यकता होइत रहैत छैक। आउ ने, एहि परिवर्तनके अकानैत हमरा लोकनि चलैत छी गीतनाद दिस। कुञ्ज बिहारी मिश्र केर स्वरमे ई भगवती गीत सुनैत छी, फेर हमरा लोकनि गप करब।

बंधु लोकायनि, कुंज बिहारी मिश्र गौल, एहि भगवती गीतक माध्यमे हमरा लोकनि बहुत रास भगवती स्थानक मानस दर्शन कऽ रहल छलहुँ, ओहिठाम पहुँचि रहल छलहुँ। आशा करैत छी सबकेँ नीक लागल हैत। हमरा लोकनि गप कऽ रहल छलहुँ काव्य कृति सभक, तऽ वर्तमान समयमे लिखल जा रहल जे कविता सभ, ओहिपर जँ हमरा लोकनि विचार करैत छी तऽ बहुत रास परिवर्तन सभ देखना जाइत अछि। सबसँ पहिने तऽ हमसब देखैत छी जे मैथिली कविता आब बहुत बेसी विस्तार लऽ लेलक अछि। देशकाल आ परिस्थितिक अनुरूप नव नव विषय सब पर सेहो कविता लेखन भऽ रहल अछि। पहिने एक छन्दबद्ध कविता सभक सङ्गहि आब छन्दमुक्त कविता सभ सेहो लिखल जा रहल अछि। साहित्यक कोनो विधा हुए, ओकर विस्तार लेल माध्यम केर आवश्यकता होइ छै। आ जँ हमरा लोकनि काव्यक गप कऽ रहल छी तऽ निश्चित रूपसँ काव्यक विस्तार लेल सेहो माध्यमक आवश्यकता बुझना जाइत अछि। पहिने तऽ पत्र पत्रिका आकि काव्यक पोथीक माध्यमे हमरा लोकनि देखैत छलहुँ जे काव्यकृति सभ हमरा सभ धरि पहुँचैत रहल अछि। सङ्गहि काव्य गोष्ठी सभक आयोजन होइत रहल अछि आ ओकरा सङ्गहि जँ प्रचार प्रसार केर गप करी तऽ आकाशवाणी सेहो एकटा माध्यम रहल अछि काव्य रचना सभकेँ जनमानस धरि पहुँचेबाक। बंधु लोकनि, वर्तमान समयमे नव नव विषय आ यथार्थ परक कविता सभ लिखल जा रहल अछि। समकालीन जे कवि लोकनि छथि ओ वर्तमान परिवेशक अनुरूप अपन क्षेत्रक समस्या, पलायन आ बदलैत मानवीय सम्बन्ध सभकेँ कविताक माध्यमे अभिव्यक्त करैत रहल छथि। पहिने कहलहुँ एक दिस छन्दबद्ध कविता सभ लिखल जा रहल अछि तऽ दोसर दिस छन्दमुक्त कविता सभ सेहो अपन स्थान बना लेलक अछि। बंधु लोकनि, एखुनका युग सोशल मीडियाक युग अछि आ निश्चित रूपसँ सोशल मीडियाक

0: माध्यमे सेहो साहित्यक प्रचार प्रसार होइत रहल अछि। ओना जखन हमरा लोकनि आधुनिक कविता सभक गप कऽ रहल छी तऽ की विचार, प्रियरंजन झाक कविता पहिने सुनि लेल जाय? आउ ने युवा कवि प्रियरंजन झाक किछु काव्य पाठ सुनैत छी, फेर हमरा लोकनि गप करब।
1: हमर कविताक शीर्षक अछि जाठि पर बैसल अछि इजोत। एकटा नहि कनेकटा इजोत जे पोखरिक जाठि पर बैसल अछि। ओ कनिएटा इजोत ककरा लेल आ कतबा आवश्यक अछि? ओहि पोखरिमे शरणस्थ जीव लेल ओकर भीड़क ब्यूहिरमे बैसल खिक्खिर, सुत्तल सपनौर आ खेलाइत साँप आओर बहुतोक जीवन ओ कनिएटा इजोत। ई इजोतमे एकमात्र स्वर अछि, कोनो फतिंगाक उमंगक स्वर, कोनो चिल्होरक कामनाक स्वर, जीवनक सबसँ अनुभवी स्वर, बहुतोक स्वर, जीवनक स्वर। एहि स्वर संग गाम प्रायः सुति रहल अछि, चारू कात शांति अछि, चौबगली इजोत आ अनुभवी स्वर। ओना शहर सेहो सुतले जकाँ अछि, मारिते रास चमक दमक लेने, जकर इजोत विज्ञानक वर्तमान अछि। हम जाठि पर बैसल कनिएटा इजोतकेँ नहि बनऽ देबऽ चाहैत छी कोनो दिशाहीन क्रांतिक मसालक इजोत, नहि बनऽ देबऽ चाहैत छी कोनो देशक हृदय पर तनल मनुख विनाशक परमाणुक इजोत, जतऽ सिर्फ अशांतिक अश्रव्य स्वर अछि। हम जाठि पर बैसल कनिएटा इजोतसँ थोड़ेक इजोत बचा लेबऽ चाहैत छी, अपन भीतरक अन्हार लेल, भोरका चूल्हा लेल, किएक तऽ एहि जाठि पर बैसल इजोतमे अगबे जीवन सहसह जीवन। एहि कविताक शीर्षक अछि पुरहितनी दाई। भोरमे टहला जाइत काल रोज दलान बहारैत भेटैत छली पुरहितनी दाई, आ मुँहसँ गोर लगैत छी सुनिते आशीर्वादक पथार लगा दैत अछि। गामक सबसँ नीक गीत गाइन आजादीक लड़ाइमे हँसुली भरना राखि दान देनिहारि पुरहितनी दाई, आब बूढ़े नहि अन्हार आ बहीर सेहो भऽ गेल छथि। जाहि हाथसँ कतेको जिन्दगीके सहारा देने रहथि, ओहि हाथमे अपन सहारा लेल एकटा लाठी अछि। आइसँ 10 वर्ष पहिने बेटा पुतौह दिल्ली गेलनि, से आइ धरि नहि अयलनि, ने कोनो चिट्ठी ने कोनो फोन, तैयो हुनका भरोस छनि जे आइ ने काल्हि अयबे करत हमर सोन। जाहि घरमे बेटा ताला मारि कऽ गेल छनि, ताहि देवाल पर जन्म गेल अछि पीपर, सहसह करैए हरहारा साँझमे दीप देखबैत काल, बड़ मोन होइ छनि खोलबाक। मुदा स्मरण अबैत छनि सोन बाबू को बात, जे घर हमर अछि डहै वा रहै अहाँके ओहिसँ कोन काज, आ डेग धकमका जाइत छनि। रातिमे एहिठाम पसरल रहैए सगरो संसारक शांति, मुदा ओहि निरीह मोनक हृदयाङ्गनमे उठैत रहैए एकटा बिर्रो, आ उमेदक गुड्डी उड़ि जाइत अछि कोनो अनचिन्हार ठाम पर। ओ कोनो आप्तसँ भेंट करबाक इच्छा लेने रातिके अरियातैत छथि भोर धरि, कतेको बेर मरलाक बाद एकटा जीवन देखबाक लेल, कतेको बेर मरलाक बाद एकटा जीवन देखबाक लेल। एहि कविताक शीर्षक अछि प्राइवेट मास्टर। सूर्यो सुतले रहैत अछि तखने उठैत छी आँखि मिजैत, आ बेल्ट कसैत विदा भऽ जाइत छी अपन कर्म पथ दिस, मुदा कोन कर्म केहन पथ, ई प्रश्नक उत्तर नहि भेटल अछि आइ धरि। नित्य घरसँ बहरेबा काल नैन चोरौने रहैत छी घर बालीसँ, कतेको दिन बोकिया कऽ कहलनि अछि कसाई, कहियो काल बच्चाक चॉकलेटो लेल नहि रहैत अछि जेबीमे पाइ। माय बाबू छाती पर मुक्का मारि बजलाह, जँ नहि

सम्हारल हैत बहु एहन नौकरी लऽ कऽ की होयत अहीं कहू। हम उत्तर दैत कहलियनि, बड़ नामी प्राइवेट इसकुलमे छी मास्टर, पोरपट्टा भरिमे चलैए नाम, दरमाहाक एफजीमे भेटैए आधा पेट रोटीक दाम, शोषणके संघर्ष बुझैत छी, ईमानदारीसँ कर्मपथपर चलैत छी। संवेदनाक मलहम लगबैत नित पुछैत पहुँचैत छी इसकुल, कक्षामे बोर्ड पर पहिल शब्द लिखऽ काल थर थर काँपऽ लगै अछि हाथ, तखने झटसँ पूछैए एकटा बच्चा, बाबा यात्रीक कवितामे की छनि विशेष बात। हम बिसरि जाइत छी, प्रेयसीसँ नैन चोरायब आ माय बाबू खिसियायब। पढ़ौनी समाप्त भेलाक बाद मुख पर मुस्कान देख मोन होइत अछि आश्वस्त, ई मुस्कीक मोलक बरोबरि कोन भौतिक वस्तु कऽ सकत। एकटा बालगीत शीर्षक अछि उठू बौआ भेलै भोर। उठू बौआ भेलै भोर, चिड़िया चह चह कैलक शोर। उठू बौआ भेलै भोर, चिड़िया चह चह कैलक शोर। नव जिनगी संग उगला सूरज,

भोर झट दा करियो कुर्रा आचमन चमके दांत ते करियो दतमन झट दा करियो कुर्रा आचमन चमके दांत ते करियो दतमन तकर बाद में करियो कसरत तकर बाद में करियो कसरत स्वस्थ शरीरक पोरे पोर उठू बउआ भेलै भोर उठू बउआ भेलै भोर स्वच्छ रहबा।

0: युवा भेलै भोर।
1: बंधु लोकनि, एखन हमरा लोकनि युवा कवि प्रियरंजन झा के किछु काव्य पाठ सुन रहल छलहुँ। निश्चित रूप सँ आधुनिक समय केर जे समस्या सब, ओकरा नीक अभिव्यक्ति देलनि अछि अपन काव्यक माध्यमे प्रियरंजन झा। आशा करै छी सबके नीक लागल हैत। हाँ, एकटा आर जनतब दऽ दी जे काल्हि अपन कार्यक्रम सिंगरहारमे हमरा लोकनि सुनब किछु काव्य पाठ दिलीप कुमार झा सँ, आ परसू सिंगरहारेमे हमरा लोकनि चंद्रेश्वर खां के किछु लघु कथा सब के श्रवण करब। तऽ निश्चित रूप सँ अपने सब सँ आग्रह जे काल्हि सिंगरहारमे दिलीप कुमार झाक काव्य पाठ आ परसू चंद्रेश्वर खां के जे लघु कथा सब, ओकरा अवश्य सुनी। आ आब हमरा लोकनि कनेक आगाँ बढ़ै छी। सुनै छी ई नचारी, स्वर छनि शारदा सिन्हाक।

0: बंद लोकनि,
1: शारदा सिन्हा गौल एहि नचारीक बाद देखू ने बेर लगचिया रहल अछि जे हमरा सबके विदा सेहो लेबऽ पड़त, कारण समय सँ बान्हल रहै छी हमरा लोकनि, समय सँ चलऽ पड़ैत अछि। मुदा शब्द विमर्श के बिना तऽ कार्यक्रम के समापन संभव अछिये नहि। हमरा लोकनि चली शब्द विमर्श दिस, ओहिसँ पहिने अपने सबसँ एकटा आग्रह, आग्रह ई जे कार्यक्रम सिंगरहार अपने सबके केहन लगैत अछि, अपने लोकनिक जे सुझाव, अपने लोकनिक जे प्रतिक्रिया, ओ हमरा सभक संबल बनैत रहल अछि। तैं अपने लोकनिसँ विशेष आग्रह जे अपन प्रतिक्रिया वा सुझाव हमरा सब धरि निश्चित रूपसँ पठबैत रही। जँ पत्र द्वारा अपन सुझाव आकि प्रतिक्रिया पठबऽ चाहैत छी, ओहि लेल हमर सभक पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। हमर सभक पिन कोड अछि 8460004। बंधु लोकनि, अपने लोकनि आकाशवाणी दरभंगा @gmail.com पर सेहो अपन प्रतिक्रिया आकि सुझाव हमरा सब धरि पठा सकैत छी। आ आब शब्द विमर्श। एकटा शब्द अछि जकथक, माने यथापूर्व, अपूर्ण अवस्थामे। एहि लेल हमरा लोकनि जकथक शब्दके प्रयोग करै छी। जुगुति, जुगुति भेल उपाय, साधन, तरकीब। एहि लेल हमरा लोकनि जुगुति शब्दके प्रयोग करैत रहलहुँ अछि। बंधु लोकनि, एकटा शब्द अछि तत्मत, अनिर्णयावस्था वा तारतम्य लेल हमरा लोकनि तत्मत शब्दके प्रयोग करैत रहलहुँ अछि। आ तत्मतिया, तत्मतिया भेल संशालु व्यक्ति। एहि लेल हमरा लोकनि हुनका तत्मतिया कहैत छियनि। तऽ ई छल शब्द विमर्श। ओना हमरा सबके तऽ संशय नहि अछि, कारण समय भऽ रहल अछि जे अपने सबसँ विदा लेबऽ पड़त। तऽ एहि आशाक सङ्ग जे अपने लोकनिक सुझाव, अपने लोकनिक प्रतिक्रिया हमरा सब धरि निश्चित रूपसँ पहुँचैत रहत, आ आब हमरा यानी राकेश चंद्र नंदनकेँ अगिला भेंट धरिक लेल देल जाओ आज्ञा। नमस्कार।

0: मैथिली कार्यक्रम सिंहहार सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से

0: कुल हैं। रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप
2: पानी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
3: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
2: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
5: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ

0: कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
2: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच UCC विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
3: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगा। UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
4: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की, ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं।

0: झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के हॉर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचेस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की।

0: देखते हुए जनाब पासवान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सभी शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत पर मुसलसल जोर देते रहे हैं, जिसमें तालीम का शोबा भी शामिल है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सभी वजारतों में इस्लाहात की जा रही हैं। जनाब पासवान ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो अपनी तामीरी तजावीज़ पेश करे और बामानी बातचीत में शामिल हो।
1: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को कौमी राजधानी के सफदरजंग अस्पताल से फौरी तौर पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि एंगमो की दाखिल करदा दरखास्त पर समाअत के दौरान ये हुक्म दिया। मरकज के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल किए जाने पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और शुमाली मकदूनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़िराद, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़ियाफ़त और फिल्म साजी जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसअत देने समेत तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देने पर राज़ी हो गए हैं। सदर जमहूरिया आज स्कोपिये में शुमाली मकदूनिया की अपनी हम मनसब गोर्दाना डॉवकोवा से बातचीत के बाद मीडिया से खिताब कर रही थीं।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों मुल्कों ने अपनी मुश्तरका जमहूरी इकदार और बाहमी एहतराम पर मबनी गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात की तौसीक की है। सदर जमहूरिया ने कुदरती आफात से निमटने के बुनियादी ढांचे, आलमी हयाती ईंधन इत्तेहाद और बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद जैसी भारत की क़्यादत वाली आलमी पहल में शामिल होने के शुमाली मकदूनिया के इरादे का खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया ने शुमाली मकदूनिया के अजीम तरीन हीरो गॉडसे डेलचेव को भी खराज अकीदत पेश किया। शुमाली मकदूनिया का दौरा ख़त्म करने के बाद सदर जमहूरिया रोमानिया का सफ़र करेंगी। मध्य प्रदेश असम्बली ने आज अपने मानसून इजलास के दूसरे दिन अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान यकसां सिविल कोड मंजूर कर लिया। कांग्रेस सरकार ने बिल को मुंतखबा कमेटी को भेजे जाने की मांग की, लेकिन रियासती सरकार ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन के अराकीन असम्बली ने ऐवान के वस्त में एहतजाज किया, जिसके बाद कार्रवाई दो मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। कार्रवाई में रुकावट के बावजूद बिल को अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। अब बिल को गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: यकसां सिविल कोड UCC के अहम इल्तजाम के तहत मध्य प्रदेश में एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं होगी। मर्द और खवातीन को मसावी मौरूसी हकूक हासिल होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। वहीं गांव की सतह पर भी शादियों का रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा। कबायली बिरादरियों को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग गोले ने ऐलान किया है कि नामची जिले में समरदुंग में NHPC हादसे के सिलसिले में एक आला सतही तहकीकती कमेटी तश्कील दी जाएगी। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर के साथ आज हादसे के मकाम का दौरा करने के बाद वजीर आला ने सभी फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह हादसा चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से नहीं बल्कि मीथेन गैस के धमाके की वजह से हुआ हो। अब तक जाए हादसे से 12 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और ऐसा समझा जाता है कि दीगर अफराद अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। नामची जिले के समरदुंग में NHPC तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के तहत जेर तामीर सुरंग में फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जारी है। रियासत की चीफ सेक्रेटरी और DGP ने तलाश कार्रवाई के सिलसिले में सीनियर अहदेदारों के साथ नामची में एक जायजा मीटिंग की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के वजीर आला से बात की है और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। जनाब प्रेम सिंह तमांग ने सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में किए जा रहे इकदाम के लिए वजीर आजम की सताइश की है। दोनों रहनुमाओं ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
4: सिक्किम के गवर्नर

0: ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज टनल का मुआयना किया और सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि मुनासिब जांच इस अफसोसनाक वाकये के सभी हकायक को वाजह करेगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम हुकूमत मरने वालों के कुंबों को फौरी मदद फराहम करेगी। सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी ने भी नामची में मुख्तलिफ महकमों के साथ जायजा मीटिंग की ताकि बचाव मिशन को तेज किया जा सके। इस दौरान एनडीआरएफ की एक और टीम नए आलात के साथ आज टनल में दाखिल हो गई। गैंगटॉक से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद हबीब।
1: ईरान और अमरीका ने लगातार 10वें दिन भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे, जिससे स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुरमुज पर कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। इस दौरान एक ईरानी अफसर ने पाकिस्तान में सालिसकारों के साथ आज मुलाकातें की, जहां सिफारतकार अमरीका और ईरान के दरमियान टूट चुके आर्जी समझौते को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले अमरीका ने जुनूब मगरबी ईरान के शहर हुरमुज को निशाना बनाया, जबकि उर्दून, कुवैत और बहरीन से ताज़ा ईरानी हमलों की खबर मिली है। ये हमले अमरीका ईरान तनाज़े पर बढ़ती इलाकाई तकसीम की निशानदही करते हैं। भारत ने आज रूसी सिफारतखाने के नाज़िमुल उमूर व्लादिमिर लादानोव को तलब किया। उन्हें इस महीने की 19 तारीख को एक कमर्शियल बहरी जहाज एमवी गोल्डन लिव पर हमले के सिलसिले में तलब किया गया। इस हमले में 4 भारतीय अफराद की जानें ज़ाय हो गई थीं। वजारत दाखिला ने हमले पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इसकी मजम्मत की है और कहा कि इस तरह के हमलों से बैनुल अक्वामी बहरी तिजारत की हिफाजत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान सूबे के परुन शहर में तबाहकुन सैलाब में कम अज कम 20 अफराद हलाक हो गए और दीगर 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। तालिबान हुकाम की जानिब से एक बयान के मुताबिक परुन और उसके आसपास के इलाकों में सैलाब के पानी में बहने से 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी ने कहा कि नुकसान का जायजा लेने, लापता अफराद को तलाश करने और बचाव इकदामात में मदद की खातिर खसूसी बचाव टीमें तैनात की गई हैं। हुकाम ने ये खबरदार किया कि हलाक होने वालों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि मुतासर इलाकों में तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात खित्ते, मशरकी राजस्थान और वस्ती महाराष्ट्र में अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, बिहार, गंगाई मगरबी बंगाल, उत्तराखंड, विदर्भ और मगरबी राजस्थान में भी अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटें पड़ सकते हैं। 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले FIH आलमी कप के लिए भारतीय हॉकी ने मर्दों के 20 मेंबरों का ऐलान किया है। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम की सरबराही करेंगे। दरमियानी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह ने अपने नए तजुर्बे की बुनियाद पर खेल में दिलचस्प मुजाहिरा करेंगे। भारत इंग्लैंड के साथ पूल डी में रहेगा। पाकिस्तान और वेल्स अपने सभी पूल स्टेज के मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में खेलेंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में आलमी स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गए हैं। चैंपियनशिप में भारतीय खातून खिलाड़ी अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की लिली विल्सन के खिलाफ 11-2, 11-1, 11-3 से जीत हासिल करके अगले राउंड में दाखिला हासिल कर लिया है। मर्दों के जुमरे में आर्यवीर दीवान, यूशा नफीस और गुरवीर सिंह ने पहला राउंड जीत लिया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तिजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसा सिविल कोड मंजूर कर लिया है। आमना हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदे महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर।

अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विविधा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय है डिजिटल युग में अभिनय की कला, अवसर, चुनौतियां और भविष्य। भेंट वार्ताकार हैं अंजनी कुमार, भेंट करता है आशुतोष कुमार झा। प्रस्तुति असद दाऊद की है।

0: आकाशवाणी दरभंगा सुनने वाले सभी श्रोताओं को आशुतोष कुमार झा की तरफ से स्वागत और नमस्कार। श्रोतागण, पिछले प्रसारण में आपने हमारे विशेष अतिथि के साथ हुई बातचीत के पहले भाग में उनके अभिनय सफर, संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानी सुनी। आज हम लेकर आए हैं उसी विशेष साक्षात्कार का दूसरा और अंतिम भाग। आज इस बातचीत में हम जानेंगे उनकी आने वाले फिल्मों, वेब सीरीज और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में, साथ ही अभिनय की दुनिया में आगे उनकी क्या योजनाएं हैं, युवा कलाकारों के लिए उनका क्या संदेश है और भविष्य को लेकर उनके क्या सपने हैं। इन सभी विषयों पर आज खुलकर होगी चर्चा। तो आइए बिना किसी देर के सुनते हैं हमारे विशेष अतिथि के साथ इस खास बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। नमस्कार अंजनी जी।
1: नमस्कार, मेरा नाम अंजनी कुमार है।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप मिथिला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ के युवाओं के लिए आपके मन में कोई विचार है, क्या आप कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर?
1: हाँ, मेरी इच्छा तो है ही कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को भी मौका मिले, और मैं जो भविष्य में एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है अपने घर में भी रोटी है, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं दरभंगा में ही शूटिंग करूँ, और मेरा बैनर ABP फिल्म्स है और यहाँ के जो नियर डियर हैं और जो एक्टर्स हैं वो इस फिल्म में काम ज़रूर करेंगे।
0: तो बहुत अच्छी सूचना है। अगर आप अभिनय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप अंजनी जी से बात कर सकते हैं, उनके पास मौका होगा तो आपको निश्चित रूप से अपने पास बुलाएंगे। अंजनी जी, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जो अपने जीवन के आखिरी दिनों में बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत किया, तो हमारे मन में अक्सर ऐसी फीलिंग आती है कि क्या अभिनय क्षेत्र के अलावा भी हमें किसी और आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अक्सर हाँ, तो जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं वो उनको मालूम है कि आने वाले वक्त में उनके पास काम नहीं भी हो सकता है।
0: जी हाँ।
1: तो जो सफल एक्टर हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हो गए तो बहुत सारी इंडस्ट्री वो चला रहे हैं।
0: जी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे अभिनेता ऐसे हैं जो आज के दौर में जैसे रील्स वगैरह चल रहा है, तो बहुत सारे अभिनेता ऐसे भी हैं जो, आपने तो बहुत अच्छी बात कही है कि खुद को अगर आप एक्टिव रखते हैं तो आप नजर पे रहिएगा ही।
1: हाँ हाँ।
0: अगर आप बैठ जाइएगा तो किसी को नजर ही नहीं आएगा।
1: कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड।
0: जी,
1: दृष्टि से दूर तो मन से दूर। आज देख लीजिए, आज एक्टर की बात हम कह रहे हैं, ट्रेनिंग की बात कह रहे हैं, बिना ट्रेनिंग के, बिना कुछ सीखे हुए, बिना डायलॉग के, बिना एक्सप्रेशन के, बिना बॉडी लैंग्वेज के, बिना कॉन्फिडेंस के, बहुत सारे लोग आज के डेट में मोबाइल पे आते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, और दे आर वेरी मच पॉपुलर।
0: जी हाँ।
1: तो आज लोकप्रिय उस तरह भी हो रहे हैं, पब्लिक उनको एक्सेप्ट भी कर रहा है, देख भी रहा है, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोबाइल से जो मैं देखता हूं उससे आत्मसंतुष्टि
0: नहीं होती है। 30 सेकंड में क्या आत्मसंतुष्टि
1: होगी? रिक्रिएशन जो है, जो मनोरंजन है, उससे हमें पूरा नहीं मिल पाता है,
0: निश्चित रूप से।
1: तो आज फिर से मुझे लगता है माहौल बदलेगा, लोगों की ये डिमांड है कि फिर से वो सिनेमा घरों में जाना पसंद करेंगे।
0: आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जो बिना ट्रेनिंग के युवाओं में जोश है, जुनून है, उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, मगर जज भी करके आगे खुद को बढ़ना चाहिए, तो उनको कहाँ ट्रेनिंग लेना चाहिए जिससे कि उनका अभिनय प्रभावशाली भी दिखे?
1: बहुत अच्छी बात। देखिए, अपने देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स भी हैं, और जो यूनिवर्सिटीज भी कुछ कोर्सेज चलाती हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें वातावरण का बहुत बड़ा रोल होता है,
0: बहुत बड़ी भूमिका वातावरण की है,
1: बहुत बड़ी भूमिका वातावरण की होती है। मेरे कहने का मतलब

0: है कि वो जिसकी जिस तरह की व्यवस्था है, आर्थिक
1: जी
0: जिस तरह की, जो जिस लाइक हैं, जैसे दिल्ली में NST है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसके लिए जो प्रावधान है, जो प्रोसेस है, उसमें जाएं तो और अच्छा है,
1: और अच्छी बात है।
0: सबसे बढ़िया है। 3 साल 4 साल का कोर्स, श्री राम आर्ट सेंटर है वहीं पे, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ वो दाखिला ले सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: और जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं बॉम्बे में हैं, मुंबई में बहुत सारे हैं,
1: बहुत
0: जो
1: सारे।
0: आपको कैमरा एंगल से एक्टिंग सिखाता है,
1: अच्छा
0: आपका ये संवाद है, आपका ये डायलॉग है, आपका ये एक्सप्रेशन है, आपका कैमरा यहाँ लगेगा और आपका फेस इतना रहेगा, क्लोज कटेगा, लॉन्ग कटेगा, शोल्जर होगा, शॉर्ट एंगल शॉट हो, ये सारी बातें जो कैमरा के जब साथ जब इंसान सीखता है
1: वो
0: तो वो
1: बात अलग,
0: प्रोफेशनल एक्टर हो
1: निश्चित
0: जाता है।
1: निश्चित।
0: तो वो तो और भी अच्छी बात है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रेन करने का मौका मिला,
1: जी
0: खास करके नए युवाओं को। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जितना संघर्ष मुझे करना पड़ा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को भी करना पड़े। तो इस तरह की व्यवस्था दरभंगा में भी हो, मैं तो यही
1: जी
0: कहूँगा।
1: हाँ, युवाओं को चाहिए जो उनसे जुड़ा हुआ कोर्स है उनकी तरफ भी वो प्रारंभ से ही ध्यान दें।
0: तो वो तो रुचि जब रहेगी तो नाटक करना ही पड़ेगा, शुरुआत तो वही है।
1: वही है
0: हम आप बात कर रहे हैं, ये एक्टिंग है
1: जी हाँ,
0: बेसिकली। आपने जो क्वेश्चन किया और मैंने जो जवाब दिया,
1: वो भी एक अभिनय का हिस्सा ही
0: ये
1: है।
0: अभिनय है, ये
1: जी
0: ही
1: हाँ
0: एक्टिंग है,
1: जी
0: लेकिन ये
1: हाँ,
0: नेचुरल है।
1: ये नेचुरल है।
0: लेकिन हम जब दूसरे के किरदार में, आप आशुतोष जी बन के बात कर रहे हैं,
1: जी हाँ
0: मैं अभिनेता अंजनी कुमार बन के नेचुरल जो मैं हूं,
1: निश्चित,
0: मैं बोल रहा हूं, आप और मैं दोनों तो बात जो कर रहे हैं वो भी तो एक अभिनय ही
1: वो
0: है
1: भी
0: ना।
1: एक अभिनय ही
0: लेकिन
1: है।
0: हम रियल कैरेक्टर हैं, लेकिन नाटक में, फिल्मों में आपको दूसरे का कैरेक्टर जीना पड़ता है। उसके लिए जो ट्रेनिंग चाहिए वो बहुत जरूरी है।
1: हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बताना चाहेंगे कि हमारे साथ अभी अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत ही प्रभावशाली कलाकार अंजनी जी बैठे हुए हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जाना कि कैसे इन्होंने प्रारंभिक अवस्था में अभिनय को अपना क्षेत्र बनाया और साथ ही युवाओं को कैसे इस क्षेत्र में आने से पहले अपनी प्रारंभिक रुचियों को जानना होगा, समझना होगा और जो इसके लिए इंस्टीट्यूट हैं वहां जाके उनको ट्रेनिंग भी लेनी होगी। इसके अलावा हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि रोजगार की क्या-क्या संभावनाएं बनती हैं अभिनय के क्षेत्र में।
0: अभिनय के क्षेत्र में आप स्टेज से जुड़ सकते हैं, स्टेज में जैसे ड्रामा है, ड्रामा आप पूरे इंडिया में कर सकते हैं, नाटक उससे आपको धन मिल सकता है। अपना ग्रुप बनाइए या किसी ग्रुप के
1: से
0: साथ
1: जुड़
0: जुड़ के,
1: जाइए
0: उसमें
1: जी
0: भी आपको पेमेंट मिलेगा। दूसरा है कि आप टीवी सीरियल्स में काम करिए, OTT चैनल आज कॉमन हो गया है,
1: जी
0: बहुत सारे
1: हाँ
0: OTT चैनल आ गए हैं,
1: हाँ
0: तो ये सुविधा तो आसानी से प्राप्त है, अब तो रीजनल एरियाज में उपलब्ध हैं, तो उसमें OTT चैनल में आपको काम करने का अवसर मिल जाएगा,
1: मिल जाएगा
0: दूरदर्शन के धारावाहिकों में मिलेगा, जो और भी प्राइवेट चैनल्स हैं
1: जी
0: वहाँ आपको
1: हाँ
0: काम मिल सकता है। और ये नहीं, आपको एंकरिंग का काम मिल सकता है,
1: जी
0: आपको बहुत सारा काम जो दूरदर्शन से या टेलीविज़न से संबंधित है उसमें आपका दाखिला हो सकता है, आप उसके
1: जी
0: लायक हो सकते हो, आप को उसमें नौकरी मिल सकती है। तो ये तो बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है और इंटरनेशनल लेवल तक है, ये नहीं कि आप एक सीमा में रहते हो, इसका कोई सीमा नहीं है, देयर इज नो लिमिटेशन।
1: इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी रुचि के लोगों से जुड़ना होगा,
0: एक इन्वायरमेंट तो चाहिए, एक माहौल तो
1: एक
0: चाहिए।
1: माहौल तो चाहिए।
0: अगर हम बात कर रहे हैं कि हम कोई एटम बनाना चाह रहे
1: जी
0: हैं,
1: हाँ
0: एटम बॉम्ब जो होता है,
1: जी हाँ,
0: तो हम दरभंगा में रह के तो नहीं बना
1: नहीं
0: सकते हैं,
1: बना सकते हैं।
0: हमको तो भाभा एटॉमिक्स रिसर्च
1: मेरे
0: सेंटर
1: कहने का एक
0: मुंबई
1: और
0: जाना
1: तात्पर्य
0: जाना
1: था
0: पड़ेगा।
1: कि
0: हाँ,
1: जैसे कि मान लीजिए अभिनय से जुड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आर्थिक कमी होती है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हुए भी इस क्षेत्र को नहीं समझ पाते हैं।
0: मैं तो ये कहूंगा कि जो गरीब इंसान है उसको ईश्वर ने एक मौका दिया अमीर बनने का,
1: निश्चित
0: और उसको मौका मिलता है, संघर्ष करने का मौका मिलता है, आगे बढ़ने की एक लालसा होती है। लेकिन जो अभिनय का कीड़ा जिनमें है वो मेहनत मजदूरी करके बॉम्बे में कामयाब होता है।
1: कामयाब होता ही है।
0: जितने भी एक्टर हैं, आप मैक्सिमम एक्टर तो गरीबी से ही ऊपर निकल के कामयाब हुए हैं।
1: जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही।
0: मैं भी मध्यम परिवार से ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
1: जी हाँ,
0: और हमारा सफर भी संघर्ष से ही जुड़ा हुआ है।
1: आप जिस क्षेत्र से आते हैं, निश्चित रूप से अगर आप मुंबई तक पहुंचे हैं तो बिना संघर्ष के नहीं पहुंच सकते।
0: मुझे तो बड़ी खुशी है कि विजय आनंद जैसे व्यक्ति मुझे सबसे पहले बुलाते थे।
1: अरे वाह।
0: प्रकाश मेहरा जी शाम को हमेशा हमारे साथ ही बैठ

0: थे, हम दोनों साथ बैठते थे,
1: अरे
0: और उन्होंने ये भी कहा था कि कभी मैं फिल्म बनाऊंगा तो अमिताभ के साथ ही बनाऊंगा और अंजनी आपको उनके सामने खड़ा करूंगा। लेकिन संयोग की बात है, पार्थो घोष की दो दो फिल्में की, पार्थो घोष की अभी एक वेब सीरीज मैंने की OTT चैनल के लिए, वो अब नहीं रहे बेचारे
1: जी हाँ।
0: तो प्रकाश झा जी के साथ मैंने किया ही, उनसे भी बड़े गहरे रिश्ते हैं,
1: गंगा जल में आपने काम किया,
0: गंगा जल में मैंने चतुर्भुज की भूमिका निभाई। तो इस तरह से जितने भी टॉप लेवल के इंडस्ट्री में लोग हैं, एक्टर्स भी हैं, सबसे मेरे अच्छे रिश्ते हैं। मैं समझता हूँ कि ये गरीब का संघर्ष ही है, तो और क्या हो सकता है।
1: जी निश्चित रूप से। आकाशवाणी दरभंगा के माध्यम से आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे?
0: युवाओं के लिए एक ही संदेश है, जो मन में ठान लिया हर हाल में उसे प्राप्त करना है और कुछ भी नहीं। जो आपके मन में है कि मुझे ये चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर देना है, मंजिल दूर नहीं है, लेकिन सकारात्मक प्रयास और सकारात्मक लक्ष्य होना चाहिए।
1: बहुत अच्छी आपने बात कही कि आज के युवा अगर अपने सकारात्मक विचार के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ें तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी ही।
0: हौसला आंधियों का भी टूट जाएगा, हौसला आंधियों का भी टूट जाएगा, इसलिए हर रोज एक चिराग हवा में जला के रखता हूँ।
1: अरे वाह,
0: कितना बुझाओगे, विपरीत परिस्थितियाँ कितनी आएगी, लड़ते रहेंगे। हमारी एक फिल्म है आर्तनाद, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, पूरी नहीं बनी है, आएगी। तो उसमें यह है कि एक इंसान जो है उसको बहुत बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और उसमें उसके यार दोस्त कहते हैं, यार तुम तपती धूप में पैदल चल लेते हो, ठंड में छत पे, मतलब 0 डिग्री से भी माइनस टेम्परेचर में नंगे जो है सो जाते हो छत पर, क्या मतलब है? तो वो कहता है कि मैं अपने आप को इतना तपाना चाहता हूँ, इतना तपाना चाहता हूँ कि मुझे दुख और विपरीत परिस्थितियां कभी प्रभावित नहीं करेगी।
1: यही जज्बा चाहिए,
0: यही जज्बा चाहिए।
1: आप चाहे जिस क्षेत्र का चुनाव करें,
0: बस बस बस,
1: बस जज्बा होना चाहिए,
0: जज्बा चाहिए।
1: आखिर में चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप अपनी फिल्म का एक डायलॉग हमारी श्रोताओं को सुनाएं।
0: जी, ये जो आने वाली फिल्म है, उफ किए तो परास्त हो गए, उफ किए तो परास्त हो गए, मतलब जीवन में दर्द को महसूस नहीं करना है, जितना जहर पी सकते हो पियो,
1: पियो।
0: और अगर उफ हुए, उफ कर दी, ओहो कर दी, तो तुम परास्त हो गए, तुम जीवन से हार गए।
1: अरे वाह, मतलब अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें चेहरे पे मुस्कान रखनी होगी,
0: रखनी होगी, और हारना नहीं,
1: हारना तो कभी भी नहीं है,
0: ये तो जीवन का संघर्ष है।
1: निश्चित रूप से
0: ये इसको कॉमन तरीके से लेना है, जैसे हम दिन में चावल दाल सब्जी खाते हैं, हर रोज खाते हैं, उसी तरह ये है।
1: निश्चित रूप से, और श्रोता आपकी बातों को सुन भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, तो आकाशवाणी दरभंगा में आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: श्रोतागण, ये हमारे विशेष अतिथि अंजनी कुमार के साथ हुई विशेष बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। हमें उम्मीद है कि उनके अनुभव, संघर्ष, सफलता की कहानी और भविष्य की योजनाओं से जुड़ी यह चर्चा आपको पसंद आई होगी और निश्चित रूप से कुछ नया सोचने और सीखने की प्रेरणा भी मिली होगी। हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत, एक नई कहानी और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप विविधा कार्यक्रम सुन रहे थे। विषय था डिजिटल युग में अभिनय की कला, अवसर, चुनौतियां और भविष्य। भेंट वार्ताकार थे अंजनी कुमार, भेंटकर्ता थे आशुतोष कुमार झा। प्रस्तुति असद दाऊद की थी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

हम आकाशवाणी के तिरंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देववाणी कार्यक्रम। यम आकाशवाणी दरभंगा। सर्वप्रथमं श्लोकं श्रावयामि। आरोग्यं परमो लाभः, संतोषः परमं धनं, विश्वासः परमं मित्रं, राष्ट्रसेवा परमं सुखम्। तात्पर्यमिदं वर्तते यत् आरोग्यं मनुष्यस्य सर्वोत्तमः लाभः अस्ति, संतोषः एव परमं धनम् अस्ति, विश्वासः श्रेष्ठं मित्रं भवति, राष्ट्रस्य सेवा एव परमं सुखं भवति। इतः परं देववाणी कार्यक्रम। नमो वाकं प्रसासमहे आकाशवाणी दरभंगातः देववाणी प्रसारणे भवतां भवती नाम च सुस्वागतम्। देववाणी कार्यक्रमे भवन्तः शृण्वन्ति सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक गतिविधिषु आधारित स्थानीय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पाक्षिक वार्ता चक्रम। अहमस्मि अंजनी कुमार झा। संसदस्य मानसून सत्रम 20 जुलाई तः आरभ्य अगस्त मासस्य 13 दिनांक पर्यन्तं भविष्यति। 25 दिनानां सत्रे अस्मिन् 21 उपवेशनानि भविष्यन्ति। विश्वविख्याता पुरी रथयात्रा विगत गुरुवासरे उड़ीसा राज्यस्य पुरी नगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठ भ्रातु बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरंभम् अभवत्। अस्याम वार्षिक रथयात्रायां जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारुह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दत्तवान्। इयं रथयात्रा जुलाई मासस्य 28 दिनांके समाप्तं भविष्यति। दरभंगा नगरे अपि जगन्नाथ रथयात्रायाः आयोजनम् अभवत्। इयं यात्रा पोलो फील्ड लहरियासरायतः आरभ्य इस्कॉन मंदिरं शुभंकरपुर दरभंगा इत्यत्र समाप्तवती। जोमेटो इत्यस्य दीपेन्द्र एरो स्पेस इत्यत्र 200 कोटि रूप्यकानां निवेशं करिष्यति। विगत शनिवासरे जुलाई मासस्य 18 दिनांके 270 राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कारस्य घोषणा अभवत्। कर्नाटक देशे देशस्य प्रथमः सर्वकारीय AI विश्वविद्यालयः स्थापितः भविष्यति। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयेन विभिन्न छात्र सत्रेषु शास्त्रीय आचार्य परीक्षायाः संशोधित कार्यक्रमं प्रकाशितम्। संशोधित कार्यक्रमानुसारं परीक्षा जुलाई मासस्य 29 दिनांकात् आरभ्य अगस्त मासस्य 3 दिन पर्यन्तं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां स्पेन देशः अतिरिक्त समये गत विजेता अर्जेंटीना देशम 1-0 इति अंकेन पराजित्य 26,200 वर्षस्य फीफा विश्वकप विजेता अभवत्। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू लवलीना बोरगोहाई जुलाई मासस्य 23 दिनांके ग्लासगो नगरे राष्ट्रमंडल क्रीडायाः उद्घाटन समारोहे भारतस्य ध्वजवाहकौ भविष्यतः। अस्तु समाप्तं याति संप्रति देववाणी कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधिषु आधारित पाक्षिक वार्ता चक्रम। पुनः नूतन वृत्तांतान संकल्य समुपस्थास्यामि। शुभानि सन्तु तावत् सर्वेभ्यः श्रुत्।

रेभ्यः। अभी आप देववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए संस्कृत वार्ता।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एक फनकार कार्यक्रम। आज के फनकार हैं लता मंगेशकर। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म धरती कहे पुकार के का यह गीत। सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल हैं मजरूल सुल्तानपुरी के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

की अगली प्रस्तुति फिल्म दिले नादान का यह गीत सुनिए लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना

0: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति
1: फिल्म मधुमति का यह गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल शैलेंद्र के हैं और

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म मधुमति का यह गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में, बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत निर्देशन सलील चौधरी का है।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म बेटी बेटी का यह गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का है।

कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म अनुपमा का यह गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल कैफी आज़मी के हैं और संगीत हेमंत कुमार का है।

कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म बैजू बावरा का यह गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में और शब्द रचना शकील बदायूनी के हैं और संगीत निर्देशन नौशाद का है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म बैजू बावरा का यह गीत। इसी गीत के साथ एक फनकार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे इज्जत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल थे साहिर लुधियानवी के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। अब कार्यक्रम के अगली प्रस्तुति फिल्म नई रोशनी का यह गीत सुनिए, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, संगीत निर्देशन रवि का है।

0: जी चुके जी चुके।
1: अब सुनिए माई लव फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत निर्देशन दान सिंह का है।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म कभी कभी का यह गीत सुनिए, मुकेश एवं लता मंगेशकर की आवाज में। बोल साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत निर्देशन खयाम का है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मेरे हम सफर का यह गीत, मुकेश एवं लता मंगेशकर की आवाज में। बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे हमसफर का यह गीत मुकेश एवं लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर

0: प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।